एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। आज बुधवार शक संवत 1948 के अश्विन माह की 15वीं तिथि तदनुसार 7 अक्टूबर 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सेवा प्रारंभ होती है। सभी श्रोताओं का अभिनंदन, सुप्रभात।

FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में टीईपीए की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर है। भारत और ईएफटीए के बीच टीईपीए पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवातीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन जीएसएमए के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया।

0: प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये अमीर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। आज के चिंतन का विषय है प्रकृति का सम्मान।

हमारे धर्म ग्रंथ, ऋषि मुनियों की वाणियां, कवियों की काव्य रचनाएं, संतों साधुओं के अमृत वचन सभी प्रकृति की महत्ता से भरे हुए हैं। विश्व की लगभग सारी सभ्यताएं प्रकृति की गोद में विकसित हुई और तभी से मनुष्य का इससे रागात्मक संबंध स्थापित हुआ, किंतु कालांतर में हमारी प्रकृति से दूरी बढ़ती गई। इसके फलस्वरूप विघटनकारी रूप भी सामने आए। मत्स्य पुराण में प्रकृति की महत्ता को बतलाते हुए कहा गया है, 100 पुत्र एक वृक्ष समान। प्रकृति के संरक्षण का हम अथर्ववेद में शपथ लेते हैं, हे धरती माँ, जो कुछ भी तुमसे लूंगा वो उतना ही होगा जितना तू पुनः पैदा कर सके। तेरे मर्म स्थल पर या तेरी जीवन शक्ति पर कभी आघात नहीं करूंगा। मनुष्य जब तक प्रकृति के साथ किए गए इस वादे पर कायम रहा, सुखी और संपन्न रहा, किंतु जैसे ही इसका अतिक्रमण हुआ, प्रकृति के विध्वंसकारी और विघटनकारी रूप उभर कर सामने आए। सैलाब और भूकंप आया, पर्यावरण में विषैली गैसें घुली, मनुष्य की आयु कम हुई, धरती एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगी और ये वैश्विक तपन हमारे लिए चिंता का सबब बन गया। तापमान में बढ़ोतरी के कारण दुनिया भर में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जलवायु बदलाव के फलस्वरूप इंडोनेशिया में भयंकर सूखा पड़ा, अमेरिका में सैलाब आया, ग्रीनलैंड में संकट के बादल मंडरा रहे हैं और भारत की स्थिति भी भयावह है। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 15 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं, जबकि प्रतिवर्ष वन लगाने की अधिकतम सीमा 3,26,000 हेक्टेयर है। यही हाल रहा तो आगामी कुछ दशकों में हमारी धरती वन विहीन हो जाएगी। मनोप्रसंग हमें बताता है, जब पाप अधिक बढ़ता है तो धरती कांपने लगती है।

0: होती है। ये भी कहा गया है कि धरती का घर आंगन है, आसमान छत है, सूर्य चंद्र ज्योति देने वाले दीपक हैं, महासागर पानी के मटके हैं और पेड़ पौधे आहार के साधन हैं। हमारा प्रकृति के साथ किया गया वादा है, वो जंगल को नहीं उजाड़ेगा, प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ नहीं करेगा, ऐसी फसलें नहीं उगाएगा की कटाई नहीं करेगा। तो स्मरण रखना है, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करती है, इसके द्वार सबके लिए समान रूप से खुले हैं। लेकिन जब हम प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ करते हैं, तब उसका गुस्सा भूकंप, सूखा, बाढ़, सैलाब, तूफान की शक्ल में आता है, फिर लोग काल के काल में समा जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति से मनुष्य का संबंध अलगाव का नहीं, प्रेम का है। सचमुच प्रकृति से प्रेम हमें उन्नति की ओर ले जाता है और इससे अलगाव हमारे अधोगति का कारण बनते हैं। एक कहावत भी है, कर भला तो हो भला।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे हमारे जयपुर केंद्र से जनधन और वंदना। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए, प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। आज का एपिसोड नंबर 211।

श्री राम के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत का दुख और दाह ऐसे मिट गया जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम सीता और लक्ष्मण को देख सखा निषाद सहित भरत और शत्रुघ्न प्रेम के आनंदातिरेक में हर्ष विषाद सुख दुख सब कुछ भूल गए। स्नेह के सागर में डूबते उतराते भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए दंड की भांति श्री राम के चरणों में आ गिरे।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान, आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में हम आपको जानकारी देंगे आज के प्रातःकालीन और सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों की। अब से कुछ देर बाद यानी कि 6:45 पर आप सुनेंगे वागड़ी कार्यक्रम खेती ने बात। प्रातः 6:50 पर आदिवासी लोक संगीत, जिसमें आज आप प्रेमदास और साथियों की आवाज में लोक भजन सुनेंगे। प्रातः 7:20 का समय वातायन, वातायन में आज कहानी, कहानीकार है सीमा शाह जी, विषय है घना अंधकार। प्रातः 7:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, प्रातः 8 दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 का समय उद्घोषक के अपने कार्यक्रम कुछ दिल से, आज का विषय है जुल्फे। राजस्थानी लोक संगीत का समय रहेगा प्रातः 8:45 पर। प्रातः 9 जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 पर सुगम संगीत, दोबारा सुगम संगीत का आनंद लेंगे 11 और आज आप सुनेंगे हरिहरन और जसवंत सिंह की आवाज में गाई हुई कुछ चुनिंदा गजलें।

प्रातः 9:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, 10 बजे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम, प्रातः 11 बजे सुगम संगीत, 11:30 पर फिल्म संगीत, दोपहर 12 बजे से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। अब एक नजर सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। शाम 5:05 का समय युवा श्रोताओं का अपना पसंद

पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से दोबारा विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। शाम 6:30 का समय हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 बजे किसान महिलाओं का अपना कार्यक्रम बैरानी बात। शाम 7:30 पर जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। रात 8:45 पर दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। रात 10 बजे फिल्म संगीत। 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: ये तो थी जानकारी आज की सभाओं के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है वागड़ी कार्यक्रम खेती नी बात।
1: खेती नी बात हमारे और सब किसान भाई ने किसान बहनों ने सोराडी तक किनानी बहनों राम राम राम राम। किसान भाई देखो हर बार तो मेहनत अपना खेती बाड़ी में काम का झमेला में पड़े रहते हो। इन हाल हम बार भी करी जा थका है ना भैया। मौसम भी थोड़ा अभी भाई धीरे धीरे बदल ही रहते को है। दाड़ा में थोड़ी हल्की गर्मी पड़ी रही थी। मौसम में अपने आता जाता मौसम में अपने खास कर शरीर पर कई प्रकार में बुरा प्रभाव पड़े। कहीं अपने इस शरीर में तो सर्दी जुकाम खास कर शरीर में अपने ध्यान रखें भाई। खान पान में भी अपने ध्यान रखना जरूरी है भाई। आजकल आप खेती बाड़ी में काम है और खेती बाड़ी में काम में अपने भाई अपने स्वास्थ्य हद जरूरी है। अपन हाजा हाथ तो ऐसा खेती बाड़ी में काम टेम अनुसार कर सको क्योंकि भाई अपने हाजे हवा भी अपने खेती में काम टेम अपने रात्र भी करव पड़े। एट्ले अपना सही शरीर स्वस्थ हो तो अपन कर सको। स्वास्थ्य में भी ध्यान रखने काम करवा है। मैं भैया सब्जी भी लगाड़ी नहीं है टमाटर नहीं फसल नहीं तो टमाटर अच्छी फसल है। हमने थकी अपने अच्छी सब्जी थकी हर रोज इनकम भी मिले हर रोज आमदनी भी पैसा अपने कमाई मिल सके। एट्ले आज सब्जी नी फसल अपन करवा थकी घना लाभ है भाई। खेती ने आते आते भैया सब्जी टमाटर है मिर्ची है ये भी अपन फसल करूंगा हर रोज अपन यानी इनकम ले सकते। घर में सब्जी अपन उपयोग में लूंगा तो इन सके भी अपने घना गुण है भाई। बाजार थकी सब्जी लंबा थकी हुए भाई। आजकल रासायनिक दवाई है कहीं खातर है तो इन्हें प्रभाव पड़े भाई। अपने घर में अपन देशी खाद में उपयोग करूंगा देशी विधि थकी अपने उत्पादन करूंगा तो अच्छे किसान भाई उन्हें थकी अपनी सब्जी में कई प्रकार में पोषक तत्व बने थके रहेगा। मैं बाजार थकी हुए कई प्रकार में केमिकल कई रासायनिक उपयोग थकी अपने शरीर पर भी पूरा प्रभाव पड़े। मैं छोटी मोटी बातों में भी अपन ध्यान में रखी ना खेती बाड़ी में काम करवा किसान भाई देखो पशु खेती रहता था मैं भाई पशु गाय भैंस बकरी भी पाले जा सका है तो इन्हें भी अपने ध्यान रखो जरूरी भी गाय भैंस खान पान में भी अपने हर रोज ध्यान रख खास कर पशु ने स्वच्छ साफ पानी पाओ क्योंकि आप कहीं गंदो पानी कूड़ा कचरा वालो पानी पाई दंगा तो ये पशु है बीमार थवानी संभावना था। एट्ले साफ पानी पावो है ने आनंद हुए कि आपने पशु ने हर रोज नहलावो है इन शरीर पर कई प्रकार कई कीटाणु कई जुए वगैरह कई मिट्टी है तो इन्हें हर रोज अपन नहलाऊंगा तो इन्हें थकी शरीर ही साफ रहेगा इन्हें कई जुए वगैरह नहीं लागे। पानी छोटी मोटी बातों ध्यान रखो खान पान में भी अपने पशु ने भी पौष्टिक आहार अलवो है गवनी वाटो है जोन वाटो मक्का

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
0: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
2: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे आदिवासी लोक संगीत, जिसके अंतर्गत प्रेमदास और साथियों की आवाज में लोक भजन। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कहानी घना अंधकार। कहानीकार है सीमा शाह जी।
1: सुबह सुबह बाबूजी अखबार के पन्नों पर नई खबरों की उम्मीद में झुक झुक कर पढ़ते। उनकी आंखों की पुतलियां चमक उठती और कोई खबर उन्हें उत्साहित भी नहीं करती। उनके बायफोकल चश्मे से घिसे हुए कांच के बीच से उनकी आंखों के तरंगे उठती साफ देखी जा सकती थी और वे न्यूज पिटारा मन के अंतस में परत दर परत समेट लेते। शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटता तो वे आराम कुर्सी पर बैठे मुझसे दिन भर की बातें और अखबार की सुर्खियों से रूबरू करवाते। मैं अच्छे श्रोता की तरह सुनता, उनकी पीठ सहलाता और ऊपरी मंजिल पर चाय के लिए आ जाता। वहां भी दोनों बच्चों की चिल्लों और पत्नी निशी का घर पुराण। मैं सोचता कि क्या घर की परिभाषा अब इतनी जटिल होती जा रही है कि आदमी उम्र से अधिक बूढ़ा होने लगता है। हर किसी की आकांक्षा और विशेष पत्नी बच्चों की ख्वाहिशें पूरा करते करते वह भूलने लगता है अपना वजूद, अपना अस्तित्व। शायद यही सब चलते चलते सोच, व्यवहार, आदतें इन संस्कारों पर हावी होने लगती है जो बचपन में माता पिता ने सुई से धागों में पिरोए थे। आज ही घर में पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना और हमारा परिवार बाबूजी को घर में ताले में बंद कर एंजॉय की दिशा में चल पड़ा। छोटे से फ्लैट में वे कब आराम कुर्सी पर गर्दन औंधी कर इंद्रा मग्न हो जाते पता ही नहीं चलता। ताला खोलने के बाद बाबूजी को जगाकर बिस्तर पर सुलाना मेरी ड्यूटी थी। खैर, समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। आज महाशिवरात्रि थी, उन्हें मंदिर जाना था। मुझे देख उनका मन ममता से भीग गया। आज जल्दी आ जाना, ऑफिस से मुझे मंदिर ले चलना। मुझे मालूम था कि मैं उनकी अभिलाषा पूरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑफिस में आज एक पार्टी थी और मुफ्त का खाना पीना छोड़कर मंदिर नहीं, यह नहीं हो सकेगा। मैंने निशी को बताया कि वह आज रिक्शे से बाबूजी को मंदिर ले जाए। अगले दिन सुबह मुझे मालूम पड़ा कि निशी को बच्चों का होमवर्क करवाना था, इसलिए वह नहीं ले जा पाई। खैर, बात आई गई हो गई। ऐसी कई कई बातें जो माँ के जाने के बाद घटित होती थी पर्दे में छिप जाती और पता ही नहीं चलता कि कौन किसको छील रहा है। पर बाबूजी का तार तार होता मन लगता था रो रो कर उनकी आंखों की पुतलियां लीचियों की मानिंद धुंधली दिखाई देती। आजकल बाबूजी की शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता साफ नजर आती।

तब से उठ जाते। दरवाजे खिड़की खोले भी नहीं, अंधेरे में बैठे रहते। नाश्ता भी निशी उनके कमरे में ही पहुंचा देती, क्योंकि मेरे बच्चों को दादाजी के मैले कपड़ों से दुर्गंध आती। आजकल वे ज्यादातर समय खामोश रहते। तमाम तरह की आयुर्वेदिक गोलियां, टोटके और हर 15 दिन में उनके वैद्य मित्र का डॉक्टर लड़का उनको चेक करने आ जाता। वह उनका बड़प्पन था कि कोई फीस नहीं लेता और निशी चाय का भी नहीं पूछती। बुरा नहीं मानता, बल्कि अंकल जी स्वस्थ रहें उन्हें दवा खाने की ताकीद देकर चला जाता। पिछले कई सालों से बाबूजी भोजन के बाद एक कटोरी दही जरूर खाते। उन्होंने किताबें छानकर यह साबित कर दिया था कि इससे दिल की बीमारी को रोका जा सकता है। कमरे में कांच के शेल्फ के ऊपर तमाम तरह के डिब्बे, जिनमें बिस्किट, मुरमुरे, खट्टी मीठी गोलियां, तरह तरह के चूर्ण, खाना खाने के बाद चलते फिरते उनका मुंह चलता ही रहता। बाबूजी के पलंग के नीचे एक छोटी सी लोहे की पेटी थी। कभी कभी वे उसे टटोलते, कई यादगार लम्हों से रूबरू होकर हंसते या रोने लगते। उनमें हाथ घड़ी, पाइप सिंगार के खाली बक्से, माँ के साथ शादी की तस्वीर, उनका लावण्य भरा चेहरा, इन सब के साथ पुरानी हिसाब किताब की कॉपी जिसमें मेरे चॉकलेट का हिसाब भी लिखा हुआ था। आजकल अखबार की लाइनों पर नीली पेंसिल से नीचे लाइन खींच देते। कभी कभी अखबार की तह में छुपाकर रुपए रखते, वे अखबार निशी रद्दी में भेज देती। वे चिल्लाकर चुप हो जाते। अंधेरे में आराम कुर्सी में धस कर सब कुछ खो चुके व्यापारी की तरह बैठे रहते। समय के बोझ से थके मेरे बाबूजी के दिन इसी तरह व्यतीत होते, रातें भी इसी तरह कटती। शायद उम्र के दौर की यह सांझ वेला हर उम्र दराज को झेलनी पड़ती होती है। अकेलेपन का प्रभाव घने से घना होता जाता है। कभी कभी उनकी आंखों के अंचल में अवसाद दिखाई देने लगता। समाज, परिवार, जीवन की निरंकुशता से बहुत तकलीफ होती तो अंधेरे में सीढ़ियों के नीचे अकेले बैठे रहते। निशी का अनुशासन खींच खींच कर उन्हें और अशक्त और निर्बल बना रहा था। खाने में कमी, बड़बड़ाने में तेजी, लापरवाही का अंदाज, कभी सर्दी, खांसी, गर्मी का उपद्रव, सभी कुछ खत्म होने पर भी खत्म नहीं होता। उम्र का स्वभाव तेजी से बदलाव के दौर में उपस्थित था। निशी की बहन आज ही आई थी, वह भी सपरिवार। हंसी ठहाकों के दौर चल रहे थे कि प्रोग्राम बना कुल्लू मनाली और आसपास घूम आए। कई दिनों से जा नहीं पाए थे। बच्चों ने भी कहा हमारी छुट्टियां हैं, हमारे पर्यटन की तारीख पर मोहर लग गई। साथ ही निशी ने एक वाक्य पर मुझे चौंका दिया कि बाबूजी अब अशक्त हो गए हैं, अतः हमारे शहर के ओल्ड एज होम में उन्हें प्रवेश दिला सकते हैं, ताकि उनका बुढ़ापा आराम से गुजरे, हमारा जीवन भी तसल्ली बंद हो जाए। मैं सकते में था, कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि निशी का बोलना निरंतर चालू था। वहां की फीस भी उनकी बहन ने माफ करवा दी थी, क्योंकि वह ओल्ड एज होम की डायरेक्टर थी। पैसे और व्यक्तित्व की चमकदार धनी महिला, शायद यह सब उसी ने करा धरा होगा। बाहर रिक्शा आ गया था। बाबूजी व उनका जो भी छोटा मोटा सामान जाने के लिए आ चुका था। दोनों बच्चे फ्लैट की बालकनी से हंसते हुए बाय बाय कर रहे थे। निशी और मैं बाबूजी की इस जीवित विदाईगी के साक्षी बन उन्हें रिक्शे में बिठाने की मशक्कत कर रहे थे। मेरा दिल जार जार रो रहा था, पर कुछ नहीं कर पा रहा था। बाबूजी अर्थात छायादार बड़ा वृक्ष, जिसमें बचपन अपना घोंसला बनाता है, चिड़ियों की चहचहाट और बांसुरी की तान उसमें गूंजती है। अंडे से बच्चा और बच्चे से बड़ा होने तक वह उन्हीं पिता की उंगली पकड़ पांव पर खड़ा होना सीखता है, उनके कांधों पर चढ़कर शहर की गलियों से दोस्ती करता है नन्हा मुन्हा। फिर पिता की आंखों में अंकू आते हैं, बेटे को हर तरह से बड़ा करने के हजारों सपने। पिता की पीठ पर घुड़सवारी करके सुरक्षा की तहजीब सीखना, मिट्टी में खेलते हुए संस्कारों को संजोना, यही मेरे बाबूजी की चमकती कद्दावर आंखों में बेटे के व्यक्तित्व को निखारने की चाह थी। मुझे एक एक बात रील की तरह मस्तिष्क में फिल्म की तरह चलने लगी। बाबूजी आंसू और मुस्कान का वह समुच्चय
जो मेरे दुख में रोए।

सुख में हंसे, एक ऐसी चिंगारी जो जरूरत के वक्त तब्दील करता है शोले में, जो तपाता है घड़े को, जो अपनी संतान के लिए ढोता है पीड़ाओं के पहाड़, दर्द के हिमालय लेकर दौड़ता है रात और दिन, उफ नहीं करता। ऐसी हजारों हजार बातें कि निशिन कहा ओल्ड एज होम आ गया।

0: प्रति दैनिक क्षमता पर विराम लग चुका था। घना अंधकार मेरे आसपास छा रहा था कि गिरते गिरते बचा और बाबूजी ने यह पूछा कि बेटा कहीं चोट तो नहीं आई। रुलाई फूटी पर फिर भी किसी को बोल नहीं पाया। जबान उस अंधकार की कालिमा से लिपट कर कुछ बयां नहीं कर पाई। निशी और मैंने बाबूजी के कागजों पर हस्ताक्षर कर बाबूजी को वहीं छोड़ वहां सबसे विदा ली।
1: अभी आप सुन रहे थे वातायन के अंतर्गत कहानी घना अंधकार। कहानीकार थे सीमा शाहजी। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। लीजिए अब सुनिए हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। युगल गीतों के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आगाज करते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है रोशन ने, फिल्म का नाम ममता।

0: इतना ज्यादा हो सकता का है ये घन, जो जो भला साथ तो भी जाता है ये घन,
1: क्या जाता है
0: नहीं।
1: तो फिर

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूँ? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: लीजिए अब पेश है 2 मतवाले फिल्म का गीत, मोहम्मद अजीज कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, संतोष आनंद की रचना।

हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अगला गीत सुनवाते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में दुल्हन एक रात की इस फिल्म से। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, मदन मोहन का संगीत।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। अजीज कश्मीरी ने इसे लिखा है, ओपी नैयर का संगीत।

0: लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी।
1: मोहम्मद रफी और आशा भोसले के इस गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: ये है विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
2: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
4: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
5: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
4: समुद्र और जलमार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिग्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य

0: में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
1: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज विच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिकॉज वी आर गोइंग टू ऑल्सो कम अप विद ऑटो मेट्रो।
0: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की 2 अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
3: इन कार्यों को 4 विषयगत स्तंभों जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: तो शुरू करें

0: download Sevi Sarthi app.
1: Zalim Lotion.
2: Zalim Lotion, Zalim Lotion, Zalim Lotion. Wo hai Zalim Lotion.
1: Daag khaaj khujli mein aaram. Haani rahe bedaag Zalim Lotion.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल

0: रोहतांग का दौरा करेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोरवोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
0: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से यह दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिन्दुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रूपये के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर सीबीआई के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के ओएसडी सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया, दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
0: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार

0: सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए। लीजिए प्रस्तुत है उद्घोषक का अपना कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार। सुबह के इस खूबसूरत वेला में श्रोताओं आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज आपके अपने कार्यक्रम कुछ दिल से, आज आपके साथ आपकी आवाज आपकी दोस्त प्रेरणा उपाध्याय। श्रोताओं आज बात करते हैं जुल्फों की। जी हाँ, कहते हैं किसी की आंखें दिल चुरा सकती हैं, किसी की मुस्कान दिल में उतर सकती है, और कभी कभी किसी के जुल्फों की छांव भी मोहब्बत की पूरी कहानी कह जाती है। जुल्फे, जी हाँ, कभी चेहरे पर आती हुई शरारत है तो कभी हवा में उड़ती हुई कोई गजल, और कभी किसी की यादों में ठहरी हुई एक खूबसूरत शाम। इसी वजह से किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, तेरी जुल्फों की घटा जब भी मेरे पास आती है, तेरी जुल्फों की घटा जब भी मेरे पास आती है, दिल की सोनी सी जमीन फिर से महक जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये जुल्फे कुछ है ही ऐसी, इसकी अदाई कुछ ऐसी है। तो आज की सुबह कुछ बातें जुल्फों की ही होंगी, कुछ मोहब्बत की होंगी, कुछ यादों की होंगी, और कुछ उन खूबसूरत नगमों की जिसमें जुल्फों ने भी अपनी एक अलग ही प्रेम कहानी लिखी है। तो चलिए सुनते हैं आज का ये पहला नगमा।

वाह जी हर्षदा, एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम कुछ दिल से में। रेशमी जुल्फे शरबती आंखें, कभी कभी गीत ही इतना काफी होता है कि पूरा मौसम रोमांटिक बन जाता है। दोस्तों, जुल्फों का रिश्ता सिर्फ खूबसूरती से नहीं होता है, बल्कि उससे जुड़ी एक अदा है। जब हवा चलती है और जुल्फे चेहरे पर आ जाती है तो उन्हें हटाने का अंदाज भी कभी कभी मोहब्बत की भाषा कह जाता है। इसलिए किसी शायर ने खूब कहा है, हवा ने छुआ तो जुल्फे सवरने लगी, हवा ने छुआ तो जुल्फे सवरने लगी, नजर क्या मिली धड़कने ठहरने लगी। जी हाँ दोस्तों, जब जुल्फों की बात आती है और उसमें छुपी शरारत ना हो तो बात नहीं होती। ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि कभी जुल्फे चेहरे पर आती, कभी आंखों को छुपाती है, कभी हवा उन्हें बिखेर देती है, तो कभी कोई उन्हें वापस संवारता है और संवारते संवारते अपनी ही धड़कनों को सुनने लग जाता है। मोहब्बत में शायद यही छोटी छोटी बातें सबसे बड़ी यादें बन जाती हैं। जैसे शाम उसने जुल्फे सवारे तो लगा जैसे

शाम सवर गई। उसने पलट कर देखा तो लगा जैसे दुनिया पूरी ठहर गई। जी हाँ श्रोताओं, ऐसी ही है ये जुल्फ़ें।

वाह दोस्तों, क्या खूब नगमा था। ये जुल्फ अगर खुलकर बिखर जाए तो अच्छा। दोस्तों, कभी कभी लगता है जैसे इन जुल्फों के साथ शाम भी खुलकर सांस लेने लगी है। हवा उन्हें छूकर गुजरती है तो जैसे कोई धीमी सी धुन जन्म लेती है, और जब ये चेहरे पर आकर ठहरती है तो ये चांद भी अपनी रोशनी कुछ कम कर देता है। ये जुल्फ अगर खुलकर बिखर जाए तो अच्छा, दिल को तेरी यादों में ठहर जाए तो अच्छा। तू सामने बैठे और मैं कुछ भी ना कहूं, बस तेरी निगाहों से गुजर जाए तो अच्छा। क्या मोहब्बत का एक खूबसूरत इजहार है, किसी बड़े वादे में नहीं बल्कि उस पल में छुपा है जब कोई अपने जुल्फे सवारते हुए चुपके से मुस्कुरा दे। जी हाँ दोस्तों, कितना खूबसूरत ख्याल है। और इसी ख्यालों में एक शाम हो, खूबसूरत शाम हो, हल्की हवा हो, पास कोई अपना हो और उसके जुल्फे हवा के साथ धीरे धीरे

जा रही हो। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर किसी कैमरे में कैद नहीं होती, बल्कि दिल में कैद हो जाती है। और ऐसी ही एक तस्वीर के लिए एक शेर बुक कहना चाहूंगी दोस्तों, तेरी जुल्फों की छाव में कुछ पल ठहर जाने को जी जाता है, तेरी जुल्फों की छाव में कुछ पल

जी हाँ दोस्तों, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, बस इतना चाहा था कि ये शाम तेरे पास बैठकर गुजर जाए, मगर वक्त ने हमें दूर कर दिया और तेरी यादों में हर शाम को तेरी जुल्फों की तरह मेरे दिल पर बिखेर दिया। दोस्तों जुल्फे हैं जो प्यार मोहब्बत यादें सबसे जुड़ी हुई है, बस इन्हें संवारने की जरूरत होती है। तो दोस्तों अब इस कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द हाजिर होते हैं, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार और सुनिए ये कुछ संदेश।

0: कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: असवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोतो एक बार फिर स्वागत है आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल में और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ दिल से। जी हां श्रोताओं, और आज बात हो रही है जुल्फों की। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि किसी खास इंसान की मौजूदगी में सिर्फ इंसान नहीं बदलता बल्कि आसपास की हवा भी बदल जाती है। कैसे? जी हां, उसकी हंसी, उसकी आंखें और उसके बालों की हल्की सी खुशबू से और हवा में लहराती उसकी जुल्फों से सब मिलकर एक ऐसा एहसास बना देते हैं जिसे शब्दों में कहना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी कहना चाहूंगी दोस्तों, वो जुल्फे क्या थी जैसे शाम का कोई बादल जिसके नीचे बैठकर दिल को सुकून मिल जाए। जी हाँ, लेकिन जब ये उड़ने लगती है, बिखरने लगती है, तो बात ही कुछ और होती है। पता नहीं, किसी का दिल मचलने लग जाता है

दोस्तों आज के कार्यक्रम कुछ दिल से में बात शुरू हुई थी जुल्फों से लेकिन पहुंच गई मोहब्बत तक। किसकी जुल्फे अगर आपको कभी याद आए तो उन्हें सिर्फ खूबसूरती की तरह मत याद कीजिएगा बल्कि उस एहसास की तरह याद कीजिएगा जिससे आपके चेहरे पर कभी मुस्कान लाई हो, उस मुस्कान को याद कीजिएगा।

और चलते चलते कुछ पंक्तियां। जुल्फे थी या शाम का कोई हसीन साया था, जिसे देखा तो दिल ने बस इतना कहा, ये पल थोड़ा और ठहर जाए, क्योंकि इसमें किसी अपने की यादों का उजाला है। जी हाँ दोस्तों, इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज आपके दोस्त आपकी आवाज प्रेरणा उपाध्याय को दीजिए इजाजत। मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपने दिल में मोहब्बत की जगह हमेशा बचाकर रखिए। फिर मुलाकात होगी कुछ दिल से और कुछ दिल की बातों के साथ, तो दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोता हम अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सीमा मिश्रा की आवाज में गाए लोकगीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
6: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
7: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
6: हाँ।
7: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
6: हाँ।
7: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
6: हाँ? पता नहीं।
7: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा

0: तुम देखो
1: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

शोधों में भी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत, जिसके अंतर्गत सीमा मिश्रा की आवाज में लोकगीत। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू। पहले चरण में 1,34,000 से अधिक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स का काम पूरा और भारत ओडीओपी संगम आज से नई दिल्ली में। प्रदेश के 28 ओडीओपी उद्यम अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों से कई नेता वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जयपुर के मानसरोवर से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इस अवसर पर सेवा ज्योति यात्रा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पोस्ट में प्रधानमंत्री की 25 वर्ष की इस सेवा यात्रा को राष्ट्र सेवा के संकल्प को समर्पित बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछली बार रेपो दर में बढ़ोतरी वर्ष 2023 में हुई थी, जब आरबीआई ने दर को 0.25% बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। वर्ष 2023-24 में दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद साल 2025 में ब्याज दरों में कटौती शुरू हुई। फिलहाल आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य से होकर गुजरने वाली 3 नई रेलगाड़ियों के परिचालन को मंजूरी दी है। इनमें भुज बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है। ये रेलगाड़ी कोटा सवाईमाधोपुर गंगापुर सिटी और भरतपुर होकर चलेगी। वहीं हरिद्वार ओखा एक्सप्रेस और हरिद्वार वेरावल एक्सप्रेस अलवर जयपुर अजमेर और आबू रोड होकर चलेंगी। इन रेलगाड़ियों के संचालन से यात्रियों को इन शहरों के बीच आने जाने की सुविधा मिलेगी। इस बीच आगामी त्योहारी सीजन में यात्रियों की संख्या के मद्देनजर उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्टेशनों पर सुरक्षा और यात्री सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की है। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में हुई संरक्षा और कार्य समीक्षा बैठक में महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने अधिकारियों को प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं देने को कहा है। बैठक में ट्रेनों के सुरक्षित संचालन, रेलवे ट्रैक की सुरक्षा तथा विद्युत और सिग्नल उपकरणों के रखरखाव की भी समीक्षा की गई। जयपुर के जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में सतत कृषि उत्पादन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। 21 दिन के इस प्रशिक्षण में देश भर के 82 से अधिक वैज्ञानिक और प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान कृषि और संबद्ध विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन व्याख्यान और तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉ पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कृषि तकनीकों का विकास किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
1: मुख्य रूप से इस ट्रेनिंग का जो फोकस है वो हमारे जो इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट है कृषि के अंदर, वो सबका होलिस्टिक अप्रोच है। इसमें सभी डिसिप्लिन्स का इसमें कवर किया गया है, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, हॉर्टिकल्चर से है, एलटीएम से है, इसके बाद में एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, यानी सभी सब्जेक्ट के एग्रीकल्चर का इसमें समावेश होगा लेक्चर्स के अंदर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की

0: शुरुआत अगले साल 25 जनवरी से होगी। 28 फरवरी तक चलने वाले इस चरण में लोगों की गणना की जाएगी, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी की विस्तृत जानकारी इकट्ठी की जाएगी। इससे पहले 10 से 24 जनवरी तक नागरिकों को स्वगणना की सुविधा मिलेगी। जनगणना डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी और फील्ड कार्यों की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल जयपुर में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक ली। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को जनगणना सुचारू रूप से संपन्न कराने को कहा, साथ ही इसके लिए कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि पहले चरण में 1,34,091 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में भवनों, जनगणना मकानों और परिवारों की सूची तैयार करने का काम पूरा कर लिया गया है। राज्य में कम बारिश के कारण पानी की समस्या को देखते हुए गौशालाओं में पशुओं के लिए पर्याप्त पानी और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम जी भाले ने कल जयपुर में गौशालाओं में चारे और पानी की उपलब्धता की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में गौशालाओं में साफ पीने के पानी की नियमित आपूर्ति और चारे की उपलब्धता, भंडारण तथा गुणवत्ता की निगरानी करने को कहा, साथ ही कमी सामने आने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में जिलों के अधिकारी और गौशाला संचालक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। जयपुर में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। राजकीय महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र के तहत लगाए गए इस प्रशिक्षण शिविर में पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग टीम की ओर से छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। कॉलेज आयुक्तालय के संयुक्त निदेशक प्रोफेसर शोभाराम शर्मा ने बताया कि अब तक 15,000 से अधिक छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
1: कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए उनको आत्मरक्षा, कई बच्चियां जाती हैं अनहैपनिंग होती है उनके साथ, तो उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा शुरू में 33 महाविद्यालयों में ये स्कीम शुरू की गई थी। उसके बाद 2025-26 में 314 महाविद्यालयों में शुरू की, जो कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणाओं में शामिल की गई। उस 25-26 में हमारी करीबन 15,800 छात्राएं से लाभान्वित हुई। इसमें पुलिस विभाग के साथ मिलकर के पुलिस विभाग के अधिकारी और ये लड़के बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं, जिससे बच्चियां कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो उससे निपट सके।
0: भारत ओडीओपी संगम आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम भारत मंडपम में 11 अक्टूबर तक चलेगा। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और सह विक्रय कार्यक्रम में देश भर की 600 से ज्यादा इकाइयां और प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों के 38 ओडीओपी उद्यम अपने विशिष्ट उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इनमें रत्नाभूषण, मार्बल, हस्तशिल्प, वस्त्र और परिधान शामिल हैं। बारा में डीएपी खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा के लिए प्रशासन और कृषि विभाग की टीमें खाद विक्रेताओं और गोदामों का औचक निरीक्षण कर रही हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राजेश विजय ने बताया कि अक्टूबर में जिले को 15,000 मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है। अब तक 3,374 मीट्रिक टन डीएपी जिले में पहुंच चुका है।
2: राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार नियमित रूप से उर्वरक की आपूर्ति करा रही है। अब रबी सीजन 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। पूरे रबी सीजन में 12 जिले में यूरिया की 90,000 मैट्रिक टन और डीएपी की 35,000 मैट्रिक टन की आवश्यकता रहेगी। अभी माह अक्टूबर में यूरिया की 20,000 मैट्रिक टन की आवश्यकता रहेगी और डीएपी की 15,000 मैट्रिक टन की आवश्यकता रहेगी। यूरिया आज 1 तारीख से लेकर 5 अक्टूबर, 5 दिन में हमारे पास 20,000 मैट्रिक टन की जगह 15,000 मैट्रिक टन हमारे पास आ चुका है और वो उपलब्ध है। साथ ही डीएपी जो 15,000 मैट्रिक टन पूरे महीने आएगा, उसके विरुद्ध अभी तक 3374 मैट्रिक टन आ चुका है और शीघ्र ही 2 से 3 दिन में पूरी रेक क्रॉपों की लगभग 2,500 मैट्रिक टन डीएपी आ रहा है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू। पहले चरण में 1,34,000 से अधिक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स

0: का काम पूरा। और भारत ओडीओपी संगम आज से नई दिल्ली में प्रदेश के 28 ओडीओपी उद्यम अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुना रहे हैं हरिहरन की आवाज में गाई हुई कुछ चुनिंदा गजलें।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये?

0: हैं? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान। साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

सुगम संगीत के अंतर्गत हरिहरन की आवाज में कुछ चुनिंदा गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ही माही चैनल है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
1: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग NCERT कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुले जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, तेवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी।
1: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार,
2: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
1: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष काइंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
2: CIET द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
2: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की धनी अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
1: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
2: जी।
1: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी, जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
1: बिल्कुल सही,
2: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं
1: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी, पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा?
2: अजीत जी, सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे
1: जी। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
1: और श्रोताओं, उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी, श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
2: अजीत जी, ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
1: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है
2: जी।
1: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।

0: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गांव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
1: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
0: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
0: एक बच्चा पढ़ाना,
1: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
0: पर्यावरण की रक्षा करना,
1: ईमानदारी से अपना काम करना
0: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
1: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी तो श्रोताओ, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
1: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए, महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
0: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है?
1: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
0: एनसीईआरटी की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: अंकल चलती जाती चीटी, शम का राग सुनाती चीटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम। ओहो मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
0: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
0: भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
2: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है, मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
2: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है, सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं।

0: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
0: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
0: पेड़ हंसने लगा।
2: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ। बस सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
0: सिमरन ने आंखें झुका ली।
1: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
0: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
1: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
3: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तो और,
1: बस बस, मैं समझ गई।
0: वो सोचने लगी,
1: परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
0: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
1: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
4: तो बच्चों, सुना आपने? मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है। अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की जहाँ तक हो सके मदद करना। है ना ये हमारा अपना काम? तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
5: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: सरमोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकटचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्ष गुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
2: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
2: बहुत अच्छा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह, कमाल कर दिया। साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: पुणे के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
2: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंधु प्रांत का एक नगर है, इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
3: फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
4: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
3: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
5: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
4: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा?

0: इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
1: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
0: क्यों?
1: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
0: हो।
1: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
2: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए शक्कर में कर दिया जाए।
1: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
2: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
1: थैंक यू।
3: साथियों, विश्वेश्वरैया के सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और शक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
4: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
3: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
5: किसने खींची चेन?
0: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
1: जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
5: व्हाट? क्या मजाक है? ये आप कैसे कह सकते हैं?
1: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
5: आइए आइए, देखते हैं।
1: आइए, हम भी चलते हैं।
5: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
1: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
3: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
1: आइए सर, आइए देख लीजिए।
5: अभी तक तो यहाँ भी ठीक ही है। आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहाँ पटरियां तो सच में उखड़ी हुई है। ये देखिए, यहाँ पटरियां उखड़ी हुई है। अब मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
1: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है। तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
5: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
0: वी आर सो थैंकफुल टू यू, इट्स अमेजिंग। मे आई नो योर नेम प्लीज?
1: आई एम डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया।
0: The engineer in chief of Mysore state.
2: और रेलवे सचिव भी।
1: नमस्कार सर। जी जी सर, मैं वही हूँ।
0: नमस्कार सर, नमस्कार। We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much sir. Thank you.
1: धन्यवाद।
3: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
4: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम

0: पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
1: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
0: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
1: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
3: जब मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा, रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तब मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारे आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT द्वारा उमंग, आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 10 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: से बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत जिसका नाम है उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वर्षों से बचपन से जिसको सुनते आ रहा हूँ आज वहाँ पे बैठा हूँ। मेरे सामने जुबेर भाई है जिनको मैं अक्सर प्रोग्रामिंग हेट के बारे में सुनता था, आज मैं उनको देख भी रहा हूँ। आप हैं, आपकी आवाज सुनता था, मेरे सारे अभी मतलब मैं थोड़ा सा खोया खोया हूँ क्योंकि एक साथ कई सारी यादें मेरे दिमाग में आ रही हैं और मुझे पता नहीं मैं कौन सा शेयर करूं, कैसे बात करूं।
1: नहीं, आप दिल खोल के हर एक याद शेयर कीजिए, हम उसी के लिए है ताकि हमारे सुनने वालों तक आपके दिल की बातें पहुंचे, सबसे ज्यादा जरूरी। और आपके पसंदीदा गीत हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, वो भी आपको शेयर करने। और रेडियो में जैसे हम आए, विविध भारती से जुड़ी बहुत सारी यादें आपने शेयर की है हमारे साथ।
2: बिल्कुल।
1: तो विविध भारती किस तरह से आपकी जिंदगी से जुड़ा और उसकी कुछ यादें वो हमें जरूर बताए, वहां से शुरुआत करते हैं।
2: बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज मेरा दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि मैं अपने बचपन के दिनों को याद करने वाला हूँ और बचपन मेरे बड़े खूबसूरत रहे, सबके होते हैं बहुत खूबसूरत, बस उसको याद करना बहुत अच्छा लगता है। तो रेडियो से मैं कैसे जुड़ा, हम इसकी बात करते हैं। पहले तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम लोग अगर कभी टीवी देखना भी होता था तो भाड़े पे बैटरी लेकर के आते थे।
1: अच्छा।
2: हाँ जी, तो 12 रुपए या 15 रुपए में भाड़े पे मिलता था 2-3 दिनों के लिए, तो उसमें हम सैटरडे फ्राइडे और संडे को फिल्में आती थी। फ्राइडे को आई थिंक रात के 9:30 बजे से, फ्राइडे को, सैटरडे को रात के 10:30 बजे से और संडे को शाम 4:30 बजे से आता था।
1: हाँ, 4 या 5 बजे।
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यही हमारा एक फिल्म देखने का साधन हुआ करता था। लेकिन पिताजी ने एक रेडियो 2 सेल का लेके आया था, उन्होंने, बच्चे ही थे और बाकी मेरे गांव के लोग जब रेडियो सुनते थे तो मुझे भी लगता था मुझे भी रेडियो चाहिए। और मैंने जब रेडियो लगाया और मुझे नहीं पता था, बस ऐसे ही रैंडम एक दिन विविध भारती आया, मुझे एग्जैक्ट वो एज तो नहीं पता, बट उस दिन से मुझे लत लग गई। और कमाल की बात ये बताऊं मैम आपको कि मेरे पिताजी अभी रिटायर हुए हैं, 1 महीना पहले मैंने पापा को एक रेडियो गिफ्ट किया है।
1: अच्छा।
2: हाँ जी,
1: क्या बात।
2: क्योंकि अगर मेरे पिताजी अगर वो रेडियो नहीं दिए होते तो आज मैं अभिनेता नहीं होता, क्योंकि उस रेडियो की वजह से ही मुझे अभिनेता बनना है ये ख्याल आया। और उसकी तैयारी कैसी की जाए, मुंबई कैसे जाया जाए, कहां से थिएटर की जाए, वो सब मुझे विविध भारती में जो आप लोग इंटरव्यू लेते थे, है ना, आज के फनकार हुए चाहे आज के मेहमान हुए, ये सारे गेस्ट आते थे पिटारा में, तो वो सब सुन सुन के या फिर मुझे जो फ्राइडे को एक फिल्म के ऊपर आती थी बातें, लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे
1: जी जी।
2: तो वो सब सुन के मैं अपने आप को तैयार किया और पूरी जिंदगी अब तक सिर्फ और सिर्फ मुंबई के बारे में, एक अभिनेता के बारे में सोचता रहा।
1: आपका रिसर्च वर्क वहां से शुरू हो गया।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से विविध भारती मेरे जिंदगी में आया। और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ, मैं कई बार लोगों से शेयर किया हूँ कि आज जो मेरा व्यक्तित्व है या फिर मैं जो चंदन हूँ, अगर 50% मेरे माँ बाप, मेरे आसपास का संस्कार अगर मेरे अंदर है तो 50% विविध भारती का भी है। विविध भारती ने मुझे बोलना सिखाया, विविध भारती ने कैसे मुंबई जाया जाए, अपने सपनों को कैसे साकार किया जाए और कैसे अपने सपनों के लिए लड़ा जाए, जूझा जाए
1: जी।
2: है ना, और हमेशा पॉजिटिव रहना, क्योंकि एक बाल मन में जिसको कुछ भी वो दुनिया देखा ही नहीं है, सिर्फ उसी छोटे से रेडियो सेट से ऊपरी दुनिया को देख रहा है, तो ये पूरा श्रेय मैं विविध भारती और रेडियो को देना चाहता हूँ।
1: ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि विविध भारती से लोग जुड़ते हैं और इतना ज्यादा उन पर असर, उनकी जिंदगी पर असर करती है विविध भारती।

0: बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
1: शुक्रिया।
0: बचपन की जैसे बात की आपने, तो गांव कैसा था, परिवार कैसा था, क्या उनको सही था कि आप अभिनय में आए, क्या वो इस चीज से खुश थे, या फिर जैसे कहते हैं ना गांव में आप रहे हैं, उस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं। दूसरी चीज, बचपन को जिया है शायद आपने, जिसे सही मानों में कहते हैं जिया है, तो उसकी कुछ यादें बताइए, कैसे थे आप बचपन?
1: बिल्कुल, अरे वाह। एक तो जहां पे मतलब, क्योंकि मैं रेडियो बहुत सुनता था, रात्रि सेवा भी सुनता था, अगर मेरी आंखें खुल गई हो 2:30-3 बजे तो मैं चुपके से रेडियो ऑन करके और उसी पे कान रख के सो जाता था और गाने चल रहे होते थे। मुझे रेडियो से इस कदर मोहब्बत थी, तो जहां मेरे रेडियो सुनने से मेरे घर वाले को आपत्ति हुआ करता था, वहां अगर मैं ये कहूं कि मुझे सिनेमा में जाना है, मुंबई जाना है, तो ये बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं सुहाएगा। करेक्ट। तो मुझे याद है कि जब मैंने +2 किया था तो पिताजी से मेरा बहुत अच्छा, मतलब मैं नहीं उनसे कंफर्टेबल रहता था, एक डर रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे।
0: अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थे?
1: नहीं, कभी भी नहीं, उन्होंने मुझे आज तक एक चाटा भी नहीं मारा।
0: अच्छा,
1: है ना। बट उनका ये था कि मुझे डर लगता था वो वर्दी से। अब हो सकता है फिल्मों का ही देन हो, चूंकि मैंने फिल्मों में पुलिस वालों को ऐसा ही देखा है। तो बट मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी, बहुत प्यारे, बट मैंने कभी हमारी उस तरह से यारी दोस्ती नहीं हुई पापा के साथ। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई चंदन बोल रहा है कि जाएगा बम्बई, हीरो बनेगा।
0: अच्छा।
1: तो मेरे पिताजी ने कहा अच्छा फिल्म में भर्ती होगा। तो बहुत अजीब सा था घर का माहौल, और पहली बार लगा कि अरे यार ये लोग को पसंद नहीं है, शायद मुंबई ना जा पाऊं मैं। बट फिर आप लोगों ने हौसला दिया, मतलब वीर भारती ने हौसला दिया कि देख सपना है अगर तो तुम्हें ही पूरा करना होगा,
0: और सपनों की नगरी में आना ही है।
1: बिल्कुल, और कोई और नहीं तुम्हारे सपनों के लिए कुछ, कोई क्यों ही करे
0: जी,
1: तुम्हारा है तुम लड़ो।
0: बचपन में कैसे थे, नटखट थे?
1: अरे बहुत।
0: किस तरह के आपने बचपन को जिया है जैसे?
1: जी जी।
0: तो किस तरह से जिया है, वो गांव का जो परिवेश होता है, घर में किस तरह से थे भाई बहनों के बीच?
1: बिल्कुल।
0: आप ज्यादा शरारती थे मेरे ख्याल से।
1: हाँ मतलब शरारती तो था ही। कमाल की बात यह कि जहां मेरा घर है ना गांव में, मेरे घर के बगल में गंगा नदी बहती है।
0: अच्छा।
1: नदी से इसीलिए मैं बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ, और नदी के बगल में मेरा गांव घर, और वहां पे एक छोटा सा ही कस्बा है वो, जहां पे 3-3 पिक्चर हॉल हुआ करता था, अब तो एक भी नहीं है, सिंगल स्क्रीन।
0: अच्छा।
1: और बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा गांव, 3 पिक्चर हॉल थे फिर भी छोटा था वो। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यार आप ना सिर्फ उस रास्ते पे चल रहे होते हो और सब कुछ लिखा हुआ होता है।
0: बिल्कुल।
1: आप यकीन माने मैं सिर्फ उस रास्ते पे चलता रहा और चीजें अपने आप होती चली गई। कई बार मुझे लगता है कि सच में मेरे साथ जादू हुआ है। एक लड़का जिस गांव में सिर्फ लोग पेट भरने के लिए सोचते हैं कि कहीं से नौकरी हो जाए 2 रुपए की और अपना जीवन यापन हम अच्छे से गुजार पाएं, वहां एक लड़का सोचता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जाना है मुंबई। बिहार में अमूमन सभी घर में सभी माँ बाप चाहते हैं कि छोटी सी ही नौकरी पर हमारे बच्चे को एक नौकरी होनी चाहिए। और मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे दादाजी 5 भाई थे और उनमें से 3 भाई इंडियन आर्मी में थे, पिताजी बिहार पुलिस में, चाचा लोग कोई असम राइफल्स में है, कोई BSF में है। वहां एक लड़का, अच्छा और भी कई सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं।
0: अच्छा।
1: बट मैं सोचा कि नहीं मुझे तो जाना है मुंबई। तो ये थोड़ा सा मेरे घर वाले के लिए मुश्किल था। कई बार मुझे ये लगता है थोड़ा सा फिलोसफी वाली बातें हो जाएंगी, बट ये जो हैप्पीनेस है मेरे लिए ये ना बहुत सब्जेक्टिव है, और ये सॉफ्टवेयर बचपन से इंस्टॉल होकर के आया है मेरे पास।
0: बिल्कुल।
1: मैं बेवजह खुश हो जाता हूँ कई बार,
0: वो खुशी कहीं ना कहीं अंदर ही है।
1: हाँ।
0: जिसे हम बाहर तलाशते हैं
1: जी, और यही वजह है कि मुंबई भी मुझे लगा कि अरे ये तो हो ही जाएगा, ये तो मेरे लिए ही बना है भाई, मैं तो जाऊंगा मुझे काम मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: यही एटीट्यूड था मुझे, कभी भी शक नहीं हुआ कि अरे भाई ये लड़का से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे,
0: कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
1: हाँ।
0: चलिए आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को, कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे?
1: एक बहुत प्यारा गीत है, गाने का बोल है जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है बेटा, फिल्म का ये गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।
1: यस।

0: बात चली है चंदन रॉय से, तो बचपन की बातें तो बहुत सी आपने की है, अब पढ़ाई से आपका कैसा नाता था, कैसा रिश्ता था?
1: हाँ जी, देखिए पढ़ाई में तो थोड़ा सा मैं मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट तो नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ता था लेकिन हो ही नहीं पाता था मेरे से। मैं भूल जाता था चीजें, जैसे तारे जमीन पे जो प्रॉब्लम था ना उस बच्चे का, कई बार मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था।
0: अच्छा
1: हाँ, आप मुझे बोल दो कुछ लिखने के लिए ना, तो कभी मैं हर्षी लिख दूं, कभी दीर्घी लिख दूं, किसी हिंदी में भी, तो था ये, मैं चीजें भूल जाता था और टीचर भी बहुत पीटते थे कई बार। तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई से दूरी हो गई कि ये मेरे को पीटते भी हैं, समझ में भी नहीं आता। हाँ, मुझे SST बहुत अच्छा लगता था, मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था, ये सारे सब्जेक्ट सही लगते थे, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की, अरे नहीं नहीं नहीं ये आर्ट ले लेगा तो क्या ही करेगा जीवन में। दो तीन आंटी भी थी, वो लोग भी कि नहीं नहीं नहीं नहीं इसको साइंस साइंस ले लो।
0: और कहीं ना कहीं आपका सपना अभिनय में आने का था,
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ
0: उस
1: जी,
0: तरफ रुझान शुरू से था।
1: हाँ। और जब भी कोई इस तरह की बातें करता था ना कि मेरे जो गोल है, एम है, उससे हटके बातें होती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे ना वहां से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जाना कहीं और है, मुझे कोई और बुला रहा है, तो मुझे क्यों इस तरफ लेके आके आ रहे हो, है
0: बिल्कुल
1: ना। तो हमेशा मतलब 10th में भी बहुत ही कम नंबर आया, 12th में भी यही हाल था, मतलब किस तरह मैं पास हो गया। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं पास ही नहीं होता। हाँ,
0: जी,
1: बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने मास कॉम ले लिया था।
0: ये आपने पटना से किया
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: जी।
1: तो मास कॉम इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अरे लाइट रहेगा, कैमरा रहेगा, माइक रहेगा, तो मैं थोड़ा सा सिनेमा के आसपास रहूंगा और थोड़ा जागरूक भी रहूंगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है
0: बिल्कुल
1: ये सब मुझे पता होगा, तो इसलिए मैंने मास कॉम किया। और हाँ, फिर मेरे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, मतलब बहुत अच्छे नहीं, जिसको हमेशा 52-53 आ रहा उसके लिए।
0: लेकिन आपके पसंद के विषय अब आ गए थे, आपका पसंद कहीं ना कहीं
1: हाँ
0: आ गया
1: जी,
0: था,
1: हाँ जी, हाँ
0: इसीलिए
1: जी, हाँ
0: वो
1: जी,
0: फर्क पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं ये अब महसूस करता हूं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है एक अभिनेता के लिए। तो
0: अभी आपके पसंद का दूसरा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं,
1: देखो,
0: सुनाएंगे?
1: आज तो मैं सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि विविध भारती मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, तो मैं वही सब पुरानी चीजें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं उन्हीं दिनों को याद करता रहूंगा और उन्हीं दिनों के गाने भी सुनता रहूंगा। तो अभी मैं अपने पसंद का गाना बताना चाहता हूँ, अंदाज फिल्म का। अंदाज का कोई भी गाना चलेगा, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, जो अक्षय कुमार और प्रियंका और लारा दत्ता की फिल्म थी।
0: जी
1: अरब इश्क न हो बे रब इश्क।

0: अच्छा, हम आते हैं इस सवाल पे कि आपने अपना नामकरण खुद से कर लिया था, आपने अपना नाम बदल दिया है।
1: हाँ जी।
0: है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, वो जरा बताइए कि क्यों बदला, कैसे बदला, राय की जगह रॉय, ये कहां से आया?
1: ये सवाल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका जवाब विविध भारती के पास है, क्योंकि लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे बायोस्कोप की बातें। तो एक बार उन्होंने 2 बीघा जमीन सुनाया और वो इस तरह से सुनाते थे पूरी कहानी को, फिल्म और फिल्म के पीछे की बातें, तो दिल को भा जाती थी। तो हमने डिसाइड किया था कि चंदन राय से मैं चंदन रॉय हो जाऊंगा, सिर्फ बिमल रॉय की वजह से। मुझे वो इतना कमाल लगा, 2 बीघा जमीन। तो इसकी ये कहानी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बचपन की बातें की थी, तो मैं ना एक छोटी सी कहानी याद करना चाहता हूं, मैं भूल ना जाऊं। मेरे यहां ना वही, जैसा मैंने कहा कि मेरे यहां 3 पिक्चर हॉल था, तो एक शिवम टाकीज, अमरदीप और गंगा हुआ करता था। तो रामनवमी का समय और मैंने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी थी, ये दिल आशिकाना। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो भाई चलना है फिल्म देखने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख चुका हूं। बोले नहीं नहीं फिर से चलते हैं। और रामनवमी का समय था, पूरे शहर में जुलूस निकला हुआ था और इवनिंग शो, तो चला गया। बट वो शो का टाइम था 8 से 11, मतलब 8 बजे से 11 बजे रात तक। 10 बज गए 11 बज गए, घर के लोग मुझे ढूंढने लगे कि भाई कहाँ गया। माँ ढूंढ रही है कि भाई 1 2 3 4 बच्चा कहाँ है मेरा। मुझे याद है कि घर पे ना एक रिक्शा आया, उसमें वो एक बांधा गया चूंगा कि भाई एक लड़का खो गया है, इस रंग का है, शर्ट ये पहना है, नाम ये है, कहीं अच्छा। मिले तो बता देना। तो इस तरह के घर पे ना वो शुरू हो गया था। और मैं उधर ये दिल आशिकाना उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, इस तरह गाने चल रहे हैं और मैं एकदम सब कुछ भूल के फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म जब खत्म हुई और तब तक 12:30 हो चुके थे, और मेरे, जैसा मैंने कहा कि मेरे एक चाचा जी फौज में है, तो वो ढूंढ रहे थे बाइक्स पूरे महनार में। संयोग से पटेल चौक पे मैं मिल गया उनको। मेरे सारे दोस्तों भाग गए और उन्होंने मुझे पकड़ के जो पीटा बीच चौक पे, फौजी आदमी अपना जूता खोला और जूते से पीटना शुरू कर दिया उन्होंने मुझे, बहुत पीटा। फिर उसके बाद बाइक पे बिठाया, फिर घर लेके आए। मुझे लगे यार घर पे भी सब पीटेंगे अब मुझे। पूरे घर के जो भी लोग थे सब बाहर दरवाजे पे खड़े थे कि भाई लड़का गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर मेरी माँ जैसे मैं गया हाथ पकड़ी घर में लेके चली गई। बट उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, सिर्फ ये कहा कि आज के बाद ऐसा मत करना। हालांकि मैं मानने वाला कहां था, 1-2 महीने के बाद फिर से पिक्चर के बिना मैं रह नहीं सकता था
0: जी।
1: मतलब मुझे एक अजीब सी लत लग गई थी फिल्म,
0: रच बस गया था सिनेमा।
1: हाँ जी। तो ये बचपन की कहानी है, ये कहानियां आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा पीछे मुड़के देखता हूँ तो यही सब शरारतें मुझे याद आती है आज।
0: जी, जी। और यहीं से समझ में आता है कितना पैशन था आपको माया नगरी में आने का, सिनेमा में अपना नाम कमाने का, फिल्म जगत में अपना नाम कमाने का।
1: बिल्कुल, आप यकीन माने कि जब मैं विविध भारती सुनता था तो मुझे ये था कि यार जब मैं मुंबई जाऊंगा और एक दिन जब मेरा इंटरव्यू होगा तो इसी तरह के सवाल किए जाएंगे। तो मैंने ना 1 से 12-15 सवाल तैयार करके रखा था, यही सब सवाल मुझसे भी पूछे जाएंगे और इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा,
0: वो मैनिफेस्टेशन जैसे कहते
1: हैं। और आप यकीन माने कि मैंने बचपन में जो जो सोचा था ना, ईश्वर ने सब कुछ वही किया है, मैं उन्हीं रास्तों से गुजरा हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये सच में हकीकत है या सपने में हूं मैं, ये बहुत मुश्किल है। जो आप सोचो वो हो जाए, और बचपन से ही ऐसा ही हुआ है। तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो,
0: सपने देखेंगे तो सपने पूरे होंगे।
1: बिल्कुल, कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो, खरीद लेंगे दूसरा चादर।
0: ये उभरते हुए कलाकारों के लिए ये एक मिसाल है, ये कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करता है कि डरे नहीं सपने देखने से। हाँ। और जो चाहेंगे वो होगा,
1: हो जाएगा,
0: बस वो मेहनत की जरूरत है।
1: एक ही जिंदगी मिली है ना। बिल्कुल मैम, एक ही जिंदगी मिली है, अपने हिसाब से जियेंगे। कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप एक समय के बाद ये तो कहेंगे कि जो मैं चाहता था वो हुआ। सफलता, सफलता तो बहुत ही सब्जेक्टिव है
0: जी, जी
1: है ना,
0: मन की खुशी।

की खुशी है, कभी ये नहीं। जैसे कई बार लोग लगते हैं अरे ये हासिल कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा, नहीं नहीं वहां भी पूरा ब्लैंक ही है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो एक मुझे कई बार लगता है ना कि मरीचिका जो होता है ना, वो धूप में जो दिखता है रेगिस्तान में, यही सफलता है। होता कुछ नहीं है वहां, लोग को लगता है अरे सफल, कुछ नहीं है सफलता। और मैं मुंबई में सफल असफल, नाम शोहरत पैसा, इन सब चीजों के लिए

0: एक कमाल की एनर्जी में होता हूं, ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा।
1: वो एक्शन और कट के बीच का जो लम्हा है,
0: ओहो,
1: कहीं आपने कही है बात, एक्शन और कट के बीच का लम्हा,
0: वही जिंदगी है मेरे लिए। वो जब एक्शन से पहले दुख दुख दुख दुख हो रहा होता है, जैसे ही एक्शन होता है तो बेसिकली वो एक्शन हमारे लिए कट होता है कि पूरी दुनिया से हमें कट जाना है, और मैं और मेरा को एक्टर बस, जैसे ही कट होता है वो मेरे लिए एक्शन होता है बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए। तो जो एक्शन और कट में जो हम जी लेते हैं ना, वो वक्त, बेसिकली जब आप ध्यान में होते हो, प्राणायाम करते हो, तो वही तो है ना, आप सबसे कट के उस मोमेंट में, उस शून्य में, उस बिंदु पे रहते हो। अभिनय भी
1: मेडिटेशन,
0: बिल्कुल मैं भी इसी तरह से उसको देखता हूं और समझता हूं कि उस लम्हे को जी लूं, उस पल को जी लूं। कई बार होता है, कई बार हम चुप जाते हैं, हर बार उस पॉइंट को हम टच नहीं कर पाते, बट कोशिश होती है, उसके आसपास भी चला जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फीलिंग को जीने के लिए हम बार बार अभिनय करते हैं और पूरी जिंदगी यही करना चाहते हैं।
1: यहाँ पर जानना चाहेंगे आपके पसंद का एक और नगमा,
0: ये दिल आशिकाना का जो टाइटल सॉन्ग है, ये दिल आशिकाना।

0: हम बातचीत कर रहे हैं दिल से यहाँ चंदन जी से, और हम पहुंचे थे बचपन को जीते हुए कॉलेज तक, पटना तक पहुंचे थे। तो वहां थिएटर से कैसे जुड़े? मेरे ख्याल से थिएटर वहीं से शुरुआत हुई आपकी, कॉलेज
1: क्योंकि मैं बिहार से हूं तो मेरे
0: में।
1: यहाँ छठ, दिवाली, दशहरा ये सब बहुत धूमधाम से होता है। तो मेरे गांव में सब लोग चंदा इकट्ठा करके खुद से प्ले लिखते थे और उसको खेलते थे। नाटक खेला जाता था हमारे यहाँ। ये बाद में समझ में आया मुझे कि नाटक ना लोड लेने की चीज नहीं है, इसको खेलना है। नाटक खेलना है, पात्र को खेलना है, उसको एंजॉय करना है। तो हमारे गांव में खुद से धनंजय चाचा जी थे, वो नाटक लिखते थे, और वही पुरानी फिल्मों वाली नाटक, सौतेली माँ का अत्याचार, फेंक दो कलम उठा लो बंदूक, कच्चे धागे की सौगंध, इस तरह के प्ले लिखते थे वो। मैं उसमें बाल कलाकार के रूप में काम करता था और पूरी पूरी रात स्वेटर मफलर डाल के मंच के सबसे आगे बैठा रहता था। पूरा नाटक सुबह के 6-7 बजे तक बैठ के देखते रहता था। तो उसी समय से मुझे लगा कि मुझे भी यही करना है, मुझे मजा आ रहा है। तो बाल कलाकार के रूप में मैंने नाटक शुरू किया करना प्ले। फिर स्कूल में एनुअल डे पे या इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पे कुछ कुछ होता था, लेकिन एक बढ़िया से प्ले थिएटर थोड़ा गंभीरता के साथ वो पटना कॉलेज में जब आया तो शुरू किया। वहां पे एक कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, तो इन दोनों जगह पे हम प्ले करते थे। और ज्यादातर हम वहां पे स्ट्रीट प्ले किया करते थे, गांधी गांधी मैदान में।
0: नुक्कड़ नाटक जिसे
1: हाँ
0: कहते
1: जी,
0: हैं।
1: गांधी मैदान में सरस मेला और पुस्तक मेला लगता था, उसमें करते थे। और हालांकि मुझे थिएटर से एक समय पे मैं बहुत क्लियर था कि भाई थिएटर लंबे टाइम तक तो मैं करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि थिएटर कर्मी की स्थिति अच्छी नहीं थी और आज भी नहीं है। कई बार वो वापस जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। तो मुझे लगता है यार ऐसी जिंदगी तो नहीं जीऊंगा मैं। बहुत अच्छा रंगकर्मी, बहुत शिद्दत के साथ वो काम करते थे, लेकिन मुझे ना डर लगता था कि यार ऐसी मतलब ऐसा कलाकार नहीं बनना मुझे। करेक्ट। तो मुझे ये था कि थिएटर में सिर्फ इसलिए करूं कि क्राफ्ट सीख लूं, तरीका सीख लूं, उसके बाद मैं मुंबई चला जाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था। हालांकि अगर आप किसी थिएटर में जाएं और उसको बोले कि भाई मैं यहां पर सीखने के लिए आया हूं क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, तो वो लोग बहुत बुरा मानते थे। उनको ये लग रहा था कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमें थिएटर से क्रांति करना है, बदलाव करना है। और मैं अपने मकसद में बहुत मेरा सॉर्टेड था कि भाई मुझे तो मुंबई जाना है, मुझे आप सिखाओ कैसे मंच पे रहना है, कैसे ऑडियंस रहना है, कैसे मतलब बेसिकली कैरेक्टर को कैसे हम उसके आसपास जा सके,
0: जी
1: है ना, कैरेक्टर को कैसे अपने अंदर ला सके, ये सीखना था मुझे। तो फिर कॉलेज खत्म करने के बाद पटना में मैं चला गया IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहां पर JNU में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, बहरूप आर्ट, उसके साथ जुड़ा। उसके साथ भी मैंने कई खूबसूरत प्ले किए। साथ ही साथ मैंने NSD रिपेटरी में भी कुछ काम किया। आसिफ अली हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी वो NSD में फैकल्टी हैं, उनके साथ भी कई सारे प्ले किया। तो इस तरह से मेरा थिएटर का शुरू रहा। मतलब थिएटर ऐसा था कि एक ऐसी लत थी जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था। हालांकि जब से मैं मुंबई आया तो थिएटर नहीं कर पाया, लेकिन जब तक मैं दिल्ली में था थिएटर कभी छूटा नहीं। कई बार जब मैं दैनिक जागरण में जॉब करता था
0: बिल्कुल
1: तो अगर प्ले का टाइम दोपहर का दे दिया रिहर्सल का, तो आप तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पूरे दिन आपका ऑफिस में गुजरता था।
0: बिल्कुल
1: तो मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने मैनेजर को ऐसे हाथ में जो कच्चा पट्टी होता है ना बांध के मैंने भेज दिया था फोटो कि भाई मेरा हाथ टूट गया है तो मैं टाइपिंग तो अब कैसे कर पाऊंगा, है ना, और इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी अब तो नहीं आ पाऊंगा। और मैं उस 1 महीने में राग दरबारी, एक प्ले था श्री लाल शुक्ल ने लिखा है, तो वो प्ले मैंने किया। तो इस तरह की चीजें मैं करता रहा, है ना। मेरे लिए थिएटर प्ले बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय।
0: तो पत्रकारिता की जॉब जो आपने की
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: नौकरी की है, वो भी इसीलिए की ताकि आप मुंबई आ सके, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: बिल्कुल।
0: तो वो वहां पर कैसे आप पत्रकारिता में कैसे जुड़े, और उसके
1: तो
0: बाद वहां से रास्ता मुंबई के लिए कैसे बनाया?
1: ये था कि मुझे मुंबई जाना है, जाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे अपने पास तो है नहीं, घर वाले से मांग नहीं सकता क्योंकि आप 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हो, मम्मी पापा की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
0: बिल्कुल
1: मेरे अलावा। और ये थोड़ा बड़ा अजीब भी लगेगा कि मुंबई मुझे जाना है तो मैं क्यों ही पैसा किसी से मांगू। तो तो मैंने किया जॉब दैनिक जागरण में। आईएमसी में जाने का एक ही था उद्देश्य कि वहां जॉब मिल जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, और हो भी गया दैनिक जागरण में। और वहां पर मुझे 11,800 रुपए मुझे मिलता था, और हालांकि कभी 11,800 शायद एक दो बार ही मिला होगा, क्योंकि कई बार छुट्टी मैं ले ही लेता था प्ले के सिलसिले में, तो कभी मैं पूरे पैसे नहीं आते थे।
0: अच्छा।
1: है ना। और जैसे ही मुझे लगा कि कुछ पैसे 3-4 महीने के लिए हो गए मुंबई में जाने के लिए, तो वैसे मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं आ गया मुंबई। गरीब रथ पकड़ा था निजामुद्दीन से, 7 अक्टूबर 2017 को आ गया था मैं।
0: अच्छा।
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल डेट याद है।
1: हाँ जी, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ।
0: और वो जो कदम आपके पड़े थे मुंबई में, उसकी याद, वो जो पहला दिन था, उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए कि बस अब मैं मुंबई आ गया हूँ, तो कैसा रहा? पहले से प्लान करके आए थे कहाँ रहना है, किस तरह से वो दिन गुजरा, क्या प्लानिंग थी? अगर उस पहले दिन को याद करते आप, मुंबई के पहले दिन को।
1: पहले दिन तो ये था कि एक ऐसा लड़का जो इस महानगर में आकर के एकदम, जैसे होता है ना कोई बदहवास गुमसुम सा लड़का किसी चौराहे पे खड़ा है, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, अफरा तफरी मचा हुआ है, उस तरह से मैं महसूस करता हूँ अभी खुद को जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो। कुछ भी आइडिया नहीं था। आज मतलब 8-9 साल पहले की बात है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो क्या हिम्मत था उस लड़के में। आज का चंदन तो नहीं आता। है ना। 50 चीजें सोचता, उससे मैं कुछ भी नहीं सोचा था। मुझे लगा कि क्या होगा, बुरी से बुरी चीजों के लिए मैं तैयार था। मुंबई आया और बांद्रा रेलवे स्टेशन वहां उतरा, और सबसे पहले मतलब थोड़ा सा ये था कि सब लोग चले जाएं, इस धरती पे पहली बार आया हूं तो एक बार उसको थोड़ा सा नमन कर लूं, प्रणाम कर लूं।
0: अच्छा।
1: तो मेरे बॉगी में जितने भी लोग थे वो सब उतर गए। उसके बाद जब देखा कि सब लोग उतर गए, फिर मैं चुपके से अपना इधर रुमाल नीचे गिराया।
0: अच्छा।
1: ताकि कोई देख ले ये क्या कर रहा।
0: अच्छा।
1: फिर रुमाल के बहाने अच्छे से उस धरती को प्रणाम किया कि अब तो आ गया हूँ, जो होगा अब आपके हवाले, आ गया हूँ तो रख लेना अपने पास, वापस जाने मत देना। और मन में ये भी विश्वास था कि आया हूँ तो अब सिर्फ मेरी खबर जाएगी, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। तो बस फिर उसके बाद से शुरू हो गया, रोज सुबह उठ के वही सत्तू पी के चावल दाल खा के निकल जाता था ऑडिशन के लिए। और ये था कि अगर इस महीने काम नहीं लिया
0: जी,
1: तो फिर अगले महीने बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हर महीने और हर दिन ये सोच के निकलता था कि आज मुझे एक दिन का भी काम मुझे ले लेना है। और उस समय तो टीवी में वो क्राइम अलर्ट, फियर फाइल्स, सावधान इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, तो मैं कहीं चोर बन जाता, कभी पुलिस बन जाता, कभी ड्राइवर बन जाता, कभी नौकर बन जाता। तो एक दो दिन, तीन दिन अगर महीने में मुझे काम मिल भी गया तो उससे मेरे महीने भर का गुजारा हो जाता था। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया था मेरा।
0: और कहीं आपने कहा है कि वो स्ट्रगल जिसको

0: बोलते हैं,
1: हाँ जी
0: स्ट्रगल नहीं था वो काम करना या ऑडिशंस की तलाश करना, वो कहीं ना कहीं मजेदार था।
1: मजेदार तो बिल्कुल था, बिल्कुल था,
0: है ना। उसको आप स्ट्रगल की तरह नहीं,
1: कभी भी नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि अगर वो दिन नहीं होते मेरी जिंदगी में
0: जी,
1: तो मैं आज जितनी मजबूती के साथ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, या मुंबई में हूँ, या कभी ऑडिशन पे या कहीं सेट पे जाता हूँ
0: जी,
1: ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता
0: जी।
1: तो वो दिन बहुत जरूरी थे, वो अनुभव बहुत जरूरी था, तभी तो आज जब चीजें मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत ज्यादा उड़ता नहीं हूँ, उछलता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वैसे दिन भी देखे हैं कि सच में मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
0: अच्छा।
1: तो मैं रघुवीर सर के यहाँ चला जाता था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहाँ भरपेट अच्छा खाना मुझे मिल जाए
0: जी जी,
1: है ना। और जाता क्या था, एक दो दिन रुक ही जाता था मैं वहाँ।
0: ओके।
1: कि दो तीन दिन में जितना भरपेट खा लूं ताकि फिर से मैं वापस जब रामनगर वर्सोवा में जाऊं तो मेरे पास ताकत हो ऑडिशन के लिए, पैदल चलने के लिए। मैं पैदल बहुत चलता था, वर्सोवा विलेज से निकलता था यारी रोड होते हुए रामनगर, फिर वहां से सात बंगला होते हुए, चार बंगला सिग्नल के पास भी महाड़ा में कुछ ऑडिशन होते थे, वहां से होते हुए फिर इन्फिनिटी या फिर उधर यशराज लेन होते हुए शशि सुमित, ये सब मैं चक्कर लगाया करता था।
0: अच्छा।
1: और सब पैदल, क्योंकि ऑटो के पैसे बड़े महंगे मेरे लिए हो जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं पैदल ही निकलता, कहीं पसीने से तरबतर हो गया तो रिसेप्शन पे 5-10 मिनट रुक के पसीने सुखा के अच्छे से उनसे थोड़ा पानी पी करके फिर मैं ऑडिशन देता था, और ये बदस्तूर चलता रहा। कमाल की बात यह है कि मेरे जूते बड़े गंदे हो गए थे, पुराने थे। अच्छा, मैं ये सब बात सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने देखा है, भोगा है, मेरे आसपास वाले सब जानते हैं, इसलिए ये सब चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके माध्यम से श्रोता को बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे जूते बड़े गंदे थे, बहुत पुराने हो गए थे।
0: अच्छा।
1: तो मैं एक गया जूता लेने के लिए, अंधेरी स्टेशन के सामने एक शोरूम था उसमें। अच्छा। तो मैंने दुकानदार को बोला कि एक ऐसा जूता दो जो फटे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पैदल चलना होता है। मैं रोज 12 से 15 20 किलोमीटर चलता था ऑडिशन के लिए, तो और ऐसा दो कि वो ऑलरेडी गंदा ही दिखे।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो एक भूरा कलर का जूता मैंने पसंद किया।
0: अच्छा।
1: उसमें सोल वगैरह कुछ नहीं था। तो वो जूता मैंने लिए और वही पहन करके पूरा ऑडिशन घूमते रहता था मैं।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह की दीवानगी और पागलपन था। और एक बार रघुवीर सर की जो मैडम है रोशनी मैम, उन्होंने देखा कि भाई जूते बड़े अजीब से हैं यार, तो उन्होंने रघुवीर सर के 2-3 जूते मुझे दिए जो पुराने, मतलब जो नहीं पहनते थे वो।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे 2 जूते दिए थे, तो वही 2 जूते फिर समझिए कि बहुत काम आया। फिर 1.5-2 साल तक वही जूते पहन पहन के मैं ऑडिशन देने के लिए जाता था। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं आज यहां बैठा हूं ना, तो सिर्फ इसमें मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मदद है,
0: आशीर्वाद है,
1: आशीर्वाद है। अगर वो लोग नहीं साथ में होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
0: चलिए आप सुनाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
1: ओके।
0: कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप?
1: तो विविध भारती पे जब आप पहले हेलो फरमाइश वगैरह सुनते थे ना, तो एक गाने का बहुत ज्यादा फरमाइश आता था, तो वो गाना आज भी मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो है मोहरा फिल्म का तू चीज बरी है मस्त मस्त। मैंने कहा था ना मैं सारे बचपन के सारे गाने लेकर के
0: बिल्कुल सुनवाते हैं गीत।
1: हाँ जी।

ये थी जानी मानी अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता

0: इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा सारा
5: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें साझा करेंगे, सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
6: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
5: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
6: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
5: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 11 बजे है, लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुना रहे हैं जसवंत सिंह की आवाज में गाई हुई कुछ चुनिंदा गजलें।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
0: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
2: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
0: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
2: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
4: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत जसवंत सिंह की आवाज में गाई हुई कुछ चुनिंदा गजलें। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर से। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई। गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत खयाम का।

थोड़ी सी बेवफाई जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत सुना। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में भरोसा फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है राजेंद्र किशन ने और संगीत रवि किशन का।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में भरोसा फिल्म का ये गीत। लीजिए आप सुनिए मोहम्मद रफी की ही आवाज में आरजू फिल्म का ये गीत।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: प्रतिशतों बढ़ते हैं आप अगले गीत की ओर और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फकीरा फिल्म का ये गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

फकीरा जी श्रोताओं, में भी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। नीचे अब सुनिए लता मंगेशकर की ही आवाज में नूरी फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत खयाम का।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में नूरी फिल्म का ये गीत। लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर और यशोदास की आवाज में त्रिशूल फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और यशोदास की आवाज में त्रिशूल फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत खयाम का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। दोपहर के 12 बजे ही प्रस्तुत है हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन केंद्रित नीतियों के कार्यान्वयन, निर्णय लेने में दृढ़ता, पारदर्शिता और परिणामों की गारंटी के माध्यम से शासन की परिभाषा को ही बदल दिया है, साथ ही प्रदर्शन की राजनीति के आदर्श की स्थापना की है। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी

0: सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जलंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 72,906 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा फिल्म से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आरडी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम बुलंदी।
1: Five hundred.

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवाते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गानों को। लीजिए अब सुनिए अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म का गाना, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था जो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
1: यादों की महफिल इस कार्यक्रम का अगला गाना अग्नि परीक्षा। इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, योगेश के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो दिन बहार आई गांवों में खिली,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: येसुदास और आशा भोंसले की आवाजों में लीजिए अब सुनिए योगेश का लिखा हुआ गाना। बप्पी लाहिरी का संगीत, फिल्म का नाम है अपने पराए।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए दो प्रेमी, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: छनकी के ना
2: छनकी छनकी।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे,
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम हम 5।

नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज की जो इबारत है, जो टेक्स्ट है, जो हमने विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ भी लिया है और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा दी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। आज आपको कुछ सुनाना है, प्यार की दास्तान भी, दिल का हाल भी, पायलों के गीत भी और कहानियां भी। बाबू आना, तुम भी सुनते जाना, बाराती भी सुनो और बंधु मितवा तुम भी सुनो। सुनाना तो ये है कि ए मेरे दोस्त, तेरी यारी हमें जान से प्यारी है। इन गुलाबी कलियों ने भी हमारा रास्ता रोक कर यही कहा, यार हमारी बात सुनो। पर बात तो यही है कि अब कौन किसकी सुनता है। सुनना किसी को पसंद नहीं। कोई कहता है मैं क्यों किसी की सुनूं, पर सच तो ये है कि सुनना भी एक कौशल है। सुनना इसलिए है ताकि हम बोलने की तैयारी कर सके। जी हाँ, सुनना कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है और इसकी क्या आवश्यकता है, बस यही है हमारा आज का विषय। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज आपकी इस इबारत में जीवन का पूरा रंगमंच सिमटा है। जहां प्यार की दास्तान है, दिल का हाल है, पायलों के गीत है और यारी की वो मिठास है जो जान से भी प्यारी लगती है। पर इन सब के बीच सबसे गहरी बात यही है कि आज सुनना ही सबसे ज्यादा कठिन हो गया है। हर

कुछ न कुछ सुनाना चाहता है पर सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमने सुनने को केवल बोलने से पहले का एक ठहराव समझ लिया है। जबकि सच तो यह है कि सुनना एक साधना है, एक कौशल है, एक प्रेम है। जब हम सच में सुनते हैं तो सामने वाले के शब्द ही नहीं उसके मौन को भी सुन लेते हैं, और तभी यारी, प्यार और कहानियां सार्थक होती है। इसलिए बोलने की तैयारी के लिए नहीं बल्कि दूसरे के अस्तित्व को सम्मान देने के लिए सुनने की कला को सीखना ही आज के शोर भरे समय की सबसे बड़ी जरूरत है। एक साथी हमारी ये भी लिख रही है कि सुनने की इच्छा हो तो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, पर जब कोई सुनना ही नहीं चाहे तो हजार शब्द भी बेअसर हो जाते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। सबसे पहला जो गीत है वो फरार फिल्म का गाना है, प्यार की दास्तान। ये गीत है लता जी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, संगीत किसका है ये आप हमें

क्या करेगा सुन के जमाना, तुम सुनो तो कहे। जहां जी हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी खास व्यक्ति के लिए होती है, किसी खास व्यक्ति को सुनाने के लिए होती है, और जब वो व्यक्ति उन बातों को सुनता है तो दिल को सुकून मिलता है। एक हमारे साथी की ये बात कि फरार फिल्म का ये सदाबहार गीत, लता मंगेशकर की मखमली आवाज, हेमंत कुमार के शांत संगीत और कैफी आजमी की बेहतरीन शायरी का एक अनूठा संगम है। ये गाना प्रेम के निजी और पवित्र एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता हुआ गीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि किसी के सुनना

मान बोधक सूचक है। सुनना ही बोलने वाले को सम्मान देना होता है। सुनना एक कला है जो सहनशीलता और संवेदनशीलता का परिचायक है। खासकर अगर बातें दिलों की हो तो सावधानी सर्वोपरि रखनी चाहिए। बोलने वाले के संवाद चाहे व्यंग्यात्मक हो, कटाक्षपूर्ण हो, अनर्गल हो, असंवैधानिक हो, विरोधाभास हो या चुभने वाले हो, सुनकर ही अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। धन्यवाद आपका। चलिए हम अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं। श्री 420 फिल्म का ये गाना है, मन्ना डे की आवाज, शैलेन्द्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

अब एक सीधी सी बात हमारे मन में ये है कि अधिक सुनने के क्या क्या फायदे हैं और अधिक बोलने के क्या क्या नुकसान है, ये हमारा सवाल भी है आपसे। अधिक सुनने के क्या क्या फायदे हैं और अधिक बोलने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आप हमें बता दीजिए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना ही आगे जाने का मार्ग है, आगे जाके सुना हुआ ही हम बोल सकते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना अपनी बात कहना है, लेकिन सुनना किसी के दिल को जगह देना है। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जहां बोलने से पहले कोई सुनने वाला और चुप्पी में भी समझने वाला हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुनना सिर्फ शब्दों को सुन लेना नहीं है, बल्कि किसी के दिल तक पहुंच जाना है। कभी कभी इंसान की सलाह नहीं, बस एक ऐसा कंधा चाहिए होता है जहां उसकी बातें बिना किसी शिकायत के सुनी जाए। सच तो यह है कि जब कोई हमें दिल से सुनता है तो आधा दर्द वहीं खामोशी में पिघल जाता है, कुछ जख्म दवा से नहीं सुन लिए जाने से भर जाते हैं। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज कहने सुनने की बात है तो कुछ लोग कहते रहते हैं, जरूरी हो या ना हो उन्हें सुनने की आदत नहीं है। कहने से ज्यादा सुनना बहुत जरूरी है ताकि कुछ उपयोगी या ज्ञान की बातें मिले। दूसरों से बात करते समय सोच समझ कर बोले, ऐसी कोई बात ना बोले जिससे दूसरों को बुरा लगे, मुझे सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद। अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं, ये गाना लता जी की आवाज में है, शंकर जयकिशन का संगीत है। किस फिल्म का गाना है ये आप हमें बताइए।

ये जो गीत अभी आपने सुना, ये ससुराल फिल्म का गाना है। बहुत कम श्रोताओं ने इस बात का जवाब हमें दिया है, लेकिन जिन्होंने दिया है सही लिखा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सिर्फ अपनी ही बात लगातार बोलना और किसी दूसरे को नहीं सुनना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे को सुनना भी और समझना एक बेहतरीन संवाद की नींव होती है। बोलना और सुनना संवाद के दो अहम पहलू है, क्योंकि सिर्फ अपने ही लगातार बोलने से बातचीत अधूरी रह जाती है और एक अच्छा श्रोता बनने से बातचीत अधिक प्रभावशाली और संतुलित होती है। इसलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी सीखना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल अपनी दास्तान सुनाने को बेताब रहता है, पर दिमाग हमेशा ये सोचता है कि क्या जो सोचकर हम बयान करेंगे उसे उसी तरह सामने वाला समझ सकता है, कहीं वो कुछ और समझ लिया तो हमारे मन की बातें कहने का अर्थ नहीं रह जाता है। यही दुविधा हमेशा ही दिल और दिमाग के बीच चलती रहती है। कहते हैं कि कह देने से मन का बोझ कम हो जाता है, पर कभी कभी खामोशी भी मन की पीड़ा को कम कर देती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। राजपूत फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। ये तीन कलाकारों पर फिल्माया गया गाना है, कौन से कलाकार हैं ये आप बताइए। और हाँ, हमारा जो सवाल था कि अधिक सुनने के क्या फायदे हैं और अधिक बोलने के क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी।

कुछ इसी तरह की कहानियां हमने भी अपनी दादी नानी और अपने पुरखों से सुनी और उन कहानियों को सुनने में बड़ा आनंद आता था और आनंद के साथ साथ हमें कई बातों की सीख भी तो मिलती थी ना, इसीलिए तो वो कहानियां बनाई और सुनाई जाती थी। एक साथी ने बहुत सुंदर बात लिखी है, उनकी ये बातें हमारे दिल को छू गई। लिखा है कि सुनना यानी श्रवण केवल एक शारीरिक क्रिया मात्र नहीं है बल्कि ज्ञानार्जन और आत्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। हमारे देश में अनादिकाल से श्रुति परंपरा रही है। गुरु द्वारा कहे जाने वाले वेदों और उपनिषदों के मंत्रों और ऋचाओं को सुनकर अपने उनके गूढ़ अर्थ समझकर चेतना में आत्मसात किया जाता था और एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ उस मंत्र में छुपे गूढ़ अर्थ और भावना से तादात्म्य स्थापित होता था। गुरु के द्वारा कहे जाने वाले मंत्रों के भाषा प्रवाह आरोह अवरोह और अभिव्यक्ति के सूक्ष्म भेदों को बहुत गहराई से आत्मसात किया जाता था, जिससे सुनने वाले को वाक सिद्धि यानी प्रभावशाली रूप से अपनी बात कहने की कला में निखार आ जाता है। बहुत सुंदर बात आपकी। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना और सुनना ही व्यक्तित्व का परिचायक है। संक्षिप्तता में पूर्णता प्रकाशित करती वाणी कहनी चाहिए, भाषा में शालीनता परिपक्वता परमावश्यक है। एक साथी लिख रहे हैं कि अधिक बोलने से शब्दों का महत्व कम हो जाता है और अनजाने में दूरी बढ़ जाती है, पर ज्यादा सुनने से हम बेहतर श्रोता बनते हैं और दूसरे को समझने के साथ उसके मन की बात भी जान पाते हैं, इसलिए अधिक सुनना समझदार होने की निशानी है। और एक साथी ने तो ये बात की है कि मैंने तो एक कप चाय बना ली है और सुरीला सफर प्रोग्राम सुन रही हूँ। धन्यवाद आपका। चलिए अब बाबू आना सुनते जाना, ये गाना संगीत किसका है आप बताइए।

0: सुनते जाना।
1: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।
0: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
1: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो
1: बाबू आना, सुनते जाना।
0: धत धत, महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
0: चोरी का है माल इसका, धोखा।

लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। तू जा जा अरे जा जा जामू धो के आ, तू जा जा अरे जा जा जामू।

0: खाके पत्थर भी तोड़ना, ले लो जंगल की बूटी खाके पत्थर भी तोड़ना।
1: ये है जर्मन का मसाला टूटे बर्तन भी जोड़ना, ये है जर्मन का मसाला टूटे बर्तन भी जोड़ना।
0: लड़की पहाड़ी है काटे की लाला,
1: लड़के के भेजे में है गड़बड़ घोटाला।
0: अरे जा जा
1: तू जा जा, अरे जा जा जाके घास का बाबू आना सुनते जाना।
0: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
1: ये सब है जाल इसका मालूम है हाल इसका।
0: चोरी का है माल इसको दुकान खाना।

0: रे मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जा निकालती मैं तेरा दीवाला,
1: जा रे तू पीस जाके गरम मसाला, तू जा जा घर जाके आलू।

0: Yo gran la cambia.
1: जुमरू फिल्म का गाना इसमें संगीत किशोर कुमार का। एक साथी के बाद पहले हर परिवार में रिश्तेदारी में कहानी सुनाने वाले हुआ करते थे, जो बड़े तन्मय होकर कहानी सुनाते थे। और कहानी अगर एक दिन में खत्म ना हो तो फिर दूसरे दिन शुरू होती थी और हम सभी भी सुनते थे, क्योंकि कहते हैं कि अधूरी कहानी सुनने पर रास्ता भटकने का डर रहता है, इसलिए पूरी कहानी सुनना जरूरी है। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना अगर चांदी है तो सुनना सोना है। एक अच्छा वक्ता होने के साथ आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा श्रोता बनकर आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। ये हुनर न केवल हमें एक बेहतरीन इंसान बनाता है, बल्कि समाज में संवादहीनता की खाई को भी पाटता है। केवल सुनना एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें आवाजें हमारे कानों तक पहुंचती है। ध्यान से सुनना ये एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। इसमें हम सामने वाले के शब्दों के साथ साथ उसकी भावनाओं, लहजे और अनकही बातों यानी कि बॉडी लैंग्वेज को भी समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए सुनना एक हुनर या कला कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वारंट फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत, दो कलाकार कौन है आप बताइए।

देव आनंद और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रही हैं कि सुनना जहां एक बड़ी कला है, वहीं समय पर सटीक उत्तर देना भी उतना ही जरूरी है, वरना लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी या सहमति समझ लेते हैं। सुनने और जवाब देने का संतुलन, पहले सामने वाले की बात को पूरे धैर्य और ध्यान से सुने ताकि आप उसके संदर्भ को पूरी तरह समझ सके। जब बात पूरी हो जाए तो अपनी बात को स्पष्ट और संयम के साथ रखें ताकि गलतफहमी ना फैले। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि सुनना सुनाना जीवन के दो अनमोल पहलू है, जो हमारे दिलों को आपस में जोड़ने वाला नाजुक रेशम धागा है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तब दूसरों के अस्तित्व को, उनके जज्बात को, एहसासों को अपनाते हैं, निःशब्द मान्यता देते हैं, तो दूसरी ओर सुनना यानी खुद की भावनाएं, अनुभव और सपनों को आवाज का लहजा देकर दूसरों तक पहुंचा देना, दिल में उतार देना ही, जिससे मन हल्का हो जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि जब मैं घर पर ही हूं और धर्म पत्नी कहे कि सुनिए जी, तो एक बार मैं न सुनने की एक्टिंग करता हूं, फिर कहती है सुनिए जी, ये सुनकर मैं आनंदित होकर प्यार से कहता हूं कहिए जी। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक चुप। और ये आगे लिख रहे हैं कि आगे क्या है मैं भूल गई हूं, लेकिन कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज की अति नहीं करना है, न बोलने की ना चुप रहने की। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं, सुजाता फिल्म का गाना, एसडी बर्मन की आवाज़।

सुजाता फिल्म का गाना सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया गया। एक साथी लिख रही है कि एक प्यारी सी बात, कम बोलना कमजोरी नहीं एक खूबसूरत समझदारी है। जब शब्द कम होते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, बस उसे सुनने वाला दिल चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सुनना अमूल्य वरदान है, भगवान की तरफ से सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, सुनाना ये जरूरी नहीं है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि बिना सोचे बहुत ज्यादा बोलने पर वह बगुले वाली हालत हो जाएगी, मुंह से आया हुआ आहार जमीन पर गिर जाएगा। बगुला आसमान में चोंच में मछली पकड़कर ले जा रहा था, किसी ने देखा और चिल्लाकर कहा, अरे बगुला सांप पकड़ा है कि मछली? बगुला सिर्फ सांप सुना, फटाक से बोलने के लिए मुंह खोला और मछली जमीन पर गिर गई। ये कहानी भी है और एक इसमें संदेश भी छुपा है। एक हमारे साथी की बात यह है कि कम कुछ सुनो और सुनाओ। मेरा मानना है कि यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं तो एक अच्छे श्रोता भी बनिए, ये नहीं बस अपनी ढपली और अपना राग। तो ये बात इन्होंने लिखी है, धन्यवाद। और अगला गाना सुहाग फिल्म का ये गाना है, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और परवीन बाबी पर फिल्माया गया है। शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

एक साथी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि सच कहें तो रेडियो से हमें सुनने का संस्कार मिलता है। हम 24 घंटे लगातार बोल नहीं सकते मगर सुन जरूर सकते हैं। शायद इसलिए कुदरत ने हमें दो कान और एक जिह्वा प्रदान की है। सुनना भी वास्तव में एक कला ही है। प्रकृति के नजदीक खामोशी से सुनिए तो सही, न जाने कितनी मधुर दिव्य आवाजें आपको अथाह असीम शांति और सुकून देती हुई महसूस होंगी। किसी फूल पर मंडराते हुए मधुकर के गुंजन, मंद मंद समीर में घुलती हुई रागिनी, बहते दरिया की लहरों की अटखेलियां की स्वर लहरियां, किसी गौरी की चूड़ियों की खनक और पांवों में बसती पायल के सरगम, कहने का अभिप्राय यही है कि अच्छा सुनने का कौशल हमें मानसिक अवसाद से राहत दिलाता है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, किसी को बुरा लगे या भला, पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और एक साथी लिख रहे हैं कि इस समय मेरे ऑफिस में रखे रेडियो पर हाथ रखकर मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मैं बचपन से रेडियो पर विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनता था, आज भी सुनता हूं और आगे भी अंतिम सांसों तक सुनता रहूंगा। और एक साथी हमारे ये बात लिख रहे हैं कि हमें तो विविध भारती जो भी सुनाती हम चुपचाप सुनते रहते हैं और कहते भी हैं, लिखते भी हैं, क्योंकि विविध भारती हमारी अपनी है। आपके इस प्यार के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सावन भादो फिल्म का ये गाना सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए।

एक हमारे साथी ने बहुत सटीक बात लिखी, लिखते हैं कि अगर देखा जाए तो हमारी सारी मन स्थिति सुनने पर ही निर्भर करती है। दूर बैठे किसी का फोन भी आ जाए और कोई अच्छी खबर देते तो हम खुश हो जाते हैं, परेशानी कम हो जाती है। सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ सुनने पर ही तो निर्भर होता है। सबसे पहले अगर कोई मन स्थिति को बदलने में सक्षम है तो वो हमारी श्रवण शक्ति ही है। वहीं किसी सुंदर भजन या गीत को सुन ले तो मन आनंद से भर जाता है। कितनी सही बात है ना कि सुनकर ही तो हमें मन को, हमारे मन को खुशी मिलती है, और कोई बुरी खबर सुन ले तो मन उदास भी हो जाता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना, शब्दों को सुनना भर नहीं, उसकी आवाज में छिपी उदासी को सुनना है, उसकी खामोशी में ठहरे अनगिनत सवालों को सुनना है। सामने वाला जब अपनी कहानी कहता है तो वो केवल शब्द नहीं कहता, वह अपने भीतर की परतें खोलता है, अपनी खुशियां, अपनी शिकायतें, अपने अनकहे एहसास हमारे सामने रख देता है। इसलिए खामोशी से किसी को सुनना बेहद जरूरी है। चलिए अगला गीत अब सुनते हैं, रोटी फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल के वृद्ध माता पिता जिनके बच्चे बाहर हैं और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, घर में कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी बातें सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे में रिश्तेदार और पड़ोसियों को इतना तो करना चाहिए कि उनके पास बैठकर इत्मीनान से उनकी बातें सुने और उनको भी कोई साथी मिलेगा और उपयोगी बातें सुनने को मिलेगी। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज के दौर में प्रत्येक इंसान में जो एक चीज गायब दिखती है वो है सुनना। इंसान नहीं जानता कि सुनना भी एक तीर्थ है। ये विडंबना है कि हर इंसान सिर्फ बोल रहा है, सुनना बिल्कुल अनचाही सी चीज हो गई है। एक सच जो इंसान नहीं जानता, जिसने सिर्फ और सिर्फ बोलने को तरजीह दी और सुनना छोड़ दिया, उसने अनजाने में धीरज, गहराई और रिश्तों का मोल खो दिया है। चलिए अगला और अंतिम गाना, उजाला फिल्म का गाना है ये, शम्मी कपूर और माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गाना।

यही था आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अंतिम गाना और आपने इस कार्यक्रम को धैर्य पूर्वक ध्यान से सुना और विषय को लेकर बहुत सारी बातें आपने लिखी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपको ये सुनाना चाहते हैं कि अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी का शीर्षक है माफी। श्रोताओं नमस्कार। जिंदगी में हम सभी से कभी न कभी कोई न कोई गलती हो ही जाती है। गलती इंसान से हो जाना स्वाभाविक है। कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं तो कभी कोई और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है। ऐसे में मन में शिकायत, गुस्सा और नाराजगी जमा होने लगती है। अगर कोई अपनी गलती को स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास कर रहा है तो जरूर उसे माफ करने का साहस दिखाना चाहिए ताकि दिल पर कोई बोझ ना रह जाए। यदि कोई अपनी भूल स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास करे तो उसे क्षमा कर देना रिश्तों को मजबूत बनाता है। माफ कर देने का अर्थ गलत को सही ठहराना नहीं बल्कि अपने मन को क्रोध, द्वेष और बोझ से मुक्त करना है।

0: का मिले।
1: जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो सबसे अधिक शांति हमें ही मिलती है, मन हल्का रहता है, रिश्तों में अपनापन बना रहता है और जीवन सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ता है। इसीलिए जहाँ भी संभव हो क्षमा को अपनाइए, दिल में किसी के लिए कटुता कभी ना रखें। क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा सबसे बड़ा साहस है। किसी की भूल को माफ कर देने से न केवल रिश्ते बचते हैं बल्कि अपने मन का हर बोझ कटुता से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जहाँ संभव हो क्षमा को अपनाएं और मुस्कुराते हुए जीवन जिएं।

क्षमा रिश्तों को जोड़ती है, मन को सुकून देती है। इसीलिए क्षमा को अपनी ताकत बनाएं, प्रेम और सद्भाव के साथ रिश्तों को लेकर आगे बढ़ें। जब दिल हल्का होता है तो रिश्तों में मिठास बढ़ती है और जीवन अधिक सुखद बन जाता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प हम सब भी लें, जहां संभव हो माफ करें, मुस्कुराएं और प्रेम के साथ आगे बढ़ें। तो हम भी आज एक छोटा सा संकल्प लेंगे, नफरत नहीं प्रेम बांटेंगे, शिकायत नहीं समझदारी अपनाएंगे और जहां संभव होगा दिल से माफ करेंगे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियों की रोशनी बिखेरते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन ये भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के

0: कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
1: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
2: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
4: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि

0: की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
2: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
3: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
2: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
1: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
4: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
5: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
4: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
6: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
4: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
1: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।

0: बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये आज और कल, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4 प्लस

0: वन मिलाएंगे तो 100-100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
0: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

चाहे रोक लो, दिल में उतर जाए न किसी के शोक निगाहें, रोक लो आहन कर।

0: जाएगा।
1: गुलजार का लिखा और एसडी बर्मन का संगीत बद्ध किया, ये गाना आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम बंदिनी।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे,
0: संगीत के साधक।
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:00।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत, फिल्म का नाम भरोसा। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को चंचल वर्मा का नमस्कार
1: और सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी बहुत बहुत नमस्कार।
0: तो कैसी हैं मंदाकिनी जी?
1: भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हैं?
0: मेरे भी हालचाल बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी सुनने वाले भी खुश होंगे और अभी जो ये माहौल चल रहा है उत्सव का, तैयारियों का, इसमें लगे होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल लगे होंगे। और देखिए उत्सव तो हर बात में है। अभी हमारे देश की जो चार बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है उसका अभी पूरा देश जो है उत्सव मना रहा है ना। देखिए चार बेटियां 400 मीटर की चार चार जिम्मेदारियों को लेकर, एक तिरंगे का सपना था उनका,
0: क्या बात।
1: और यही थी भारत की महिला जिन्होंने 4x400 मीटर रिले टीम की जो कहानी हमारे देश को दी है, जिस पर आज हम गर्व कर रहे हैं। किरण जी हैं वो, किरण पहल ने दौड़ की शुरुआत की और उसके बाद एमआर पुवम्मा, फिर प्राची चौधरी और आखिर चरण में विठ्ठल रामराज ने मोर्चा संभाला। और चंचल शुरुआत में भारत तीसरे स्थान पर था लेकिन पुवम्मा ने रफ्तार बढ़ाकर टीम को आगे पहुंचाया और प्राची ने उसकी बढ़त को कायम रखा। और आखिरी 400 मीटर में विठ्ठल पर सबसे बड़ा दबाव था और बहरीन की धाविका लगातार करीब आ रही थी लेकिन विठ्ठल ने आखिरी पलों में हिम्मत नहीं छोड़ी और कुल मिलाकर इन चार बेटियों ने 3:29.69 में पूरा किया अपना राउंड और स्वर्ण पदक जीत लिया।
0: तो हम भी बधाई देते हैं इन चारों बेटियों को और देश की सभी बेटियों को जो इतनी लंबी दौड़ लगाने का, ऊंची छलांग लगाने का, पंख फैलाकर उड़ने का सपना देख रही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे खूबसूरत बात यह है चंचल कि इन चारों की कहानियां अलग है, संघर्ष बिल्कुल अलग है ना, लेकिन मंजिल एक थी, क्या कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना। और ये जो जीत है हर उस लड़की के लिए, हर उस महिला के लिए, युवती के लिए, स्त्री के लिए एक संदेश है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अगर कदम रुकते नहीं है, हौसला बनाए रखती हैं बेटियां, तो मंजिल की रफ्तार बिल्कुल आप पा सकती हैं।
0: और इसमें सबसे बड़े साथ की जरूरत होती है परिवार के, तो बेटियों का हौसला बढ़ाइए, उनके हौसले को कभी भी गिरने मत दीजिए। और बता देते हैं कि आज किस विषय पर सखी सहेलियां बात होगी, तो महत्वाकांक्षा की बात होगी और जब महत्वाकांक्षी होती हैं बेटियां या कोई भी, तो उनका भविष्य निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है, इस बारे में बात होगी। और आज साड़ियों का दिन है यानी बुधवार के दिन हम किसी एक खास साड़ी की बात करते हैं, तो नंदना साड़ी की बात की जाएगी और फिर हम हमारे जो श्रोता है किसी एक शब्द पर अपने विचार हमें देने वाले हैं, तो वो शब्द है प्रकृति। यानी
1: क्या बात है,
0: शब्द हमारा और विचार आपके।
1: बिल्कुल। तो प्रकृति के बारे में ये बताइए कि वो आप प्रकृति से प्रेम कितना करते हैं। अभी आप प्रकृति का डेफिनेशन तो लिख देंगे कि प्रकृति

0: ये है हम आप प्रकृति से कितना प्यार करते हैं, आपने अपने जीवन में कितने पौधे लगाए, पेड़ लगाए कि नहीं, अपने घरों के आसपास आपने प्रकृति को स्थान दिया कि नहीं।
1: और प्रकृति का अर्थ हर जगह जाकर थोड़ा सा बदल जाता है। कहते हैं ना कि भाई आग की प्रकृति है जलाना, तो यहाँ भी प्रकृति का अर्थ बदलता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि तीन तरह की प्रकृति के शरीर होते हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। तो प्रकृति का जो शब्द है वो वहीं कहीं कहीं उसका अर्थ भी बदलता है।
0: आप इसको बड़े डेफिनेशन में ले सकते हैं। अब हमारे श्रोता किस अर्थ में प्रकृति को लेकर अपने विचार लिखेंगे उसका हमें इंतजार रहेगा।
1: बिल्कुल। इसके अलावा विश्व कपास दिवस है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और गुड़ की मिठाई यानी कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान उनका होता है, वो गुड़ की मिठाइयां किस तरह बनाते हैं, खाते हैं, इस पर बात होगी। लेकिन मिठाई की बात और मीठा सा गीत ना हो।
0: बिल्कुल, ये गीत होना चाहिए।

0: हाँ जी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा।
1: और हमारे जो साथी हैं सुनने वाले, वो भी हर जगह हमारे साथ होंगे। बहुत सारे संदेश वो हमें भेज रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण के बारे में। तो मंदाकिनी जी, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कुछ बड़ा सोचना या बड़ी अपेक्षाएं रखना। और देखा जाए तो एक सफल इंसान बनने के लिए ये जरूरी भी होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर हम एक दायरे में सिमट कर रह जाते हैं ना, तो किसी बड़े लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाता है।
0: मुश्किल हो जाता है। और चंचल महत्वाकांक्षा या आवेग दोनों ही जो है हमारी एनर्जी होते हैं। बस दोनों में फर्क इतना ही है कि महत्वाकांक्षा में एक दिशा होती है और आवेग जब आता है तो उसमें गति होती है। और जब गति बिना दिशा के हो जाती है तो भविष्य नहीं बनता, बिखर जाता है। और महत्वाकांक्षा अकेली भी खतरनाक हो सकती है। तो परेशानी कब शुरू होती है? तब शुरू होती है जब महत्वाकांक्षा कब और कैसे को भूलकर सिर्फ क्या चाहिए पर अटक जाती है।
1: बहुत सही बात बताई आपने मंदाकिनी जी। और इसी तरह की बड़ी इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं अगर आपने हैं, जैसे भाई आपको इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है या बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने, इस तरह की जो भी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कई बार ये जिंदगी में बोझ भी बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: भविष्य आदमी भविष्य की तरफ एक कल्पना के चित्र में ही जीने लगता है। उसे लगता है कि जब वो मिल जाएगा तब मुझे खुशी होगी, और वो जो दिन है ना कि ये मिलने पर खुशी होगी या ये महत्वाकांक्षा पूरी होने पर खुशी होगी, वो दिन जिंदगी में कभी भी नहीं
0: आता नहीं, क्योंकि हम वैसी मेहनत नहीं करते ना चंचल। उस दिशा में हम अपना कार्य कर नहीं रहे होते, केवल ख्वाबों की दुनिया में बैठे होते हैं। इसलिए निराधार जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो हमें थकाती है, क्योंकि हम हर दिन खुद को असफल महसूस करते हैं। और आवेग जो है महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आवेग का अर्थ ही है बिना सोचे तुरंत एक्शन रिएक्शन।

0: चंचल,
1: हाँ तो बड़ा प्यारा गीत तुमने सुनवाया अभी और हमारे श्रोता भी बहुत पसंद करते हैं इस गीत को और साथ ही हमारी जो सखियां हैं वो पसंद करती हैं नंदना साड़ी को भी।
2: हाँ और कई सखियां ऐसी भी हैं जिन्हें नंदना साड़ी के बारे में नहीं पता था। हमारी एक सखी ने लिखा भी है कि इस साड़ी के बारे में या इसका नाम जो है उन्होंने
1: पहली बार सुना है।
2: तो चलिए बताते हैं कि नंदना साड़ी या नंदना प्रिंट मध्य प्रदेश के कोई एकदम गुमनाम 400 साल पुरानी ये कला है और ये साड़ी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुरा और उम्मेदपुरा गांव की एक कला है और इसे वहीं के खास समुदाय के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से आज भी जिंदा रखा हुआ है।
1: तो ये नंदना जो प्रिंट है कोई बुनाई नहीं है चंचल, बल्कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और डाबू रेजिस्ट प्रिंट की तकनीक है। यानी पहले के समय में कुछ खास जनजाति की महिलाओं के मोटे सूती घाघरे लेंगे इसी प्रिंट के बनते थे, पर अब साड़ी सूट दुपट्टा बेडशीट और सब इसी से बनने भी लग गए हैं। साथ ही नंदना साड़ी की खासियत यही है कि ये 100% प्राकृतिक और इको फ्रेंडली है। इसमें केमिकल नहीं लगता, इसके रंग बनते हैं नील यानी इंडिगो, अनार के छिलके, हरड़ा, अलेजरीन और लोहे के जंग जैसी चीजों से ये साड़ी बनती है और कपड़े को नरम करने के लिए अरंडी के तेल और सोडा के पानी में इसको गलाया जाता है।
2: और देखिए ना, हमारी एक सखी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो कहती हैं कि मैं गुस्ताखी के लिए माफी मांगते हुए अपनी सखियों को इस सखी सहेली के मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी।
1: क्या?
2: कि साड़ी के बारे में मेरा ये कहना है कि गूगल से हमें सभी तरह की जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुछ चीजों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से हम सभी बांटेंगे तो वो ज्यादा परफेक्ट होती है। तो अगर किसी के पास इस टाइप की साड़ी या इस टाइप के कपड़े होते हैं तो वो अपनी बात को साझा करें और ये बड़ी अच्छी बात लिखी है।
1: हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने हमारी बात कह दी एक तरह से। हम भी अपनी सखियों से अक्सर कहते हैं कि भाई आपके पास ये नंदना या कोई भी साड़ी है तो उसका जिक्र कीजिए। अभी भी हम कहेंगे अगर आपके पास नंदना साड़ी है और या आप कभी लेने गई थी, आपको पसंद आई, आपने किसी को गिफ्ट दी तो उसका जिक्र अभी आप कर सकती है तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे।
2: ये जो साड़ी है इसका लॉट जो है वो लगभग 800 मीटर का होता है और उसे तैयार करने में करीब करीब 18 स्टेप और 25 से 30 दिन की मेहनत लग जाती है। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें कपड़े को गलाना, अरंडी के तेल में भिगोना, सोडे से धुलाई करना, हरड़ा का पाउडर लगाना, बिछलाई यानी कि गोंद और मिट्टी की छपाई होती है ना, उसको रोकना, ब्लॉक की छपाई, नील में रंगाई, धूप में सुखाना, फिर अंत में धुलाई, और इतने स्टेप से होकर जब ये गुजरता है ना तभी कपड़ा जो है वो पक्का
1: होता है। यानी ये वो हीना की तरह हो गई कि पिसकर ही हीना जो है है ना। और नंदना में पारंपरिक रूप से 4 मुख्य बूटे होते हैं और हर डिजाइन और मोटिफ का अलग मतलब होता है। मिर्ची का मतलब है तीखापन और बुरी नजर से बचाओ, तो चंपाकली का मतलब है कि इसे खास समुदाय की अविवाहित लड़कियां पहनती थी। अंबा का मतलब है कि इसे साड़ी और गर्भावस्था के समय शुभ माना जाता था। और जलम यानी बूटा का मतलब है समृद्धि का प्रतीक। तो आजकल इनमें अमरूद, यूकेलिप्टस, सागवान, नीम के पत्तों के इको प्रिंट भी बन रहे हैं।
2: और इस साड़ी में जो है रंग का विज्ञान और इसकी मान्यताएं वो भी अलग अलग हैं। नीले और हरे रंग जो हैं वो इसीलिए खेत में जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए होता है ताकि वो गंदा कम दिखे।
1: अच्छा।
2: और नील को सबसे शुभ भी माना जाता है, इसीलिए कारीगर भी ये मानते हैं कि गाय जो है वो नील का पानी पीती है तो ताकतवर बनती है और नील के लगे हाथ से खाना खाने से पेट की बीमारियां भी नहीं होती। कुछ पारंपरिक मान्यता है।
1: अच्छा, ऐसा। तो ये साड़ी बनाते समय इन सब बातों का भी ख्याल रखते हैं। और नंदना साड़ी में जितनी बारीकी से काम किया जाता है तो साड़ी की कीमत भी उतनी ज्यादा। यानी एक असली हाथ की बनी नंदना साड़ी 2500 से लेकर 8 से 10 हजार तक की होती है। और पहले तारापुर उम्मेदपुरा में लगभग 100 से ज्यादा परिवार ये काम करते थे और अब सिर्फ 8-10 परिवार ही बचे हैं, क्योंकि ये बहुत थकाऊ और समय लेने वाला काम है और बाजार में इसका केमिकल प्रिंट भी मुश्किल से मिलता होगा तो कम लोग अब इसको बनाते हैं।
2: हाँ, क्योंकि कई बार कारीगरों को भी लगता है ना कि मेहनत बहुत ज्यादा है और उसकी अपेक्षा में जो दाम है वो उनको नहीं मिल पाते और इस तरह से जो बहुत सारी कलाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो हम सभी को मिलकर इनको बढ़ावा देना चाहिए और इसीलिए सरकार अब इसे GI टैग दिलाने की प्रक्रिया में है और इसका जरिया बना रही है। बनवारी जरिया, पवन जरिया को राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 और स्टेट अवार्ड 2002 और 2022 में भी मिल चुका है। व्यवसाय, राजनीति, फिल्म जगत, हर क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इस साड़ी को अपनी पसंद में शुमार करती हैं।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर है नंदना साड़ी। तो हमारी सखियां बताएं कि उनके पास नंदना साड़ी है भी कि नहीं।
2: तो हम एक गीत सुन लें।
1: हाँ?

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
1: बिल्कुल, तो चंचल बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस इन दिनों हम मना रहे हैं, विश्व कपास दिवस, और इसकी बड़ी महत्ता है। हम सभी जानते हैं कि ये दिन जो है आज के दिन खास मनाया जाता है, और कपास को सफेद सोने के नाम से भी हम जानते हैं।
0: हाँ।
1: क्योंकि ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी भी है।
0: सही कहा मंदाकिनी जी। और इस दिन का आयोजन, इसकी जो पहल की गई थी वो 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा में हुई, जब विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय में पहली बार कपास दिवस मनाया गया था। और इसे शुरू करने की मांग अफ्रीका के 4 सबसे कम विकसित कपास उत्पादक देशों ने की थी। ये 4 देश हैं, बेनिन, बुर्किनो फासो, चाड और माली। और इन देशों ने कॉटन फोर भी कहा जाता है। आगे चलकर बाद में कोट डी या आईवोर भी इसमें शामिल हो गए।
1: हाँ बिल्कुल, 30 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और एक प्रस्ताव पारित करके 7 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाने का फैसला किया। और ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कपास दुनिया के 5 महाद्वीपों में करीब 75 से ज्यादा देशों में उगाई जाती है
0: जी।
1: और दुनिया भर के 10 करोड़ परिवार सीधे कपास उत्पादन से जुड़े हैं और लगभग 28 करोड़ लोग टेक्सटाइल सेक्टर में भी काम करते हैं।
0: बिल्कुल, जब भी हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो इस बात के महत्व को हम जरूर समझें कि बहुत सारे परिवार हैं जो इससे रोजी रोटी भी कमाते हैं, और बहुत सारे कहते ना कि अलग अलग कड़ियों से होकर कोई कपड़ा हम तक पहुंच पाता है।

0: वही तो अभी आपने कहा ना कि देखिए करीब 75 से ज्यादा देशों में ये कपास होती है, कितना महत्वपूर्ण है ये और कितना रोजगार मिलता है इससे ना।
1: और बहुत सारे कम विकसित देश हैं उनके लिए कपास का कुल निर्यात 50% तक हिस्सा है। कपास से सिर्फ कपड़ा नहीं, कपास के बीज का तेल, पशु आहार और कागज भी बनता है। महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है इसमें। कपास चुनने उसकी प्रोसेसिंग में 40% ज्यादा काम जो है वो महिलाएं ही करती हैं। खाद्य और कृषि संगठन का हर प्रयास हर साल जैविक कपास, कम पानी वाली खेती और किसानों को उचित दाम मिले इसी पर होता है।
0: हाँ, और अगर हम अपने देश की बात करें भारत की, तो भारत और कपास का बहुत ही गहरा संबंध है चंचल, और इसीलिए ये दिन भारत के लिए बहुत खास है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। दुनिया की 26% कपास ही उगती है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, ये मुख्य उत्पादक राज्य है। और भारत की कपास को काली मिट्टी में उगने के कारण उच्च गुणवत्ता का भी माना जाता है।
1: बिल्कुल, कपास की खेती में किसानों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती है ना, वो है जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग, किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम दाम मिलना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं वो होती हैं, चुनौतियां होती हैं। इसीलिए विश्व कपास दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि कपास को सिर्फ एक वस्तु या पदार्थ या नहीं समझा जाए, बल्कि गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के साधन के रूप में भी इसको हम देखें। और वैसे भी संयुक्त राष्ट्र ने इसकी परमानेंट थीम है, स्थायी थीम जो रखी हुई है वो है कॉटन फॉर गुड, लेकिन इस साल एक उपशीर्षक इसके साथ जोड़ा गया है, यानी 2026 के लिए जो थीम है वो है कॉटन फॉर गुड बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्टनरशिप। इसका मतलब है कपास अच्छाई के लिए व्यापार, परिवर्तन, साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण
0: करना। बिल्कुल,
1: तो चलिए अभी गीत सुन ले
0: जी।

0: बहुत ही सुंदर गीत तुमने सुनवाया है चंचल, और हमारी सखी और सखा इस गीत का आनंद भी ले रहे होंगे जैसे कि हम प्रकृति का आनंद लेते हैं।
1: हाँ। और प्रकृति जो शब्द है ये संस्कृत का बहुत गहरा शब्द है जो प्र और क्र इनसे मिलकर, जो इसके मूल शब्द हैं उनसे मिलकर बना है, और इसके कई मतलब अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। प्रकृति का सामान्य अर्थ वैसे अगर देखा जाए तो हम सभी जो समझते हैं वो नेचर या प्रकृति कुदरत से ज्यादा समझते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और प्रकृति मतलब वो जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, जैसे पेड़ पहाड़ नदी जानवर मौसम पर्यावरण ये सब चीजें, या हम कहते ना अपनी प्रकृति के बारे में कि हम अगर किसी
0: हमारी प्रकृति ये है
1: तो वो भी हमने नहीं बनाई है। प्रकृति का मतलब ही ये है जो कुदरत
0: ने बनाया है। जी, तो आज हमने शब्द जो दिया था हमारे श्रोताओं को प्रकृति, और श्रोताओं ने अपने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिसका निर्माण प्रकृति, जिसका निर्माण इंसान ने नहीं ईश्वर ने किया है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें इंसान पेड़ पौधे जीव जंतु नदियां पर्वत समुद्र वायु मिट्टी समेत प्राकृतिक प्रक्रियाएं सभी शामिल हैं। संस्कृत में प्रकृति शब्द में प्राकृ से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है मूल स्रोत या मूल आधार, जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और इसे कायम बनाए रखने में हम इंसानों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। प्रकृति ने अपनी गोद में बिठाकर हर जीव को इनकी जरूरत के अनुसार सुख सुविधा दी है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम इंसानों की बनती है। इंसान का प्रकृति से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा।
1: क्या बात है, अच्छा संदेश है। और प्रकृति शब्द पर हमारे जो श्रोता हैं वो विचार अपने अपने प्रकट कर रहे हैं। एक संदेश में लिखा गया है, प्रकृति का व्यापक अर्थ है संपूर्ण भौतिक जगत ब्रह्मांड, और इसमें पेड़ पौधे नदियां पहाड़ जीव जंतु पर्यावरण शामिल है जो इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए, प्रकृति प्रदत्त है। किसी भी प्राणी वस्तु का जन्मजात गुण उसका स्वभाव या प्रकृति कहलाता है। आग की प्रकृति गर्मी देना है। मनुष्य का शरीर भी प्रकृति के पांच बुनियादी तत्वों क्षिति यानी मिट्टी, जल पावक अग्नि, गगन आकाश और समीरा यानी वायु से मिलकर बना हुआ है। साधु और बिच्छू का डंक मारना उसकी प्रकृति है, और उसके बाद साधु को उसी को पानी से बचाना ये साधु की प्रकृति।
0: बहुत सुंदर बात, इन्होंने एक शब्द से कितनी ही बातें निकाल दी है, जिनका हमने कहा था कि आप किस अर्थ में प्रकृति को लेते हैं। प्रकृति, एक श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर फैले पेड़ पौधे नदियां पर्वत और खुले आसमान का नाम नहीं है, बल्कि जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए पानी और जीने के लिए भोजन भी देती है।
1: मतलब प्रकृति कहते हैं ना कि हमारे स्वभाव को प्रकृति कहा जाता है, कि भाई इस इंसान की प्रकृति है बहुत गुस्सा करना, इस इंसान की प्रकृति है बहुत शांत है, तो हमारे स्वभाव को भी प्रकृति कहा जाता है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि प्रकृति के अलग अलग अर्थ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हो

0: सकते हैं प्रकृति। एक संदेश में पढ़कर सुना रही हूं मंदाकिनी, जिसमें लिखा है कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर पेड़ पौधे पर्वत नदियां खुले आसमान का नाम नहीं बल्कि ये जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और जीने के लिए सबसे जरूरी चीज भोजन देती है।
1: बहुत अच्छा आपने लिखा है, कम शब्दों में गहरी बात लिख दी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति बड़ा बेमिसाल मुद्दा है, प्रकृति के साथ रहना और बड़ा होना सभी को लुभाता है। शाम को अस्त हुआ सूरज के नीचे सिर पर पगड़ी बांधा गडेरिया जब अपनी भेड़ बकरियों को हांकता है तो बड़ा लुभावना लगता है। सुबह में सिर पर डोकरी लेकर निकलती है मलान कितनी बेमिसाल लगती है, जब उसके हाथों में चूड़ियां और सिर पर धानी चुनरियां उड़ी हो, गली से जब वो जाती है नैनाभिराम लगती है।
0: एक संदेश में लिखा है, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, हमारी माँ के समान है। यदि प्रकृति स्वच्छ सुंदर रहेगी तभी हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
1: वहीं एक श्रोता का कहना है कि हमारे घर के आसपास पेड़ बहुत ही कम है, इसलिए मैंने तो छत पर ही करीब 40 गमले रख लिए हैं। नियमित देखभाल करती हूँ और इस तरह प्रकृति के बीच कुछ समय गुजार लेती हूँ। बिल्कुल अच्छा कहा आपने, गुजर जाता है आपका वक्त ऐसे तो।
0: और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि वो प्रकृति के बीच में आनंद लेते हैं, तो भाई इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा हमारे ही हाथों में है।
1: बिल्कुल,
0: और अब हमारे हाथों में है कि
1: हम गीत सुनवा दें।

0: अब हम क्या ढूंढने वाले हैं कि गुड़ हमने कहाँ रखा है रसोई में।
1: हाँ भाई, और इतने मीठे मीठे गाने सुन रहे हैं, थोड़ी सी मिठाई की बात ना हो, वो भी ऐसा मीठा जो हमारी सेहत के नुकसान भी ना पहुंचाए, वो थी गुड़ की।
0: गुड़, बिल्कुल वही तो हमने कहा कि गुड़ एक पारंपरिक और कहते हैं कि अपरिष्कृत जो है प्राकृतिक मीठा ठोस पदार्थ इसको माना जाता है, जिसे गन्ने के रस या ताड़ या खजूर के रस को उबालकर और गाढ़ा तैयार करके बनाया जाता है, है ना। तो ये गुड़ जो है सफेद चीनी के बिल्कुल विपरीत होता है, प्राकृतिक गुड़ है। इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और जिंक जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ मौजूद रहते हैं।
1: चलिए क्यों ना व्यंजन भी इस कहते हैं ना कि

0: मन जो चीज है गुड़ उसे ही बनाया जाए।
1: बिल्कुल।
0: तो गुड़ के शक्कर पारे बनाने के लिए एक बाउल में एक कटोरी आटा ले लें और एक बड़ा चम्मच भर के मोयन डालें। एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ को गला दीजिए ताकि वो पहले से ही पिघल जाएगा।
1: ठीक है।
0: और गैस पर जलाकर इसको या तो पिघला भी सकते हैं अगर आपने पहले से नहीं रखा है। तो इस पिघले हुए गुड़ के आटे से पानी को गूंदना है।
1: इसके पानी से आटा को गूंदना है, गुड़ के आटे से नहीं गूंदना है।
0: गुड़ का जो पानी हुआ है ना, गाड़ी गाड़ी चाशनी
1: लग रहा है कि फटाफट बनाऊं और खाऊं।
0: तो ये जो गुड़ की चाशनी बनाई, इसे हमने आटा गूंद लिया और कढ़ाई में गरम गरम घी या तेल डालकर उसमें धीमी धीमी आंच पर तलिए तो शक्करपारे तैयार
1: हो जाएंगे। वाह क्या बात है, इच्छा हो गई है खाने की। और एक देखिए गुड़ की लापसी भी हमारे घरों में बनती है चंचल। गेहूं के दलिये को घी डालकर हल्का भूरा होने तक थोड़ा हम सेक लेते हैं, फिर उसमें गर्म पानी डालकर कुकर में एक सीटी दे देते हैं और गुड़ में पानी डालकर पिघला लें, फिर छानकर कुकर में बने दलिये में डालें, थोड़ा और पकाएं, देसी घी डालें, इलायची डालें, कुछ मेवा डालना चाहे तो डाल दें। पौष्टिक और स्वादिष्ट जो है लापसी तैयार हो जाती है और पुराने समय में गांवों में शादी ब्याह में भी ये बहुत ज्यादा बनाई जाती थी।
0: सच्ची में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती
1: मीठा
0: है।
1: मिष्ठान के रूप में लापसी ही बनाई जाती थी। बचपन में हमने बहुत जगह लापसी का सेवन किया है।
0: और जब हम कहते ना कि जब किसी का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो पेट को हल्का रखने के लिए भी खिचड़ी और लापसी इसी तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, विकल्प होते हैं खाने के लिए। तो गुड़ की खीर के बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है कि हमारे प्रांत में छठी और जन्मदिन की नई बहू, जन्मदिन या हो या कोई नई बहू आती है तब त्योहारों पर चने की दाल पूरी गुड़ की खीर जरूर बनती है और छठ पूजा में भी जो गुड़ की खीर है वो बनाई जाती है और इसी से सूर्य देवता का भोग लगाया जाता है। तो बासमती चावल में दूध को पकाना है और जब खीर गाढ़ी हो जाए पककर तब गुड़ को अलग से पिघलाकर थोड़ी ठंडी होने पर ऊपर से पिघले हुए गुड़ को मिला देना है। फिर इलायची, नारियल और किशमिश मिला देने या जो भी आप मेवे डालना चाहें वो मेवे डाल सकते हैं। इसी तरह से स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाती है। एक दूसरा तरीका इन्होंने बताया है कि गुड़ के पानी में चावल को पका सकते हैं क्योंकि चावल पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है।
1: हाँ।
0: और जब चावल पक जाएगा तो ऊपर से गाढ़ा किया हुआ रबड़ी नुमा दूध है वो मिला दीजिए तो खीर तैयार हो जाती है। इस तरह की खीर में ये ध्यान रखा जाता है कि गर्म गर्म खीर में या दूध में जब गुड़ डाला जाता है तो फट जाता है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ मतलब बनाते समय हमें ध्यान तो रखना ही पड़ता है, देखिए कि कोई चीज से किसी तरह का नुकसान नहीं हो जाए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गुड़ के पुए भी बनते हैं।
0: हाँ।
1: अरे मन हो गया है पुए खाने का। हमें अपना बचपन याद हो गया जहाँ हमारी माँ हमें गुड़ के पुए खिलाया करती थी। ये लिखते हैं कि आटे के साथ पिलाकर और जो मुझे पसंद है वो है पूरन पोली, जिसमें चने की दाल को भिगाकर उसको उबालकर गुड़ के साथ घी में सेकते हैं और उसमें गुड़ डालते हैं, साथ में जो सूखे मेवे पसंद हो वो डाल दें, पेस्ट तैयार करें, आटे की लोई में भरकर घी से सेके और जो बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है।
0: तो भाई इतने मीठी चीजों की बात चल रही है तो मीठा गाना भी तो होना चाहिए।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो चंचल, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है कि आगे हम गुड़ के लेकर क्या रेसिपी बताने वाले हैं, है ना।
1: तो गुड़ को लेकर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए। और कुछ मिठाइयां हैं जैसे गुड़ के शक्कर पारे, गुड़ का रसगुल्ला, ये इन्हें हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं इनको बड़े पसंद है। और चीनी के रसगुल्ले जो तैयार किया जाते हैं, इसमें चाशनी की जगह अगर गुड़ की चाशनी बना दी जाए तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और गुड़ की तो हम पंजीरी भी बनाते हैं, और ये पंजाबी शायद लिख रहे हैं कि पंजाबियों में तो ये बहुत ज्यादा बनाई जाती है। और गुड़ को भून कर इसकी पंजीरी तैयार की जाती है, घी डाला जाता है, भूना जाता है, पूरे तरीके से इसको बनाया जाता है, तो बहुत स्वादिष्ट लगती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, तो गुड़ से बनाने से वो पौष्टिक हो जाते हैं। गुड़ के गुलगुले बनाइए, और गुड़ के भजिए कह रहे हैं, और मीठे भजिए बना सकते हैं। गुड़ को गर्म पानी में पिघलाकर उसे छानकर उसमें आटा, नारियल की कतरन और इलायची डालकर घोल बनाकर तेल में पुए तल लीजिए। गुड़ और चने की दाल की पूरन पोली भी आप बना सकते हैं, है ना।
1: इसी तरह से जब भाई चाय का समय होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को
0: 3 बजे चाय चाहिए होती है। इन्होंने मेरी मन की बात कह दी, मैं जब से सोच रही थी कि गुड़ की चाय जब हम पीते हैं, या कई बार चाय फीके रखते हैं और हाथ में गुड़ की डली लेकर भी सर्दियों के दिनों में हम लोग ऐसा चाय का सेवन करते थे, तो लिख रहे हैं कि ऐसे भी गुड़ की चाय बनाकर पी जा सकती है
1: जी। और बिना फटे स्वादिष्ट और परफेक्ट गुड़ की चाय बनाने की आसान सी विधि भी उन्होंने लिखकर भेजी है कि इसके लिए सामग्री चाहिए 2 कप चाय, आप दोनों दीदियों के लिए,
0: क्या बात है,
1: 1 कप पानी, 2 कप दूध जो कि अलग से गर्म किया हुआ है, यानी कि पूरी तरह से औंटाया हुआ खौलाया हुआ ये दूध है, चाय पत्ती चाहिए 2 छोटे चम्मच, और चाय पत्ती की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा कम कर लीजिए, आपको बहुत कड़क पीनी है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें चाहिए गुड़ थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में बनाया हुआ, 2 से 3 चम्मच चाहिए, या फिर स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम और ज्यादा भी कर लीजिए। अदरक चाहिए 1 इंच कुचला हुआ, हरी इलायची चाहिए 2, वो भी अच्छे से कुचली हुई या पाउडर बनाया हुआ। इसे बनाने के लिए एक पैन में या सॉस पैन में 1 कप पानी डालना है, कुचला हुआ अदरक और हरी इलायची डालकर पानी को अच्छी तरह से उबलने देना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चाय की पत्ती डालनी है, 2-3 मिनट तक इसे भी उबालें ताकि अच्छा रंग और स्वाद चाय पत्ती का आ जाए। अब इसमें पहले से गर्म किया हुआ दूध है वो डाल देना है। दूध को हमेशा उबाला हुआ या गर्म किया करके ठंडा किया हुआ दूध डालने से चाय फट सकती है, ऐसा ही उन्होंने आगे लिखकर बताया है। और दूध डालने के बाद चाय को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, फिर गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद जो कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में लाया हुआ जो गुड़ है वो डाल देना है, फिर अच्छी तरह से मिला लीजिए, छान कर गर्मा गर्म गुड़ की चाय का मजा
0: आनंद ले सकते हैं। तो आपने 2 कप चाय भेजी है ना, ये 2 कप मुझे ही पीने पड़ेंगे क्योंकि चंचल दीदी जो है चाय नहीं पीती है,
1: तो चलिए आपके लिए डबल चाय हो जाएगी, लेकिन मैं जो है ना गानों की मिठास से ही काम चला।
0: चलिए फिर।

0: मन ही मन में लड्डू फूटे, अरे लड्डू गुड़ के होंगे ना तो ज्यादा सेहतमंद होंगे।
1: और अभी तो हम गुड़ के लड्डू की ही बात कर रहे हैं क्योंकि गुड़ की बात है तो लड्डू भी गुड़ के ही होंगे। गुड़ की बात निकली है तो एक श्रोता लिखते हैं, कह दूं कि दोपहर के भोजन के साथ गुड़ जरूर लेता हूं, भोजन के पूरा होने के बाद गुड़ के साथ एक रोटी खा लेता हूं और भोजन के अंत में गुड़ खाने से पाचन क्रिया आसानी से हो जाती है।
0: गुड़ ही गुड़ है,
1: गुड़ ही गुड़ है।
0: और आगे एक श्रोता लिखते हैं कि हम भी गुड़ और आटे के मालपुए खाने हैं और आपकी बातें सुनकर हमें भी लग रहा है कि हम इसे जरूर बनाएंगे।
1: वहीं एक श्रोता लिख रही है कि अब सर्दियां आने वाली हैं और गुड़ की तासीर गर्म होती है, ऐसी सर्दियों में ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है।
0: तो भाई आप जरूर गुड़ के व्यंजन का मजा लीजिए, लेकिन कार्यक्रम का समय क्योंकि पूरा हो चला है तो हमें जाने की इजाजत भी दे दीजिए।
1: बिल्कुल। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही है ममता सिंह। आइए सुनते हैं इस दिलचस्प बातचीत की पहली कड़ी।
3: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
3: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
4: धन्यवाद।
3: और अब हमें बताइए कि ये हनुमान अंश की कहानी ने कैसे आपके दिल में दस्तक दी, कैसे आपके मन में विचार आया?
4: तो एक तो हनुमान अंश टाइटल है और दूसरा हनुमान अंश की जो कहानी है वो श्री नीलकंठ बाबा महाराज जी के बारे में है, जो भारत के पिछले सदी के आई थिंक सबसे रिवर्ड संत आज की डेट में कहे जा सकते हैं। साईं बाबा भी थे और इसके अलावा बहुत सारे श्री अरविंदो, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जिसमें श्री नीमकोरी बाबा की जो कहानी है वो मुझे बहुत खास तौर पे इंटरेस्ट इसलिए करती है क्योंकि बहुत सादगी से भरी हुई है और किसी तरह का कोई आडंबर उनके जीवन में था नहीं
3: जी।
4: इसके अलावा वो मतलब हर तरह की चमत्कारों से वो हरदम भागते रहे और किसी एक स्थान पर रुक के उन्होंने किसी तरह का एक अपना एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। उनका उद्देश्य सिर्फ जगह जगह पे हनुमान जी के मंदिर बनाना और लोगों को भूखों को भोजन, भक्तों को प्रसाद, ये उनका टोटल आइडिया था। और भी उनकी कुछ सीख थी जो जीवन में देते थे पर वो आध्यात्मिक सीख होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में मुझे वो बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट करते हैं। प्लस उनकी चेहरे पे जो एक अजीब सी कोई ऐसा अट्रैक्शन है कि हर व्यक्ति आभा है, कुछ तो है ऐसा जो कि हर व्यक्ति उनको देख के ना देखते रह जाता है, तो ये भी एक चीज थी। इसलिए मुझे लगा कि ये होना चाहिए। पर मैं खुद से उनको फॉलो करता हूँ कुछ पिछले 20 साल से, और जब मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग मेरी हल्द्वानी में थी, वहां से एक मेरे साथ भी कुछ ऐसा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को लेकर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं उनकी कहानी बहुत समय से फॉलो कर रहा था। हनुमान अंश टाइटल मुझे नीप करोरी गांव है उत्तर प्रदेश में जहां पे उन्होंने साधना अर्ली एज में की, वो अपने फिल्म में दिखा
3: जी, बिल्कुल।
4: तो वहां पे जब मैं गया था रिसर्च के लिए तो वहां के लोग उनको आंशिक हनुमान और आंशिक अवतार हनुमान का बोलते थे, हनुमान जी का बोलते थे, जिस वजह से मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगा और मैं उनके नाम से फिल्म नहीं बनाना चाहता था। पहले दिन से क्लियर था कि मुझे उनके नाम से फिल्म नहीं बनानी क्योंकि वो इतने पॉपुलर हैं कि वो ऐसा कहीं से प्रतीत ना होने लगे कि मैं उनके नाम पे राइड कर रहा हूँ। और प्रतीत होने से ज्यादा खुद से स्वयं से भी अंदर से भी वो इच्छा होती है ना कि आप एक कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि किसी तरह की बायोपिक पे आप राइड करके कि भाई बड़ा व्यक्ति है उसकी बायोपिक बनाने मिल गई तो अब ये अच्छा उसमें नंबर्स आएंगे, यू विल ऑलवेज गेट लॉट ऑफ, आपको बहुत तालियां मिलेंगी, अप्रिशिएशन मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हम समाज को क्या दे रहे हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के लेवल पे, तो ये आई थिंक उद्देश्य था। इसलिए हनुमान अंश और श्री नीमकरोली बाबा, दिस इज द रीजन एंड दिस इज हाउ उनकी आमद हुई।
3: तो नीमकरोली बाबा को एक भक्तिभाव से लोग देखते हैं और कुछ चमत्कार के रूप में भी देखते हैं, भले ही वो चमत्कार न करते हो, और रहस्य के रूप में भी। तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व को फिल्म में आपने उतारने की कोशिश की है, तो किस तरह की चुनौतियां आई?

0: कौन सा भाव पक्ष आप ज्यादा लाना चाहते थे और आपको लगा कि ये सही हुआ?
1: मुझे लगता है कि उनकी मैंने एक मानवीय कहानी बोलने का ज्यादा प्रयास किया है, क्योंकि वो स्वयं चमत्कारों से बचते थे तो हम भी चमत्कारों से फिल्म में बचे हैं।
0: जी,
1: लीलाएं होती हैं जब आपके कोई संत महात्मा आपके जीवन को देख लेता है, वो अकाल जो बोलते हैं ना कि वो उनको त्रिकालदर्शी होते हैं, वो समय को देख सकते हैं, आपके पास्ट को भी देख सकते हैं, आपके फ्यूचर को देख सकते हैं, तो वो आपको आपके अंदर एक ऐसा छोटा सा चेंज लेके आते हैं जो ऑन अ ट्रेजेक्ट्री लेवल, अगर वो आज उन्होंने 0.5% का अगर उन्होंने एंगल चेंज किया आपके लाइफ का, डायरेक्शन रीडायरेक्ट किया आपको, तो ऑन द कोर्स ऑफ टाइम 10 ईयर्स और 20 ईयर्स कहां से कहां पहुंचेगा। लाइक मेरा अपना स्वयं का एक वो है कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहां पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूं तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम 20 इयर्स बैक। तो इसको लीला बोलते हैं, तो उसको चमत्कार नहीं बोल सकता मैं। चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर सकता है, वो होते हैं ना कि हवा में ऐसे कुछ करते हैं, कुछ ले आते हैं, तो चमत्कार ही व्यक्ति लोग उनको चमत्कारी बोलते हैं पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उन्होंने हरदम बोला कि हनुमान जी ने किया होगा, आपका राम जी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, ऊपर वाली कृपा होगी, तो इस तरह से। तो मैं मानवी उनके साइड को ज्यादा तवज्जो देने का प्रयत्न मैंने किया है।
0: जी, ये फिल्म में आपने दर्शाया भी है जब वो क्रांतिकारी अंदर कमरे में है और वो बेल बजाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है, तो ये क्लियर है कि जैसे वो चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं या इंट्यूशन हुआ है, इस बात को आपने दर्शाया भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज का जो युग है इसमें जरूरी है कि चमत्कार से दूर जाया जाए। और आपने बताया कि, और हम सभी जानते हैं कि आपने मेडिकल की पढ़ाई की, MBBS पढ़ रहे थे और अचानक फिल्मों की ओर रुख कर लिया, कैसे ये संभव हुआ, कहां से आपके मन में ये बदलाव आया?
1: मुझे लगता है कि लखनऊ, जब मैं रहने वाला बुंदेलखंड का हूँ, वहीं पढ़ाई कला बड़ा भी वहीं पे हूँ और मैं पढ़ाई भी वहीं से की है, जालौन जिले में एक छोटी सी जगह कोंच, वहां पे मैंने अपनी 10+2 तक पढ़ाई की, उसके बाद एक साल ग्वालियर था, वहां से लखनऊ आ गए और लखनऊ में जो एक जैसे बोलते हैं वहां की जो सभ्यता है, वहां की जो अपनी तहजीब है
0: जी।
1: वो कहीं ना कहीं मैंने उसको इम्बाइब करना शुरू किया, तो पहले तो भाषा सुधरी वहां जाके, एक ठेठ बुंदेलखंडी और खड़ी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, एक थोड़ी नफासत आ जाती है, एक आपकी जबान में थोड़ा उर्दू आ जाती है, तो पोइट्री वहीं से फूटी, वहीं से मैंने म्यूजिक में इंटरेस्ट मेरा आया। मैं जिस गली में रहता था वहां पे प्रताप नारायण मिश्र जी जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं उनकी हवेली जस्ट घर के सामने थी, छन्नूलाल जी मिश्रा और ये सब लोग जो है ना वो गली का ही पार्ट थे, तो उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ। फिर मैं भातखंडे जाना शुरू किया, फिर मैंने भातखंडे में कुछ एक साल विशारद का प्रथम वर्ष भी किया, मतलब संगीत में गायकी में।
0: अच्छा।
1: और वो एक साल ने मुझे काफी हद तक जो है ना परिवर्तित कर दिया, एक मेरा जो एक क्रिएटिव साइड होगा जो मुझे पता नहीं था वो सडनली स्फुटित हो गया, और उस वजह से मुझे लगता है कि लखनऊ हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। तो बेसिकली वो मेडिकल का सिलेक्शन होने से पहले ये सब मेरे अंदर इम्बाइब हो गया था, तो तैयारी करता था शाम को 6 बजे से वहां की क्लास होती थी, तो शाम को 6 बजे तक सब फिनिश हो जाता था, तो वहीं से अपने कोचिंग से लौटता था मैं और 1 घंटे की वो क्लास करके घर आता था, और उसी बीच में आगे कहीं प्ले हुआ कोई तो देख लिया या कुछ ऐसा कार्यक्रम चलता रहता रहा है, अमरनाथ बलि नाम का एक वहां पे प्रेक्षागृह है, तो वहां पे प्रेक्षागृह में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, तो एक रूटीन बन गया। और फिर वो सिलेक्शन होने के बाद में मैं नहीं चाहता था कि मैं MBBS करने जाऊं, तब तक मेरा काफी इंटरेस्ट चला गया था इसमें, तो मेरी माता जी ने मुझे बोला कि तुम ये कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तो कर लेना। एंड मेरा जब मैं गया, मुझे कॉलेज जो मिला वो गोरखपुर था,
0: जी,
1: तो गोरखपुर का थोड़ा कला वगैरह से थोड़ा सा कम लेना देना है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर और हमारा कॉलेज भी बिल्कुल मेडिकल कॉलेज
0: ग्रामीण परिवेश है, बिल्कुल आंचलिक
1: जी, और शहर से बाहर भी है, तो वो करीबन 7-8 किलोमीटर दूर था, तो शहर जाने के लिए फिल्म देखने के लिए जाते थे हम लोग बस, बाकी वो हमारा जो 12-15-50-40-50 एकड़ की जो कॉलेज कैंपस था वो वही दुनिया थी हमारी
0: जी,
1: तो उसके अंदर की जो सो खैर कहने का मतलब ये है कि MBBS किया तो उस बीच में जितनी भी क्रिएटिव परस्यूट्स थी उनको फॉलो भी किया वहां पे, बट इवेंचुअलिटी में अब होता ये कि आप किसी चीज के साथ में बहुत समय तक रहने लगे तो आपको वो भी अच्छा लगने लगता है, तो मैं लास्ट फाइनल प्रोफेशनल तक मैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता था
0: जी, जी।
1: फाइनल प्रोफेशनल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सडनली मेडिसिन अच्छी लगने लगी, एज द वे पीपल जब वो अच्छे हो जाते हैं, जब वो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, प्लस आप जो मानवीय शरीर है उसको आप बहुत डिटेल में देख रहे हो और कैसे रिएक्ट करता है ऑल ऑफ दैट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया
0: जी।
1: तो फिर मैंने कहा कि अब जॉब भी करते हैं और

0: पहला जॉब इसीलिए हल्द्वानी में पिथौरागढ़ में था एक्चुअली, कुछ महीनों के बाद मैंने वो छोड़ के हल्द्वानी में आ गया था मैं, और वहां से ये नई ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई जिसे हनुमान अंश की यात्रा जिसे बोलेंगे वहां से शुरू हुई जी।
1: तो अब यहाँ पर आपने बहुत सारा जिक्र किया, गाने का भी जिक्र किया, मतलब कि ऐसा लगा कि आप गाते भी हैं, और हनुमान अंश में आपकी आवाज में एक गाना है जो काफी प्रचलित भी है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना होगा।
0: आप जो कहेंगे वो सारे गाने मुझे बहुत प्रिय हैं, हृदय में जिनकी सीताराम जो मैंने गाना गाया है वो भी बहुत क्लोज टू माई हार्ट है, और वो बहुत ही कमाल की बात है कि उसको मैंने कंपोज नहीं किया, वो अचानक से मेरे दिमाग कहीं से उतर आया हूँ
1: जी जी।
0: और वो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फिल्म में अपने म्यूजिक को ना इंक्लूड करूं, मैं आया तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने ही था सबसे पहले मुंबई में, और विशाल भारद्वाज मेरे लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत ही मेरे लिए आइडियल थे
1: जी जी।
0: लेकिन विशाल जी को मैंने बहुत ज्यादा उनकी फिल्म जो है ना वो मकबूल को मैंने 27-28 बार देखा, मतलब
1: लिटरली
0: उनकी वो जो सीडी थी मेरे पास में वो घिस दिया था, मतलब ऐसा हो गया था कि स्क्रैच आ गए थे उसमें, इतना देखा मैंने मकबूल।
1: क्या बात है।
0: कहने का मतलब ये कि होता ये है कि आप जब आते हो कुछ करने के लिए फिर आपको समझ में आता है कि नहीं आपका अल्टीमेट गोल ये है फिर आप ये क्यों कर रहे हो। कोशिश मैंने बहुत की कि अपने आप को अवे रखूं म्यूजिक से, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरी अपनी आत्म शांति के लिए मैं म्यूजिक करता हूं। मेरा सुबह का रूटीन अभी पिछले एक साल से तो बिगड़ गया, लेकिन सुबह का रूटीन मेरा एक हनुमान चालीसा जो मैं गाता हूं अपनी खुद से, मैंने कंपोज की थी वो मैं अपने लिए गाता हूं, उसको रिलीज ही नहीं किया मैंने, इट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों के बहुत सारों के पास। तो हृदय में जिनके सीताराम आई विल से कि इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बट यू स्पेसिफिकली आस्क मी एनी ऑफ द सॉन्ग, आई लव ऑल द सॉन्ग्स, आई कैन सिंग एनीवन ऑफ इट, आई वोंट माइंड।
1: लेकिन मैंने आपकी आवाज के गाने का जिक्र इसलिए किया कि वो गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आपकी आवाज में यहाँ पर हम चाहते हैं कि श्रोताओं को भी सुनवा दें।
0: चलिए तो मैं पहले हृदय में जिनके सीताराम ही गा
1: दूं जी, एक लाइन सुना दीजिए।
0: एक ही लाइन है, उसमें दूसरा लाइन है भी नहीं।
1: जी
0: हृदय

0: क्या बात है, एक साधक की मुद्रा में आप आ गए थे और वो ऐसा लग रहा था कि कहीं आपने जैसे साधना की हो बैठ के
1: जी।
0: तो यहाँ पूरी फिल्म में हनुमान अंश में हनुमान चालीसा को कथा के रूप में कहीं कहीं पिरोया है आपने, तो ये कहाँ से आपके मन में विचार आया, कुछ पहले से सोच रखा था या फिल्म बनते समय?
1: तो एक तो वो इवेंट जो है वो रियल इवेंट है
0: जी,
1: जो फिल्म में आपने देखा है, लेकिन मैं 2021 में जब कोविड बहुत पीक पे था और मेरे बहुत परिवार के और मेरे दोस्तों के मेरे मित्रों के फैमिली मेंबर्स एक एक करके जा रहे थे, तो मेरे फर्स्ट कजिन मेरे लोकल गार्जियन थे कॉलेज में, वो ऐसे करते करते मेरे मामा जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड रघुवेंद्र सिंह है, उनकी माता जी, ऐसे बहुत सारे लोग कुछ 5-7 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोग चले गए। और वो एक एज ए डॉक्टर मुझे जो है ना, मैं घर पे बैठा था, मैं क्योंकि मेडिसिन प्रैक्टिस छोड़ के बहुत साल हो गया और बाकी सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अब मैं एज अ मेडिकल मतलब डॉक्टर आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए था और मेरे पास कोई सच कोई डायरेक्ट कनेक्ट बचा नहीं था, तो जितना हेल्प कर पा रहा था मैं कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा एक क्लब हाउस नाम की एप्लीकेशन थी जहां पे बहुत सारे दोस्त मिलना शुरू हो गए थे, वो एक अलग चीज बन गई थी जहां पे सब लोग वॉइस में बात कर सकते हैं, तो

0: वहां पे मुझे ऐसा दिल में ऐसा ख्याल आया कि जितने लोगों को शांति चाहिए है वो शायद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शायद होप देगी लोगों को। तो हमने हनुमान चालीसा नाम का एक क्लब चालू किया 2021 में, अप्रैल का महीना था। पहले दिन ही लोग 8 घंटे तक उसमें हनुमान चालीसा होते हैं, लोग आईसीयू में लेटे हुए हैं और वो हमारे क्लब को सुन रहे हैं। पीपल रिकवर्ड फ्रॉम देयर आईसीयू, जो कि आईसीयू से बहुत कम लोग निकलते थे उस वक्त, तो आईसीयू से बाहर निकले फिर वो हमारे मॉडरेटर्स बन गए। तो वो क्लब आज भी वो क्लब चला रहे हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: एक 12,000 से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो गए, लोग अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते थे और वो हनुमान चालीसा। तो ऐसे मेरा एज अ फाउंडर ऑफ दैट क्लब मेरा रूटीन बन गया कि 2-2.5 घंटे तो हनुमान चालीसा को डिकोड करना शुरू किया मैंने।
1: जी जी जी।
0: उसके पहले तो पढ़ना होता था, फिर हनुमान चालीसा को डिकोड करना, वो मेरे एक तरह से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बन गया। तो कहें तो हनुमान अंश का कोर जो है वो हनुमान चालीसा है। अगर आप वो उसमें भी एक डायलॉग है फिल्म के अंदर जहाँ पे बच्चा पूछते हैं मान जी उससे के, मान जी पूछते हैं कि आपका जो है क्यों हनुमान जी का ही पार्ट क्यों है, ओके तो कहते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है। तो क्या तो तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तो वो कहते हैं किसी से प्रेम नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं माँ से था क्यों, बोले माँ राम जी के पास चली गई। और करना क्या चाहते हो, राम जी के पास पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा के पास पहुंचना है। तो ये पूरी फिल्म को हनुमान चालीसा में क्या लिखा है और एक बच्चे की भावना अपने माँ के प्रति क्या है और वो कितना अकेला अपने को महसूस कर रहा होगा कि वो जो है ना अपनी माँ से इतना प्रेम था कि वो उन तक पहुंचना चाहता है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि राम जी के पास चली गई। तो उसने पूरा अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे राम जी तक पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा तक पहुंचना है। एंड प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो लाइन लोगों को पसंद आती है, स्पेशली मदर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चे इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं उस लाइन से। वो हुआ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आई सॉर्ट ऑफ डिकोडेड हनुमान चालीसा फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अभी भी मुझे बहुत मजा आता है। अब अगर आप मुझसे आप बात करेंगे तो आई विल लव टू चैट अबाउट हनुमान चालीसा फॉर आवर्स।
1: अभी सुनाइए
0: हनुमान चालीसा चैट एज़न
1: थोड़ा सा तो सुना सकते हैं। देखिए वहाँ एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहती हूँ, वो जो दृश्य है जिसका आपने जिक्र किया सचमुच बहुत मार्मिक दृश्य है कि एक पिता अपनी दूसरी शादी करके आ रहे हैं और बच्चा बोलता है कि मुझे राम जी के पास जाना है। तो ये बहुत मार्मिक था और हम सबको यहाँ पर इमोशनल भी किया आपने, मतलब देखा कि लोग रो रहे हैं वहां पर। और इस पूरी फिल्म में कई जगह ऐसे लगता है कि हाँ हम कहीं, आपने जो साधक के रूप में दिखाया है वो साधना में हम सब लीन हो रहे हैं, कई ऐसे दृश्य आए। तो यहाँ फिर से वापस लौटते हैं हनुमान चालीसा पर, तो वो अगर आप गाते हैं तो
0: नहीं
1: तो
0: हनुमान चालीसा मैं गा दूंगा, बट मैं हनुमान चालीसा को जो डिकोड करता हूँ मैं हनुमान चालीसा को, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आई विल ऑल्सो सिंग कपल ऑफ लाइन्स। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा जो है ना बहुत ही मल्टीपल कॉस्मिक कॉन्सेप्ट हैं, उनका संकलन है। और आपके जीवन में आप कैसे आध्यात्म की तरफ आप बढ़ते हो और आपको जब अल्टीमेट को जो आप पाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति जो आप करना चाहते हो, तो उसका राह वो आपकी सुगम करती है, आपके जीवन को भी बहुत सॉर्ट करती है। जैसा कि श्री निकोली बाबा भी बोलते थे कि वो कहते थे राम नाम का जप करते रहना, राम नाम लिखते रहना, और हनुमान जी की भक्ति के लिए हरदम बोलते थे। आप भक्त क्या होता है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो कि वो अपने ईस्ट से ज्यादा बलशाली है पर वो सरेंडर उनको ही करते हैं,
1: ईस्ट
0: को ही करते हैं। भक्ति इसको बोलते हैं कि आप किसी भी, तो ये एक तो चीज है और प्लस जो है ना उसमें तीन और कोड्स हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी की भक्ति के बिना, हनुमान जी को समझे बिना, उनकी आज्ञा के बिना आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, दैट इज वन। अनदर लाइन इज दैट राम रसायन तुमरे पासा, सो यू हैव दी द कॉस्मिक कोड और द कोड द फॉर्मूला टू रीच राम, सदा रहो रघुपति की दासा। तीसरी लाइन है तुम्हारे भजन राम जी को पावे, एज एन अगर आप हनुमान जी को भजते हो या आप हनुमान चालीसा करते हो तो आप भगवान राम को की प्राप्ति आप कर सकते हो। ये तीन लाइनों के अलावा पवन तनय संकट मंगल रूप राम लखन सीता सहित हृदय भसों, हृदय भसों स्वरूप का मतलब क्या है कि आपको उनको दिल में, आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको हृदय में रखना है, इसलिए वो हृदय में जिनके सीताराम जैसे लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट अष्ट सिद्धियां हमने दिख जाता, 8 सिद्धियां आप ही दे सकते हैं। और यही प्रॉब्ली नीम गौरी बाबा के उनकी लाइफ में भी आप देखें जो सिद्धियां, जिनके प्रचलित सिद्धियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको हनुमत भक्ति से आई हैं, क्योंकि हनुमत भक्ति जो है ना कलयुग में शायद वही एक भक्ति है जो आपको सुगम तरीके से, क्यों, क्योंकि अगली लाइन उसकी है अष्ट दिन असबर दिन ऐसा वर सीता दीन जानकी माता, तो जो जगत जननी माता सीता है उन्होंने आपको वरदान दिया कि आप ये सिद्धियां जो आपके पास ऑलरेडी हैं वो आप किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा ही एक भगवान राम ने भी उनको वरदान दिया कि सहस बदन तुम वो

0: गावे इसका ऋषि पद कंठ लगावे। जब लाए सजीवन लखन जी आए, जब वो संजीवनी लेके आए तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया सहस बदन तुम लोग। इसलिए आज भी भगवान राम से भी ज्यादा पॉपुलर हनुमान जी हैं
1: जी,
0: क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं। तो आपको साउथ अमेरिका चले जाएंगे, आपको वहां पे जो टेम्पल्स हैं वो पेरू वगैरह में, वहां पे भी आपको हनुमान जी की मूर्ति मिल जाती है जो कि 5,000 साल पुराने टेम्पल्स हैं
1: जी। बिल्कुल,
0: ही वाज सो पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्टिल इट इज पॉपुलर। कि आपका जो अमेरिका का राष्ट्रपति, जो पिछले राष्ट्रपति थे, वो हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखते थे, बराक ओबामा।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: हनुमान चालीसा लोग अपने पास रखते हैं, सिरहाने रख के सोते हैं, पर्स में रखते हैं, डर से निजात पाने के लिए। हम सब भी वो करते, डर लगता
0: था, डर लगता था, हनुमान चालीसा पढ़ना,
1: हनुमान चालीसा पढ़ते अंधेरे कमरे में पार करना है तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाना है।
0: वो फिल्म में वो सीन जो है ना, वो डेडिकेटेड टू दैट लाइन है कि आप पढ़ते तो हनुमान चालीसा इसलिए हो क्योंकि आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उस लाइन के लिए पढ़ते हो आप। लेकिन वो लाइन तो बीच में आती है तो आपको पढ़नी तो पूरी है
1: जी जी।
0: तो मन से पढ़ना बहुत आवश्यक है, इंटरनलाइज करना, और आपको जिस भी आप देवता, जिस भी भगवान को आप इष्ट है आपके, उनको अंदर से मन से उनका ध्यान करना। मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे जी।
1: बिल्कुल सकारात्मक भाव पैदा होता है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना सुनते
0: हैं? मैं भी आपको हनुमान चालीसा ड्यू है, मैं आपको दो कम से कम लाइनें सुनाता हूँ
1: जी जी, प्लीज सुनाइए
0: जी जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय सिया राम जय सिया राम। हाथ वज्र और ध्वजा बिरा

0: अभी मतलब मैं तो गाता रहूंगा तो 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे।
1: गाने की बात, चलिए हनुमान चालीसा आप गा ही रहे तो हम आपके पीछे की ओर बचपन की ओर ले चलते हैं, बचपन की गलियारों में। वहाँ आपने जिक्र भी किया कि आप विशारद करना चाहते थे, पंडित चंदूलाल मिश्र का जिक्र किया, तो क्या बचपन में आपने सोचा था कि आप गायकी की दुनिया में आएंगे, या फिर सोचा था उस समय क्या सपना था आपका?
0: मुझे लगता है कि बचपन में सपने तो थे पायलट बनने के, फिर लग गया चश्मा, फिर पता चला कि वो तो नहीं कर सकते, फिर लगा के फिर ऐसा लगा कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सुदूर जो जगह है वहाँ पे
1: डॉक्टर
0: इंजीनियर आईएएस, तो मेरा थोड़ा पायलट सोचता था, मैं थोड़ा आगे की सोचता था, लेकिन वो शायद एनीवेज। तो हुआ ये कि लखनऊ आने से मैंने डिस्कवर किया कैकिन सिंह, उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था। 17 साल तक की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूँ या मैं एक पोइट्री लिख सकता हूँ, ये भी नहीं मुझे पता था। तो लखनऊ आके वो परस्यूट डेवलप फिर से वापस स्फुटित हुए, अंकुरित हुए, या मुझे आई डिस्कवर्ड देम, सेल्फ डिस्कवरी हुई मेरी, हनुमान जी की तरह से उनको अपनी शक्तियां पता चली मुझे, एंड दैट टुक मी। वरना बचपन चंबल में बीता तो वहां पे बुंदेलखंड में, तो जहां पे ये आपने जो बैंडिट क्वीन देख रहे हैं, पान सिंह तोमर देख रहे हैं, वो एक और फिल्म थी टिशु की, एक और टिशु के बाद में अभिषेक चौबे की एक फिल्म आई थी फॉरगॉट द नेम, सुशांत सिंह राजपूत की थी, वो सारी फिल्मों को सारी दुनिया जो है ना बुंदेलखंड है, वो है जो हमने जिया है देखा है। से कॉन्ट्रास्टिंग आई रीच्ड लखनऊ, और लखनऊ में जो जीवन जैसे बोलते हैं कि परिवर्तन हुआ, तो वहां पे मैंने विशारद के लिए एडमिशन के लिए मैंने टेस्ट दिया जिसमें 30 सीटें थी, 30वां नंबर रैंक मेरा आया।
1: अच्छा।
0: और वो तेज सिंह टाक जी वहां पे मेरे टीचर थे, और उन्होंने जो भी सिखाया वो इतना काम भविष्य में आया कि मतलब एक ही साल किया था मैंने, 5 साल में से एक ही साल करके फिर आई टू गो फॉर द मेडिकल मेडिसिन। तो 4-5 साल वहां पे फिर वो रॉक वॉक गाते थे, और पॉप रॉक में दुनिया में चले गए, फिर क्लासिकल भूल गए। क्लासिकल को दोबारा से मैंने पिछले 4-5 साल में फिर से दोबारा से आई स्टार्टेड यू नो practicing and working on it, and I do it primarily for myself. तो मतलब वो completely मेरे उसको commercialize करता नहीं हूँ, music को कुछ भी commercialize नहीं करता. So it's a very soul satisfying sort of an event for me every day. लेकिन neck for music, finding great music, recognizing great talent, musical talent is probably one art I developed over the period of मतलब multiple years, decades I'll say. तो अनुभव सिन्हा जी के साथ में मैंने करीबन 3 साल काम किया, उसमें भी ऐसा हुआ कि वो साल भर के बाद उनको पता चला कि मेरा म्यूजिक सेंसिबिलिटीज ऐसी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे म्यूजिक भी सारा दे दिया करने के लिए। तो बनारस बीट नाम का उनका एक अपना एक छोटा सा
1: जी,
0: था। तो बनारस बीट मैं हैंडल करता था,
1: उसी के नाम से उन्होंने अपना रखा, फोन नंबर भी।
0: हाँ जी जी जी। तो बनारस बीट जो है मैंने काफी समय तक वो भी चलाया, बहुत सारा म्यूजिक मैं सिलेक्ट करता था उनके लिए, या एटलीस्ट चूज करता था कि सुनिए आपको क्या अच्छा लगता है, एंड दैट्स हाउ प्रोबब्ली आई थिंक द फिल्म बिकेम अ म्यूजिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एंड आई बिलीव द ग्रेट म्यूजिक ग्रेट साउंड, 45% विजुअल्स होते हैं, 55% जो है ना वो साउंड होता है, और वही आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट भी करता है, इफेक्ट भी करता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग डिलीवरीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग संबोधन जो है उसमें भी जो पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स विच वी सिलेक्ट एंड वी गो फॉर। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेरे मैं सारे फिल्म मेकर्स को ये सजेस्ट करता हूँ जो हम सडनली गानों से दूर भागने लगे हैं एज ए इंडस्ट्री, के लिप सिंकिंग करना है, बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने डाल देना है, गानों से पूरा वाइब क्रिएट होता है फिल्म का, थर्ड वीक ऑनवर्ड्स गाने चिपके हैं। अच्छा

0: अब अच्छा है खराब है मुझे पता नहीं, पर पहले 2 वीक तक कोई गाना चला ही नहीं, और वही कारण था कि फिल्म भी डिप करी थी। फिर फिल्म के बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू हुई, फिर गाने भी डिस्कवर होने शुरू हुए 4th वीक से,
1: और गाने बजने,
0: और फिर गाने ऐसे बजने लगे कि फिल्म को उन्होंने उठा दिया।
1: हाँ, और रील बनने लगे,
0: रील बनने लगे, हजारों की संख्या, मतलब अनगिनत है, तुम गिन भी नहीं रहे, गिनना बंद कर दिया, जो मिलता है उसको रीशेयर कर देते हैं, वरना तो हाँ निकल ही रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट इतना बन रहा है कि हम वी कांट सी, 24 घंटे भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: इतना कॉन्टेंट बन रहा है।
1: तो यहाँ पर गानों का जिक्र चला है और आपकी फिल्म के गाने के रील बन रहे हैं, और ज्यादातर इस गाने के पार्वती
0: जी
1: जो है, तो वो सुना दे श्रोताओं को
0: जी। मतलब वैसे साधु तिवारी जी का गाना है, उनसे परमिशन लेके मैं गाता हूँ वैसे, लेकिन चलिए मैं सुनाता हूँ। जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि, सप्तऋषि सप्तऋषि, अरे काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, अरे काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रे सांप, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ, भोलेनाथ शंभो।

0: संभव।
1: इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया अनुभव सिन्हा जी का
2: जी।
1: अनुभव सिन्हा जी विविध भारती के स्टूडियो
2: में आ रहे हैं,
1: उनसे सौभाग्य मेरा कि उनका भी इंटरव्यू मैंने ही लिया था, बातचीत की थी
2: जी।
1: तो उनसे कुछ निर्देशन की कुछ बारीकियां भी आपको मिली या गानों के बारे में ही?
2: मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में काम करना, मैं उनके अंडर तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया
1: जी, जी।
2: उनके सानिध्य में काम किया
1: जी,
2: पर बहुत सारी जो जिस तरह से उनकी वो जिस तरह से इलेवेट करते हैं चीजों को ना, सिनेमा हाँ, सिनेमा में इलेवेशन क्या होता है कि आप जब हम फिल्म देखते हैं तो आप जब जिस तरह से हीरो को पोजीशन करते हो, जिस तरह से इलेवेट करते हो, बहुत बारीक बारीक नजर है उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी उनके बहुत कान बहुत तेज है उनके भी म्यूजिकल तेज। तुम बिन उनकी पहली फिल्म भी इतनी बड़ी ह्यूज म्यूजिकल हिट थी, और आप चाहे वो रावण का म्यूजिक सुने या मुल्क का हाँ, थप्पड़ के गाने, मुल्क के भी गाने बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि रावण के गाने बहुत सुंदर थे, और उसके पहले भी जितनी फिल्में उन्होंने की है, मतलब आप चाहे कैश पकड़ लो, फिर उसके पहले एक और फिल्म थी उनकी
1: अनेक भीड़,
2: तो ये अभी की फिल्म है, लेकिन एक वो जो कमर्शियल फिल्म बनाते थे उनके म्यूजिक एल्बम, ओ माई गॉड क्या क्या एल्बम उन्होंने चूज किए। तो कहीं ना कहीं वो मेरा अनुभव सर का ये बहुत ही, जैसे बोलते ना कि हमारे बहुत सारे विचार, लेकिन हम बहुत, मैं उनका इतना सम्मान है हृदय में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो कभी भी आपके, आप क्या सोचते हो उस पर इंटरफेयर नहीं करते। और मैं उनके उनके ऑफिस में बैठ के मैंने एक फिल्म लिखी थी जो उनकी पसंद की फिल्म थी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लिख पूरा, शॉर्ट फिल्म सुनाई थी जिसपे उन्होंने कहा कि इसको तो पूरा फिल्म बना के लिख।
1: अच्छा।
2: फिल्म का नाम था उस वक्त, उसका नाम डीमो था, फिर उसका नाम भसाड़ हो गया, कॉमेडी फिल्म थी, एक रात की कहानी, दो दोस्त मिलते हैं और क्या होता है उस रात को, लेकिन उन्हें उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रॉब्ली उनको हो सकता ना ही पसंद आई हो, पर उन्होंने उसमें मेरे कभी काम में इंटरफेयर नहीं किया। और यही एक सबसे बड़ी फिल्म मेकर की खासियत होती है कि वो आप क्या सोच रहे हो वो आपकी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी सोच है, हम दोनों एक सब्जेक्ट को डिबेट कर सकते हैं पर मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जो चीज सीखी है उनसे मैंने वो यही सीखी, और मैं इस बात के लिए मतलब सदैव उनको याद करता हूँ और हर बार यही बात बोलता हूँ, और मेरी बात उनसे दो साल दो बार ही होती है, और लेकिन तो मतलब मेरा सम्मान उतना ही उनके लिए हृदय में उतना ही सम्मान है जी।
1: बेहतरीन बातचीत हुई थी और बेहतरीन इंसान। यहाँ पर आपकी फिल्म का हम गाना सुनना चाहते हैं, मतलब उसका जिक्र करना चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे
2: जी,
1: ये सुनील लोधी बुंदेलखंड के
2: जी जी।
1: तो ये कैसे मिले आपको, कहाँ से, बुंदेलखंडी गाते हैं वो?
2: बुंदेलखंड में पैदा हुआ, जैसे मैंने बताया बुंदेली मुझे बहुत पसंद है, अभी भी सोते मेरी पहली फर्स्ट लैंग्वेज भी आप बुंदेली बोल सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बोली है क्योंकि बोली है वो तो लैंग्वेज नहीं है, तो बुंदेली मुझे चूके, तो मैं क्या हो रहा था पिछले 2-3 साल से ना, एक बुंदेली दुनिया नाम का एक चैनल था
1: जी,
2: तो मैं बहुत सारे ऐसे बुंदेली गीतों को के लोग जो बनाते थे उनको फॉलो कर लेता था, तो उसमें देखा कि मैंने ये लड़का जो है ट्रेन में गाता है और उसका
1: नेत्रहीन है
2: वो और वो ट्रेन में गाता है या ट्रेन में ट्रेवल करते हो, किसी ने वीडियो बनाया तो इसलिए वो फेमस हो गया कि ट्रेन में लगा गाता है। अच्छा, मैं काफी दिनों से फॉलो कर रहा था, एक दिन मैंने दिखाई दिया कि वो इंस्टाग्राम पे उसे कोई पिक्चर दी, वर्सोवा बीच पे है वो, मैंने कहा ये कहां से वो आ गया, एंड मैं उसको अप्रोच करने की बदल से सोच रहा था कि इसको किसी को बोलता हूँ कि इसको अप्रोच करके बुलाओ मुंबई, पर मुंबई बुलाने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं और हमारी बहुत छोटी फिल्म है, हम ऐसा नहीं है भाई फ्लाइट टिकट देंगे भाई आ जा तू, बट चूंकि ये मौका था कि वहां पर था तो मैंने उसको रात में ही 11:30 बजे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा, और हैपेंस सो दैट इन हाफ एन आवर ही वाज इन द स्टूडियो, इन आवर ऑफिस एंड स्टूडियो, फिर हमने उसका सेटल किया कि कब जा रहा है वो, क्या है कैसा, तो पता चला कि वो 11 बजे सुबह निकल रहा है 12 बजे, तो उसके पहले हमने एक स्टूडियो बुक किया और सारे जो भी उसके जो गाने थे उसके पास में वो उसने सुने उससे हमने, और ये गाना मैंने तेरे ही भरोसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसने अपने ही उस पे तंबूरे पे एक तारे पे अपने उसने रिकॉर्ड किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिकॉर्ड किया, मैंने कुछ उसमें लाभ लगे पर कुछ किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट, और वो लोग बोले थे इसके ऊपर कुछ म्यूजिक नहीं करोगे, इनफैक्ट उसने भी बोला मुझे कि सर आपने इस पर कुछ कराया नहीं, और तो मैंने कहा कि नहीं इस पर कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही वर्क करेगा क्योंकि स्ट्रेट द वॉइस गोज डायरेक्टली टू योर हार्ट, कोई दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं, स्ट्रेट टू द हार्ट, कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, बहुत गूढ़ शब्द है उसमें
1: जी जी,
2: सागर में नैया डाल दे कौन, उसमें लाइनें हैं कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई, अरे काहे की वो नाव बनाई काहे की पतवार,
1: जी जी बिल्कुल याद है,
2: और काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डाल दे, सो बेसिकली इज अ क्वेस्ट कि दैट मैं सागर में नैया डाल दे, और हनुमत कौन है खेवन हार, तो पार कौन लगाएगा लेकिन खेवन हार कौन?

0: कौन है। देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। अब आंसर क्या है, सीता सखी भावे बैठन हारी
1: जी।
0: शक्ति उसमें बैठेगी, रामा पार लगाए वो आपको पार लगाएंगे, लेकिन खेवन हार कौन है, हनुमत खेवन हार सागर में नैया डार दे, मैंने तेरे ही भरोसे आप ही खेवन हार हो, यू विल टेक मी दैट साइड। सो इतनी सिंपलीफाइड एंड इतनी गूढ़ और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉकेटेड एक इतने खूबसूरत अगर गीत में है, तो मैं उसमें क्यों लाग लपेट करूं, क्यों उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट डालूं और क्यों उसको भरूं और क्यों उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करूं, व्हाइल इट इज वर्किंग सो वेल, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट वर्क करता है, इधर से आवाज निकली सीधे दिल में लगती है, दैट्स हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन इंटरनेट, यू कैन सी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 15 दिन पहले मैंने देखा था 2.5 लाख रील्स थी उसकी, 15 दिन पहले 2.5 लाख रील्स भी पता नहीं है, अभी देखेंगे तो लगता मिलियन हो गई हूँ या 5 मिनट के हो गए।
1: बिल्कुल, बहुत तेजी से ये चर्चित हो रही फिल्म और गाने हिट,
0: गाने
1: गाने लोगों की जुबान पर, बहुत मुश्किल है आज के इस युग में गाने को हिट करना और गाने हिट हो रहे हैं, रीलें बन रही, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं
0: जी।

0: गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आज के इस डिजिटल युग में भी आप कलम से कागज से लिखते हैं और ये पूरी फिल्म आपने कलम और कागज से लिखी है, तो ये क्या मामला है? आपको पसंद नहीं है डिजिटल मतलब लैपटॉप पे टाइपिंग करना, या आप कागज कलम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या बात है?
1: हुआ ऐसा कि मैं सारे जीवन में डिजिटली ही लिखते आया हूँ, तो मैं पेन पेपर पे लिखता नहीं था, कभी कभी लिख दिया तो लिख दिया, पर वो ऐसा रहा था कि जब फिल्म हमने अनाउंस कर दी और मैंने जो भी मेरे दिमाग में सीन्स थे उनको उतारने के लिए जब मैं लिखने बैठता था तो मैं ऑब्वियसली द डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑल द टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो कोई कॉल कर रहा है या तो किसी मैसेज कर रहा है उसको आपको रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, तो इट्स डिस्ट्रैक्टिंग। एंड ऑल्सो आप अगर उसको सर्च करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी जाते हो इंटरनेट पे तो वो भी आपको कहीं से कहीं ले जाता है,
0: दिख जाता है
1: और समय बहुत जाता है उसमें। तो मैं एकदम तंग आके और गुस्से में मैंने आके सारी डिवाइसेस बाहर निकाल दी।
0: क्या बात है।

0: मैं सब कमरे से बाहर। तो हमारे ऑफिस में एक छोटा सा स्पेस है जो स्लीपिंग पॉड है, जो उसको हम गुफा भी बोलते हैं कि हम, तो मैं वो गया, वो शट हो जाता है पूरा, पैक हो जाता है, सारी डिवाइसेस बाहर की, पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू किया। पहला सीन जैसे क्रैक हुआ, मैं गया अंदर, मैंने लिखना शुरू किया। इन 15 दिन में रिकॉर्ड 15 डेज टाइम में मैंने पूरी स्क्रिप्ट फिनिश कर दी। आपको बिलीव नहीं होगा कि पहला ड्राफ्ट ही है जो मैंने शूट किया। देयर इज नो चेंज इन द फिल्म, इज स्ट्रेट एक बार में। तो मेरा सजेशन लोगों को यही है कि डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव। जब भी आपको लेखन करना है, जैसे आपने भी पेन पेपर पे लिखा है सब,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: मोबाइल में है, जबकि
0: मोबाइल में आप लिख सकते हो, पर आप जो आपको जैसे बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन जो कनेक्ट फील होता है ना आपको, आपका माइंड वो बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बोलिए जो भी बोलिए, कि आपको कहीं ना कहीं एक लूप है वो। हाथ से जब आप लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो निकल रहा है वो हो रहा है, और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो डिवाइस आपके आंख में रोशनी नहीं छोड़ रही है, वो ऊपर से एक मैसेज नहीं आ रहा उसमें, और बीच में से कॉल नहीं आ रही है। ऑल दैट हैपेंस एंड देयर आर पीपल जो कि सिर्फ जो है ना मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना वो सैंक्टिटी चली जाती है।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं
0: डिस्ट्रैक्शन होते रहते हैं।
1: सही कह रहे हैं, और ये बात है, कागज पे लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ, लेकिन कागज रखा है साथ में, ये बहुत जरूरी। यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुना है?
0: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल टाइम फेवरेट,
1: प्रेम पुजारी,
0: प्रेम पुजारी का गाना है,
1: साहब का लिखा हुआ, सचिन देव बर्मन संगीतकार। तो सुनते हैं।

0: पुजारी फिल्म का ये गाना था और इस गाने के साथ एक बार हम आपको फिर बुंदेलखंड ले चलते हैं। बुंदेलखंड की कोई ऐसी यादगार घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बुंदेलखंड में जब मैं पढ़ने से पहले भी मतलब मुझे लगता है मैं स्कूल में भी नहीं गया था तो मैंने हमारी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में मेरे माता जी पिताजी के साथ में ट्रेवल कर रहा था एक कालपी से उरी के बीच में और वहां पे रास्ते में एक भवानी मंदिर भवानी जी का माता का मंदिर होता है। फर्स्ट मेमोरी मेरी वही है।

0: सबसे स्ट्रांग, और अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे मतलब डकैत डकैत ऐसा नहीं। एंड गाड़ी रुक जाती, सब सहम जाते हैं, पर मैं बहुत इंटरेस्ट से आगे चला जाता हूँ। लिटरली होता है ग्लास जो होता है उसके पास, मैं बच्चा हूँ, मैं वो मेरी बहुत स्ट्रांग मेमोरी है, जहां पे फिर मैं देख रहा हूँ बड़ा सा खोड़ा और उस पर छोटी सी महिला, उसने जो है ना पट्टा बांध रखा है, उसके हाथ में बंदूक है। वो बड़ा फैसिनेटिंग था, मतलब फॉर अ किड अचानक से इतना कि कोई आया है जिसको, और ऐसी वेशभूषा में किसी को देखा नहीं। तो वो फिर वो दर्शन वर्शन करती हैं, वो भवानी मंदिर में अपने सर झुकाती हैं और फिर वो चली जाती हैं वहां से। किसी को कुछ होता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो लूट के लिए नहीं आई थी, वो दर्शन करने के लिए आई थी। तो एक वो है, और दूसरा जो मेरे स्कूल के समय, जब मैं स्कूल और कॉलेज जब मैं पढ़ रहा था, कौंच भी जो ना कुंच ऋषि की धरती थी, वो मुझे बहुत लेटर समझ में आया। वहां पे रानी लक्ष्मीबाई जब वहां से निकली थी और वो चोटिल थी, घायल थी, तो कौंच में एक जगह थी जहां पे उन्होंने रात गुजारी थी, मलहम वगैरह भी वहीं पे हुई थी उनके। तो ये सारी चीजें जो थी, और प्लस बुंदेलखंड में वो जो भाषा है बहुत ही, मतलब ब्रिज की लठमार और थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा भाव और प्रेम भी आ जाता है
1: जी, जी।
0: तो वो लहजा जो है ना मुझे हरदम से बहुत फैसिनेट करता है, स्पेशली पान सिंह तोमर और डैंडिड क्वीन वगैरह जो फिल्म्स हैं, इन सब के अंदर, इनफैक्ट वो नत्था वो यूज टू स्पीक उसमें पीपली लाइव में, वो भी बुंदेली बोलता है। फिर वो एक और बहुत भाभी जी घर पे हैं, वो एक सीरियल है, वो मेरे बहुत क्लोज मित्र थे जिनके अभी उनका देहांत हो गया, जिन्होंने जो राइटर थे उसके, वो उन्होंने एक कैरेक्टर हप्पू सिंह। तो ये सब बहुत बुंदेली बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, एक्चुअली पॉपुलर बोली है, पर वो कभी ऐसा मेन स्ट्रीम में, वो गाने मेन स्ट्रीम नहीं हुए थे। और ऐसा नहीं कि मैंने बुंदेली ढूंढने के लिए बुंदेली ढूंढा था, मुझे तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की बोलियों में गाने चाहिए थे। तो लगभग 50% सॉन्ग से ऐसे जो है ना, सासा आले हंसा चाले अवधि है, फिर ये ब्रिज है, आवागमन थोड़ा ब्रिज और इसके बीच का है, आवागमन मिटा दो भोले शंकर। तो ये सारे गाने जो है ना, एक करके वो आइडिया ये था कि जितना हो सके हम मिट्टी की खुशबू इस फिल्म के अंदर लेके आए।
1: तो यहाँ पर गाना सुनवाते हैं।
2: हर हर महादेव।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनेगा अगले सप्ताह इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मह

आप सुन रहे थे रविद भारती के कार्यक्रम रविद भारती के मुंबई केंद्र से FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आई हूँ आपको जानकारी दे रहे हमारी आज की सभा के शीर्षक और कल की पहली सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। पहले आज की सभा के शीर्षक है मुख्य कार्यक्रम। अब से कुछ ही पुलों में ठीक 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे विश्व कपास दिवस, बेगम अख्तर जन्मदिन वर्षगांठ और ट्रेंस के बजाय अपनी जरूरत पहचाने विषय पर चर्चा। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

शाम 6:30 पर आप सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी। उसके तुरंत बाद आप सुनिए राजस्थान में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। शाम 7:00 ग्रामीण माता बहने सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम बैरानी बात।

8:45 मिनट पर आप सुनिए समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे आप सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 10 बजे। रात 11 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आइए एक नजर हमारी कल की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। रोजाना की तरह हमारी प्रातःकालीन रेडियो तरंगों का आगाज होगा प्रातः के 5:53 पर। प्रातः 6 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रामचरित मानस गान आप सुनेंगे प्रातः के 6:30 पर, प्रातः 6:40 पर सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम के 3 बाद का समय रहेगा प्रातः के 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 6:50 पर।

मिनटों के 7:20 मिनट पर आप सुनिए कार्यक्रम वातायन। कार्यक्रम कुछ दिन से का समय रहेगा प्रातः के 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनिए प्रातः के 8:45 पर।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 11 बजे और 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी मासवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:05 हुए। अब युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: कार्यक्रम युवाणी सुन रहे सभी मेरे साथियों को आपकी दोस्त शेफाली कलर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। अब हम कार्यक्रम में चर्चा को जारी करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल की जो हमारे जीवन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो है कपास। दोस्तों, हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। कपास को अक्सर हम सिर्फ कपड़े से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसके पीछे किसानों की मेहनत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कपड़ा उद्योग की एक पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। खेत में उगने वाला यह छोटा सा रेशा हमारे कपड़ों, बिस्तरों और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों का हिस्सा बनता है, लेकिन इसके पीछे एक किसान की महीनों की मेहनत होती है। बीज बोने से लेकर फसल की देखभाल और फिर उसे बाजार तक पहुंचाने तक, यह सब किसान की ही मेहनत है। दोस्तों, आज के युवाओं के लिए कपास सिर्फ एक कृषि उत्पादन नहीं बल्कि रोजगार और नवाचार का अवसर भी है। कृषि में नई तकनीक, बेहतर सिंचाई, आधुनिक मशीनरी और कपास से जुड़े उद्योगों में युवाओं की भूमिका बढ़ सकती है। दोस्तों, विश्व कपास दिवस हमें यह संदेश देता है कि किसान और कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। हमें कृषि को सम्मान देना चाहिए और किसान की मेहनत को समझना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप सूती कपड़ा पहने तो उसके पीछे खेत में मेहनत करते उस किसान को जरूर याद कीजिए। दोस्तों, इसी संदेश के साथ कार्यक्रम में हम आगे सुनते हैं गीत व संदेश।
1: शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो दे लाइफ टाइम सम अशर्ड के 10% का एनुअल इनकम और शॉर्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म चूज करने की फ्रीडम
2: है? ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
1: अच्छा, और अगर मुझे लिक्विडिटी की फैसिलिटी जैसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट और डेथ कवर भी चाहिए हो तो?
2: है ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
1: अरे इतना सब कुछ एक ही पॉलिसी में, ये पॉलिसी है ऑलराउंडर।
3: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियां, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी। बिक्री समापन के पूर्व अधिक जानकारी और जोखिम, घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारतीय संगीत के एक ऐसे महान कलाकार को, जिनकी आवाज में दर्द भी था, मिठास भी और भावनाओं की गहराई भी। दोस्तों, बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को हुआ था। उन्हें ठुमरी, दादरा और

0: विशेष रूप से गजल गायकी के लिए याद किया जाता है। उनकी आवाज में गजल को सिर्फ संगीत नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बना दिया। उनकी गायकी की सबसे खास बात थी सादगी और एहसास। वे जब गाती थी तो ऐसा लगता था जैसे संगीत के शब्द सीधे दिल में उतर गए हैं। बेगम अख्तर ने संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई और भारतीय शास्त्रीय तथा उपशास्त्रीय संगीत को एक नई ऊंचाई दी। उनकी आवाज आज भी संगीत प्रेमियों के लिए अपने ओर आकर्षित करती है। आज के युवा पीढ़ी के लिए बेगम अख्तर जी का जीवन एक प्रेरणा है। यह हमें बताता है कि अगर प्रतिभा के साथ मेहनत, लगन और अपने हुनर के प्रति ईमानदारी हो तो समय बीत जाने के बाद भी आपकी कला लोगों के लिए दिलों में जीवित रहती है। दोस्तों, बेगम अख्तर को याद करना सिर्फ एक महज गायकी का याद करना नहीं है, बल्कि भारतीय संगीत की उस समृद्ध परंपरा को सलाम करना है जिसने भावनाओं को सुरों की भाषा दी। दोस्तों, बेगम अख्तर की जन्म वर्षगांठ पर उन्हें सामान नमन करते हुए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम में इसी के साथ सुनते हैं आगे गीत व संदेश।
1: और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अरे मीहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
2: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
1: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
2: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
1: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
2: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपने नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।

दोस्तों, इस गीत के साथ कार्यक्रम में हम एक और विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला विषय है जो एक बेहद ही युवाओं के लिए खास विषय है। युवाओं के जीवन से जुड़ा यह विषय ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय अपनी जरूरत को पहचानना। दोस्तों, आज सोशल मीडिया के दौर में हर दिन कोई न कोई नया ट्रेंड हमारे सामने आता है। नया फोन, नए कपड़े, नए जूते, नया गैजेट या नया कोई लाइफस्टाइल ट्रेंड। हम अक्सर देखते हैं कि कोई चीज ट्रेंड में है और बिना यह सोचे कि हमें वास्तव में उसकी जरूरत है या नहीं, हम उसे खरीदने या अपनाने लगते हैं। लेकिन हमें खुद से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? जरूरत और इच्छा में अंतर समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर कोई चीज हमारे काम में आसान बनाती है, हमारे लक्ष्य में मदद करती है या वास्तव में हमारे जीवन के लिए जरूरी है, तो उसे लेना समझदारी है। लेकिन सिर्फ इसलिए खर्च करना कि दूसरे लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा सही फैसला नहीं होता। युवाओं के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सोशल मीडिया हमें लगातार यह दिखाता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, लेकिन असली सफलता दूसरों की जिंदगी की नकल करने में नहीं, बल्कि अपनी जरूरत, अपनी प्राथमिकता और अपने लक्ष्य को समझने में है। इसलिए अगली बार जब कोई नया ट्रेंड आपको आकर्षित करे, तो तुरंत फैसला लेने के बजाय खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी जरूरत है या सिर्फ इसका ट्रेंड मुझे आकर्षित कर रहा है। हो सकता है यह छोटा सा सवाल आपको अनावश्यक खर्च से बचाएगा और आपको अपने असली लक्ष्य की ओर करीब ले जाएगा। ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी जरूरत और आपका लक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ युवाणी में कार्यक्रम

दोस्तों इस गीत के साथ समय हो चला है कार्यक्रम विवरणी समाप्त करने का। इजाजत दीजिए आपकी दोस्त शेफाली कलाल को कार्यक्रम विवरणी समाप्त करने की। नमस्कार।

सभी युवा श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। कुछ ही पुलों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में आपने यारा दिलदारा फिल्म का ये गीत सुना। जतिन ललित का संगीत निर्देशन था और फिल्म इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
3: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
3: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शराबी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। अनजान की रचना अभी आपने सुनी। आइए सुनते हैं रेफ्यूजी फिल्म का ये गीत। सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत।

रिफ्यूजी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी सोनू निगम और अलका याग्निक की, जावेद अख्तर की बोल थे, अनु मलिक का संगीत था।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

0: भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा न होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी

0: 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार GST व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बगैर अनुमति के प्रवेश के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी को बढ़ावा देना होना चाहिए। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगी तो इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेरनिहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए दिया है। उन्होंने रसायन विज्ञान में मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, तराने नए पुराने। इस कार्यक्रम में आप सभी का समाचार के बाद फिर स्वागत करते हैं।

0: आपने दिया।
1: लता मंगेशकर की आवाज में आपने आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत सुना। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम था शारदा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: आनंद बख्शी का लिखा हुआ एक और गाना भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। राजा और रंक फिल्म का ये गीत आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे करते थे। और ऐसा
0: बंडी और बबली फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं।

0: लिखा गीत आप सुन रहे थे बंटी और बबली फिल्म से।
1: तराने नए पुराने।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
4: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
4: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छा से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
5: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
5: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:00

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से अरम्बेनिक सो 1.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी, उसके तुरंत बाद आप सुनिए राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया, सत्ता को सेवा का माध्यम बताया। आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% किया। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 7.1% बताया। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए 210 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट आवंटित किया। और प्रदेश के छोटे बड़े कुल 693 बांधों में क्षमता का लगभग 62% पानी उपलब्ध, पिछले साल के मुकाबले जल भंडारण 29% कम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता को सेवा का माध्यम बताया है। वे आज नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया में चर्चा में है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है।
1: सबका

0: का विकास यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी के शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई। जयपुर के मानसरोवर स्थित वीटी रोड मैदान में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश में बीते एक दशक में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। श्री मोदी जन विश्वास और गारंटी का पर्याय बन चुके हैं।
2: ये सेवा समर्पण और सुशासन के 25 वर्ष है। 2014 के बाद देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने राजनीति के परिवर्तन बदलते हुए सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। आज मोदी जी का नाम करोड़ों देशवासियों के लिए संकल्प की सिद्धि और गारंटी का पर्याय बन चुका है। और आप देखेंगे उनके कार्यकाल में जो ऐतिहासिक कार्य हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सेवा सुशासन विकास जनकल्याण के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का यह अभियान है।
1: श्री मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शासन सचिवालय में विशेष सत्र रखा गया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि अधिकारियों और कार्मिकों में सेवा उन्मुख सोच को मजबूत करने और संवेदनशील शासन प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू करने के विचार को बढ़ावा देने के लिए ये सत्र रखा गया। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव सहित विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अलवर, डूंगरपुर, झुंझुनू, भरतपुर, पाली, बारा और चूरू जिलों में सेवा ज्योति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का आयोजन कल से नई दिल्ली में होने जा रहा है। यशोभूमि में होने वाले 4 दिन के इस कार्यक्रम में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही वैश्विक सहयोग और निवेश तथा ज्ञान के आदान प्रदान के लिए ये आयोजन एक साझा मंच का काम करेगा। इस दौरान अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे, तकनीक आधारित आर्थिक विकास और डिजिटल पहुंच बढ़ाने पर जोर रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मुंबई में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए करीब 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाया गया है। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर में 0.25% की बढ़ोतरी कर इसे 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-2024 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रेपो रेट वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक पूंजी उपलब्ध करवाता है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। शेष बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को बढ़ाकर 5.2% किया है। नवनियुक्त वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। इनमें मुख्यालय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में CISC और सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का दायित्व भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एयर मार्शल दीक्षित एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं। उन्हें विमान उड़ाने का 3,500 से अधिक घंटों का अनुभव है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News

और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए 210 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है। 41 जिलों में चुनावी व्यवस्थाओं के लिए ये राशि जारी की गई है। इसमें मतदान दलों से लेकर ईवीएम, वाहन और वीडियोग्राफी सहित अन्य खर्च शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवंटित राशि का उपयोग निर्धारित मदों में ही करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने पर एक माह के भीतर खर्च का पूरा विवरण आयोग को भेजना होगा। इस बीच आयोग ने पंचायत चुनावों को लेकर मतदान केंद्रों पर

0: भेजना होगा। इस बीच आयोग ने पंचायत चुनावों को लेकर मतदान केंद्रों पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छाया, पीने के पानी और पर्याप्त रोशनी का इंतजाम अनिवार्य होगा। साथ ही मतदान केंद्रों पर अस्थायी रैंप बनाने और प्राथमिक उपचार किट की उपलब्धता करने को कहा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कल चुनाव की लोक सूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही जिला परिषद सदस्यों और पहले चरण के पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में देश की तीनों सेनाओं के समन्वय से सीमा पार आतंकी शिविरों पर सटीक हवाई और सैन्य हमले किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई इस जवाबी कार्रवाई ने आतंक के विरुद्ध नया मानदंड स्थापित किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में आए बदलाव को न्यू नॉर्मल अगेंस्ट टेरर करार दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
1: ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने साफ किया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई अब सामरिक संयम और रक्षात्मक नीति से हटकर आक्रामक तथा निर्णायक जवाब का नया मानदंड स्थापित करती है। इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं: निर्णायक जवाबी कार्रवाई, यानी भारत पर होने वाले किसी भी आतंकी हमले का अब करारा जवाब दिया जाएगा; दूसरा, परमाणु ब्लैकमेल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा; और तीसरा, आतंक के आकाओं और उनके संरक्षकों में अब कोई अंतर नहीं होगा, यानी भारत अब आतंकवादी नेताओं और उन्हें पनाह देने वाली सरकारों में कोई फर्क नहीं करेगा। देश की पहली एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार इसी विजन का हिस्सा है। साथ ही बीते 12 सालों में देश के भीतरी इलाकों में आतंकवादी हमलों में आई कमी देश की बेहतर निवारक क्षमताओं और मजबूत सुरक्षा समन्वय को दर्शाती है। न्यूज डेस्क से सालेहा गाजी।
0: प्रदेश में अगले सप्ताह मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 11 और 12 अक्टूबर के आसपास सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही रात के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने इस बदलाव के साथ ही दिन के तापमान में भी कमी की संभावना जताई है। इस बीच बीते 24 घंटों में प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। पिलानी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार मापा गया। वहीं सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर और शेखावाटी सहित कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा। इससे सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस की गई। इस वर्ष मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश का असर राज्य के बांधों पर भी दिखाई दे रहा है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार छोटे, मध्यम और बड़े कुल 693 बांधों में अपनी क्षमता का लगभग 62% पानी उपलब्ध है। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 90% से अधिक था, यानी जल भंडारण में करीब 29% की गिरावट दर्ज की गई है। 99 बांध ही पूरी क्षमता तक भर पाए हैं, वहीं 379 आंशिक रूप से भरे हैं और 215 बांध पूरी तरह खाली है। कोटा संभाग में सबसे अधिक 77% जल भंडारण है। जोधपुर क्षेत्र के बांधों में केवल 16% पानी ही भरा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया, सत्ता को सेवा का माध्यम बताया। आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% किया। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 7.1% बताया। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए 210 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट आवंटित किया। और प्रदेश के छोटे बड़े कुल 693 बांधों में क्षमता का लगभग 62% पानी उपलब्ध, पिछले साल के मुकाबले जल भंडारण 29% कम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनावों की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार

0: संहिता लागू हो गई है। इसी के साथ सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर रोक रहेगी। जिले के 20 पंचायत समितियों की 590 ग्राम पंचायतों में चुनाव 3 चरणों में होंगे। जिला परिषद और पंचायत सदस्यों के लिए मतदान 22 और 28 अक्टूबर तथा 3 नवंबर को होगा। वहीं पंच और सरपंच पद के लिए 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले जिले में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। भारतीय जनता पार्टी के पारस सिंघवी उदयपुर नगर निगम के महापौर बने हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पूनम कंवर को 55 वोट से हराया है। उप महापौर पद पर दिनेश भट्ट का निर्वाचन हुआ है, वे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं फतेहनगर नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी ममता चपलोत चेयरमैन चुनी गई हैं। वल्लभ नगर में भाजपा और मावली तथा कानौड़ में कांग्रेस के बोर्ड बने हैं। गौरतलब है कि जिले में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए थे। विश्व पर्यटन दिवस पर जिले भर में विविध आयोजन हुए। जिले के सभी संग्रहालयों और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। लोक कला से जुड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। 3 दिन के कार्यक्रमों में कई तरह की प्रतियोगिताएं और गतिविधियां रखी गई। इस दौरान पारंपरिक मेहंदी कला को विशेष स्थान दिया गया। प्रतियोगिता में विजेता मेहंदी कलाकारों को पुरस्कार दिए गए। जिले में 14 सितंबर से 30 सितंबर तक अवैध शराब बनाने, उसका भंडारण करने और बिक्री पर रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान कई जगह दबिश देकर जब्ती की कार्रवाई की गई। विश्व हृदय दिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हृदय रोगों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही समय रहते हृदय की जांच करवाने के लिए समझाया गया। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया में पशुओं में होने वाले हृदय रोगों पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें पशुपालकों को बताया गया कि पशुओं के हृदय का कैसे ध्यान रखा जाए। इससे पहले महाविद्यालय में पशु चिकित्सा प्रसार सोसाइटी का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से आए 200 वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और शोधार्थी शामिल हुए। गणेश चतुर्थी का पर्व जिले में पूरी धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। शहर के बोहरा गणेश जी, पाला गणेश जी और जाड़ा गणेश जी सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों की ओर से शहर के प्रमुख बाजारों में गणपति स्थापना की गई। अनंत चतुर्दशी तक रोजाना सेवा पूजा के साथ विभिन्न श्रृंगार किए गए और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के साथ हुआ। इस अवसर पर जगह जगह स्थापित की गई गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। जल झूलनी एकादशी का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों से ठाकुर जी को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। नयाखेड़ा स्थित राजकीय अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 पदक हासिल किए हैं। 70वीं जिला स्तरीय अंतर विद्यालयी कुश्ती खेलकूद प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपना दमखम दिखाते हुए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं जिले के कुराबड़ ब्लॉक की शिशवी ग्राम पंचायत की जनजाति बहुल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओंकार की छात्रा लक्ष्मी मीना का चयन 70वीं राज्य स्तरीय इंटर स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ये प्रतियोगिता झुंझुनू में आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बीते दिनों पीड़ित प्रतिकर योजना की बैठक आयोजित की गई। जिला और सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एडीजे राहुल चौधरी ने बताया कि इस दौरान योजना के तहत 10 प्रकरण निस्तारित किए गए। बैठक में पीड़ित और उनके आश्रितों को 34,25,000 रुपए के पीड़ित प्रतिकर अवार्ड पारित किए गए। इसी के साथ उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आए विकसित भारत संकल्प सभा ने संबोधित की नी सत्कान सेवारो जरियो बतायो। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट 25 आधार अंकानी बढ़ोतरी सागे 5.5% की नी चालू माली साल सारू जीडीपी माए 7.1% बढ़ोतरी रो अनुमान लगायो। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश माए फेवनवाड़ा पंचायत चुनाव सारू 210.35 करोड़ रुपया रो बजट आवंटित कीनो और प्रदेश का कुल 693 बंधा माए बूतारो करीब 62% पानी मौजूद लारला साल रे मुकाबले 29% कम। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता न सेवा रो जरियो बतायो है। वे आज नई दिल्ली माए राखी जी विकसित भारत संकल्प सभा माए बोल रहा हा। श्री मोदी कहो कि जनता रो भरोसो और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं रो समर्पण वहां सारू सब मोटी ताकत रहा। प्रधानमंत्री कहो कि भारत री अब बढ़ती ताकत और चुनौतियां रो सामो करण रा बूता सारू पूरी दुनिया में चर्चा है। वह कहो कि देश री मौजूदा सरकार री नीति जनता री समस्या में आगे करण री है।
2: सबका साथ सबका विकास यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा राज रा मुखिया रा तौर 25 साल पूरा भवन रा मौके प्रदेश माए न्यारी न्यारी ठोणा सेवा ज्योति यात्रा निकाली ची। जयपुर माए राखी जा कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो के श्री मोदी री अगुवाई माए देश माए लारला 10 वर्षा माए मोटा बदलाव नजर आया।
3: सेवा समर्पण और सुशासन के 25 वर्ष है। 2014 के बाद देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने राजनीति की परिभाषा बदलते हुए सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। आज मोदी जी का नाम करोड़ों देशवासियों के लिए संकल्प की सिद्धि और गारंटी का पर्याय बन चुका है और आप देखेंगे उनके कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सेवा सुशासन विकास और जन कल्याण के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का यह अभियान है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानियों जन सेवा रा 25 साल पूरा विवरण रा सिलसिला माए जयपुर रा शासन सचिवालय माए खास सत्र राखी चियो। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बतायो के अहलकारा और कर्मचारियां माए सेवारी सोच ने मजबूत बनावण और संवेदनशील शासन प्रणाली असरदार तरीकाओं लागू करण रा विचार ने बढ़ावो देवण सारू ओ सत्र राखी चियो। अलवर डूंगरपुर झुंझुनू भरतपुर पाली और चूरू समेत न्यारा न्यारा जिलाओं सेवा ज्योति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सभा रा कार्यक्रम रखने का समाचार मिलिया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस रो 10वां संस्करण काल नई दिल्ली माए शुरू हैला। 4 दिन रा ई कार्यक्रम माए दूर संचार डिजिटल जुड़ाव और तकनीकी नवाचार रा हलका माए भारत री बरकत रो दर्शाव करियो जावेला। इसागे आवता जमाना रा डिजिटल बुनियादी ढांचा तकनीक आधारित माली विकास सुरक्षित और मजबूत डिजिटल तंत्र विकसित करण और डिजिटल पहुंच बढ़ावन रे बारा माई चर्चा फैला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो दूर संचार विभाग और भारतीय सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन री ओर रखी जा रही ई मीटिंग रो उद्घाटन करण रो कार्यक्रम है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट माए 25 आधार अंका ने बढ़ोतरी करण रो फैसलो कीनो है। ई पाछे अब रेपो रेट 5.25% भेजावेला। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा आज मुंबई माए द्विमासिक मौद्रिक नीति रो ऐलान करता थका आ जानकारी टीनी। वे बतायो कि दुनियारी अनिश्चितता बीच बढ़ती महंगाई माथे काबू करण सारू करीब 4 साल पाछे रेपो रेट माए 25 आधार अंका ने बढ़ोतरी करी ची है। इनो पहली फरवरी 2023 माए रेपो रेट माए 0.25% री बढ़ोतरी कर 6.5% तय करी ची ही। साल 2023-24 में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करी जियो। हालांकि साल

2025 ईएमआई कटौती शुरू करी ची ही। रेपो रेट ब्याज री वह दर है जिन्हों रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंका ने कम बगत सारू पूंजी मुहैया करावे है। भारतीय रिजर्व बैंक चालू माली साल सारू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी माए 7.1% बढ़ोतरी रो अनुमान लगायो। इविच महंगाई माए बढ़ोतरी री खुदरा दर अगस्त महीना माए बढ़ 4.82% रही जबकि लाड़ला महीना 4.45% ही। वायु सेनारा नुआ बनाई जिया प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 31 अक्टूबर ने कामकाज संभालेला। वह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह राठौड़ लेवेला। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना माए कई खास ओहदा माथ सेवा दीनी है। आमाए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रा मुख्यालय माए सीआईएससी और सेंट्रल एयर कमांड रा एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रो दायित्व शामिल है। रक्षा मंत्रालय रे मुजब एयर मार्शल दीक्षित एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है। वाने जहाज उड़ावन रो 3,500 घंटा रो अनुभव है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में फेवन वाला पंचायत चुनाव सारू 210,35,00,000 रुपया रो बजट रखियो है। प्रदेश रा 41 जिला में पोलिंग पार्टियां लेर ईवीएम गाड़ियां और वीडियोग्राफी समेत न्यारा न्यारा चुनावी खर्च सारू आ रकम जारी करी ची है। जिला निर्वाचन अधिकारियां ने चुनाव रो काम पूरो फेवन रा एक महीना री मियाद में खर्चा रो पूरो ब्यौरो देवन सारू कही चियो है। इबीचे आयोग पंचायत चुनाव रे दौरान मतदान केंद्र माथे छाया पीवन रा पानी और जरूरी रोशनी समेत न्यारा न्यारा इंतजाम तय करन रा हुकम दीना है। मतदान केंद्र माथे अस्थायी रैंप बनावन और इलाज रा किट मुहैया करावन सारू ही कही चियो है। इबीचे जिला निर्वाचन अधिकारी काल चुनाव री लोक सूचना जारी करेला। इस आगे जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य रा चुनाव रा पहला दौर सारू पर्चा भरन रो काम सारू भेजावेला। नाम पाना सवारे 11 बजाऊ दोपहर पाछे 3 बजे ताई दाखिल करया जा सकेला। राज्य माए वोट देवन रा पात्र और नुआ मतदाता रा नाम वोटर लिस्टा माए मांडन सारू खास अभियान चलायो जा रहियो है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बतायो कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर रे दौरान मतदाता सूची माए शामिल हुए वणु रह गया पात्र लोगां और 18 साल री उम्र पूरी कर चुके पात्र नौजवानों रा नाम वोटर लिस्टा माए जोड़िया जा रहा है। वे बतायो कि लाडला 7 दिन माए 57,032 अर्जियां मिली। श्री महाजन वोट देवन रा पात्र लोगां नाम मतदाता सूची माए जुड़ावन और दूजा पात्र नौजवाना और जनता ने एडो करन री सीख देवन री अरज की नी है। रबे मौसम प्रदेश रा बीकानेर संभाग और शेखावाटी हल्का माए 11-12 अक्टूबर रा आरे सारे बादला मंडिया रहवन और गरज सागर हल्की बारिश रा आसार है। ईसा गई रात्रि बगत पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई उतरण री संभावना है। मौसम विभाग आवता दिना दिन नाई पारो उतरण रा आसार जताया है। इबीचे लाडला 24 घंटा माए प्रदेश रा तापमान माए उतार चढ़ाव नजर आयो। पिलानी माए ऊंचो ऊंचो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो जबकि सिरोही भीलवाड़ा उदयपुर और शेखावाटी हल्का समेत कई ठोणा कम ती कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नीचे रहो। इन सवारे और रात्रि बगत हल्की सर्दी महसूस वेमन लगी। इस साल चौमासा माए सामान्य कम बिरखा वेवन रो असर राज्य रा बंधा माथई नजर आ रहो है। जल संसाधन विभाग कान्यो मिली जानकारी रे मुजब राज्य रा कुल 693 बंधा माए बूतारो 62% पानी है। लाडला साल आम बंधा माए 90% उबत्तो पानी भरियो हो। इस साल 99 बंधा पूरा भर सक्या 379 थोड़ा घना भरिया है जबकि 215 बंधा रीता रह गया। कोटा संभाग रा बंधा माए सबू बत्तो 77% पानी भरियोड़ो है जबकि जूतपुर हल्का रा बंधा माए महज 16% पानी भरियो है। पहलगाम आतंकी हमला रा जवाब माए फौज का न्यू ऑपरेशन सिंदूर रातेत सीमा पार आतंकी शिविर माथे सटीक हवाई और फौजी हमला करी।

0: ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਤੰਕ ਰ ਖਿਲਾਫ ਨੂੰ ਮਾਨਦੰਡ ਬਣਾਇਓ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਰ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਏ ਆਇਆ ਈ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰ ਕਰਾਰ ਦਿਓ ਚਿਓ ਹੋ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ।
1: ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने साफ किया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई अब सामरिक संयम और रक्षात्मक नीति से हटकर आक्रामक तथा निर्णायक जवाब का नया मानदंड स्थापित करती है। इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं: निर्णायक जवाबी कार्रवाई, यानी भारत पर होने वाले किसी भी आतंकी हमले का अब करारा जवाब दिया जाएगा; दूसरा, परमाणु ब्लैकमेल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा; और तीसरा, आतंक के आकाओं और उनके संरक्षकों में अब कोई अंतर नहीं होगा, यानी भारत अब आतंकवादी नेताओं और उन्हें पनाह देने वाली सरकारों में कोई फर्क नहीं करेगा। देश की पहली एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार इसी विजन का हिस्सा है। साथ ही बीते 12 सालों में देश के भीतरी इलाकों में आतंकवादी हमलों में आई कमी देश की बेहतर निवारक क्षमताओं और मजबूत सुरक्षा समन्वय को दर्शाती है। न्यूज डेस्क से सालेहा गाजी।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा ने संबोधित कीनी। सत्ता ने सेवा रो जरियो बतायो। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट 25 आधार अंकानी बढ़ोतरी सागे 5.5% कीनी। चालू माली साल सारू जीडीपी माए 7.1% बढ़ोतरी रो अनुमान लगायो। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश माए फेवन वाला पंचायत चुनाव सारू 210.35 करोड़ रुपया रो बजट आवंटित कीनो। और प्रदेश रा कुल 693 बंधा माए बूतारो करीब 62% पानी मौजूद, लारला साल रे मुकाबले 29% कम। ईसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7 बजे अब ग्रामीण माता बहनें सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम बहिरानी बात।

0: प्रत्येक मंगल
1: भैरा निवाद कार्यक्रम हमरा वारा हंग्र भैरने सोराड़ी विना बेनो राम राम राम राम। देखो भाई, आज भैरनो कार्यक्रम है ने खास करीने बुधवार नो दाड़ो। भैरने याद रहे ने सोरानो जी टेम है ई भी भाई याद राखी ने सोरा माते आवे। खरु बेनो, आवो भी आपणे जरूरी छे, केम के आपणे भैरनो कार्यक्रम आवे बुधवार ने दाड़े, तो पहले थे केस आपणे इंतजार रहे के कई घड़ी भाई टेम थाय ने कई घड़ी आपणे सोरा माते जा हांगर भैरे थे की मला ने हांगर भैरे थे की वात करा। देखो बेनो, इंतजार करते करते टेम है थई गयो ने आपणे सोरा माते हांगर भैरे है थई गया। बेनो, आजे हूँ वात करवाना है हांगर भैरे भैरे थई, तो ये पूरी विवरण जानकारी आल दे, क्योंकि की बैरे ने इंतजार रहे कि भाई विनाबेन आई थे कहे हूँ बात लेने आई थे कहे, तो किम ने भाई हूँ बात करवाना है विवरण जानकारी आल दे कि कई कई बातें करवाना है। बेनो, आज आप बात करेंगा रवि फसले में तैयारी, इन्हीं बारे में बात करेंगा। बीजी बात करेंगा छोटी बचत भविष्य।

सही समय माटे आयर नहीं पड़े ने ने जी फसल ही वेसो वेसे रोकाई गई ने जितली भाई मलेरी थकी है ने में तो बस ईयर है यो लगे गयो जी उड़द है मूंग में तिल वाली फसल में कई रहता का है देखो फसल करा भाई इन्हें में नुकसान भी थी जाए पर किसान भाई ने कारे उम्मीद नहीं सोड़ी है उम्मीद नहीं तो भाई अगर उम्मीद आप सोड़ी दंगा तो पसे जी फसल है अपने करी रहे कहे नहीं था कि आप हारी जंगा एटले किसान भाई देखो अपने फसल में हार जी नुकसान तो थी जाए पर आपने अगली फसल और उम्मीद बिल्कुल नहीं सोड़ी है किसान भाईओ बहनों आज जी दादा में बात करी ने अवे आपने बात करे किम कि आपने बैरानो प्रोग्राम है बैरानो कार्यक्रम है बैरा बैठो थे कहे है ने देखो आ वार त्यौहार भी अवे आगाड़ी आवी रहे थे कहे बेने तो पासी आ नवरात्र वगैरह इन शॉपिंग भी करी पड़े खरीदारी भी करी पड़े हमने तो बाजार में भी जाव पड़ी रू बेना ने किम कि अवे आ बे तीन चार दड़ा है तो बेने तो आज तक ही सालू है ने घनी खरी बहनों में तो पासी या खरीदारी करी भी ली दी है देखो बहनों खरीदारी भी करवी जरूरी है क्योंकि आपने जी भी धार्मिक त्यौहार आवे जी भी सामाजिक त्यौहार है सामाजिक कार्यक्रम है इन्हें में आपने जाओ भी पड़े त्यौहार मनाओ भी पड़े जी भी गरबा वगैरह है आपने खेलवो भी पड़े पर सब थे कि बहना ने बहरा आपने कहा सोरा माध्यम थे कि देखो देखा देखनी भक्ति तो बिल्कुल नहीं करे बहनों क्योंकि अपने कहावत में कहा कि जितली अपने चादर है इतलास पाव है अपने ने लंबा करवा है अगर चादर टोकी हो ना अपने पाव लंबा करा तो अर्धा पाव ही खुला रह जाएगा बेने इटली बात में हमजी गई होगा बेने देखो अपने जी वार त्यौहार आवे इन्हें में घनी खारी बेने खरीदारी करे देखो हैसियत ने हिसाब थे कि आप करंगा तो ठीक रहेगा घनी कारी बेने हो के भाई ब्याज बाटा करीने भी खरीदारी है करी लाओ आपड़े पण देखो ब्याज बाटा करवा ये घना नुकसानदायक है आपड़े तत्काल हरू आपड़े जी मन ने शांति हरू तो आपड़े करी दा पण अगाड़ी जी ब्याज वगैरह है ये चालू थी जाए ने ब्याज आपने नहीं भरायू तो ये ब्याज है चालतो रहे तो बेने देखो आपड़े जहां था वनवास रही जा एटले हरू देखा देखनी भक्ति ये बिल्कुल नहीं करे ने जी फिजूल खर्चा है ये बिल्कुल नहीं करे ने छोटी बचत भविष्य ही आपको सुरक्षित रहेगा घनी खरी बेने जी भी मेरा वगैरह लागे बेने वहां भी जाए दुकाने खरीदारी भी करवा जाए नवरात्रि नो सामान भी लेवा जाए देखो बेनो आपड़े यूज करी रहे हैं आपड़े काम में लई रहे थे कहे आपड़े पेरो ओडंगा ई सीजी खरीदे एवं नहीं कि भाई जी सीजी अपने क्योंकि बहरा ने तो पास एवं है कि अच्छी देखाई गई चाहे अपने पेरा या नहीं पेरा पण एने भाई बात में वारे ने अपने घरे तो लई आवांगा लईने पसे कोणा में नाकी दंगा पसे घरे लावे ने कह के भाई देखो मैंने तो अच्छो नहीं लगी रू है ने या तो अभी कौन बदलावे दुकान भी वालों भी कहे कि नहीं रही खरीदारी एक वक्त कर ली थी इन्हें वादा बदले ने तो बस अपने घर ने कोना में राखव या टाण माते मेलव मजबूर थी जाए तो बेनो एवं कतरे नहीं करे किम के फिजूल खर्च थे कि अपने बेने बसे बीजू अपने जी छोटी बचत करवी भी बेना ने घनी जरूरी है किम के बेनो अपने आय दाड़े अपने होना अपने घर परिवार हंगरू लेने बैठे थका है आम को तो बेनो घर परिवार है अपना बहरे थे किस साल है तो अपने शुरुआत से अपने बहरे थे किस कर के बचत करवी है जेम के अपने कहीं खरीदारी करी रहे हैं तो इन्हें में बचत हरते करवी है अपने बहरे जाने देखो बेनो बचत अपने कहो कि भाई एक हजार नो अपने हाडलो खरीद रहे थे कहें अपने मन थी गयु पर मन ने जरा सो अपने कम करे ने जरा सो नीचे उतरव है जेम के हजार वालों अपन पसंद आ गयो तो देखो सस्तो ने सुंदर 700-800 में भी अपने नीचे उतरी जाए तो केटला ने बचत थी बहनों एम ने एम हर चीज ने अपने बचत करंगा बीजू बहनों सामान खरीदा में भी अपने बचत करा या पसे कोई बेने ग्रामीण बेने है सब्जी वगैरह वेसरी थकी है तो इन्हें में हर रोज थकी हो रूपये नहीं बचत करे बेना देखो आए दाड़े घनी समस्या आ जाए घर परिवार में नाना सोरा है बुजुर्ग है अपने खुद न शरीर है कई वक्त आप समस्या आ जाए अपने खबर नहीं तो छोटी बचत करला अपने जय घड़ी

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: देखो बेनो, आज गीत तुई अपने होनो ने बेनो, जाते जाते आ विश्व कपास दिवस निबारा में अपने बात करा। बेनो, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर यानी आजने दाड़े ही मनावे। इन्हें पेला सूर कह के अंग्रेजी में वर्ल्ड कॉटन डे भी कह। आजनो दाड़े जी वैश्विक स्तर पर कपास ने वाला दाड़ो है, इनो महत्वपूर्ण आज दाड़ो है। कपास किसान या कृषक भाई हरू जी एने थे कि जुड़ीला धंधा है, जुड़ीला उद्योग ने बारा में अच्छो खासो योगदान आले ने उजागर करवा बदले आजने दाड़े विश्व कपास दिवस मनावे। बेनो, आनी शुरुआत 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहयोग थे किया मनायो तो। आनो मुख्य उद्देश्य है बेनो, कपास ना जी आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय जी महत्व ने बारा में जागरूकता फैलावी है। बेनो, आजीविका ने एक रोजगार भी है कपास। कपास केवल आ एक कृषि ने फसल नहीं बेनो, बल्कि आ दुनिया भर में लाखों किसानों, मजदूर जी कारीगर है ने टेक्सटाइल उद्योग थे कि जुड़ेला लग है, अणहरू आजीविका नो मुख्य साधन है।

ग्रामीण माता बहने सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम बैरानी बात FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7:30 होने को है। कृपया हमारी अगली उत्कृष्टता की प्रतीक्षा कीजिए।

आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
0: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
2: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: खेतीबाड़ी सुन वाला सगला श्रोतावा ने करसा भाई भेणा ने और दूर दराज गांव ढाणी में चौपाल सुनती सगली सखी सहेलिया ने मधु नायकरो घणो मोकलो राम राम और नरपत भाई आपने भी खूब खूब राम राम सा।
4: सारा किसान भाई ने नरपत सिंह रो राम राम और साथी मधु बहन आपने भी राम राम।
3: भाई रामा शर्मा के साथ ही भाई अब जो है आप बात कर लिया आज की जानकारी की। देखो खेती बाड़ी का माध्यम से आप खेती किसानी से जुड़ेड़ी बहुत चौकी चौकी बात अपना करसा भाई बहना के साथ और श्रोताओं के साथ करा चा ताकि वहां टेम सारू चौकी चौकी जानकारी मिल जाओ और आपकी जो खेती किसानी है एक प्रगति का नया आयाम पर ले जाओ।
4: बिल्कुल, क्योंकि हमारा रबी की फसल को बोलने से भी आगो जे तो आप इनमें किस प्रकार से खाद बीज को क्यों उपचार करा।

0: जानकारी दीशी आप
1: बिल्कुल रवि फसल से जुड़ेडी जो बुआई की बात छे खाद बीज उपचार की बात छे मैं सारी बात कर लिया आप आज ना
0: बिल्कुल जी रबी की फसल में गेहूं जो चना मसूर सरसों तारा मेरा अलसी जियान की प्रमुख फसल है और एक बुआई को समय भी आपने अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही रहे थे
1: बिल्कुल
0: रबी की फसल के लिए आपने समय पर बुआई करा खेत की उचित तैयारी भी करनी चाहिए आपने और जो गुणवत्तापूर्ण बीज छे ना वे भी लेना छे संतुलित खाद बीज भी रखना छे और बीज उपचार भी करना छे
1: बिल्कुल
0: सबसे पहले आप कर ला खेती की तैयारी
1: बिल्कुल और जल निकासी की जो व्यवस्था है ना वी को भी आप ना खास ध्यान रखना चाहिए अब खेत की तैयारी की जो आप बात बता रहे हो ना तो आप हमें गहरी जुताई करनी चाहिए जब पाटो लगा ट्रैक्टर कल्टीवेटर या रोटावेटर सु खेत की गहरी जुताई आप पाटा लगा करा चाहे तो इसे कहीं हो जाए कि माटी जो है ना भुरभुरी बन जाओ चे और माटी ना भुरभुरी करवा के बाद आप इन्हें समतल कर लेना चाहिए ताकि इसे कहीं बोलो कि जो भी आप बुवाई करना तो बाग जो बीजा को अंकुरण चाहे वो बेहतर तरीका से हो लो
0: साथ ही साथ ही की अपन मिट्टी की जांच भी करूंगा कि बुआई से पहले आप जो मिट्टी की जांच करवा ला तो वो अपन बहुत ज्यादा लाभदायक रहे थे क्योंकि मिट्टी की जांच में भी जो मौजूद पोषक तत्व है बाकी से इतना अपन पता चल जाए थे बी के अनुसार आप अभी में खाद और उर्वरक की मात्रा भी तय कर ले ला भाई कतरो डालना चाहिए अगर आप बिना मिट्टी की जांच कर लगातार एक ही प्रकार को जो आप मान लो उर्वरक डाल रहे थे तो बी में पोषक तत्वों में असंतुलन डाली यानी कमी आ जा ली जिसके कारण आपने जो फसल चाहिए बी में नुकसान होगा मतलब अच्छी फसल को नहीं होली
1: और खाद की जब आप बात कर रहे हो ना तो भैया तो आप रोज ही अक्सर बात करा चाह अपना किसान भाई बहना के साथ कि आपने हमेशा जैविक खाद को ही उपयोग करना चाहिए यानी कि खेत में अच्छी तरीका से सड़ेड़ी गोबर की खाद कंपोस्ट को ही आपने प्रयोग करना चाहिए और फसल का जो अवशेष है माने जलावा के बजाय रोटावेटर की मदद से माटी में मिला देना चाहिए ताकि माटी की जो उर्वरा शक्ति जब और दुगुनी बढ़ जाए
0: साथ ही साथ ही आपने जो बीज बो रहे थे बीज की अच्छी क्वालिटी भी लेनी चाहिए आप क्योंकि अच्छी फसल की शुरुआत ही अच्छा बीज से हो जाए किसान प्रमाणित और जो स्वस्थ बीज भी को चुनाव करना चाहिए यह बीज साफ अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए रोग कीट मुक्त होना चाहिए उचित अंकुरण क्षमता वाले भी बीज होना चाहिए जहां आप पिछले वर्ष में फसल में रखे बीज भी को प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि बीज गुणवत्ता अंकुरण की क्षमता कम हो जाएगी तो बीज अपन जांच कर ही बीज बोना चाहिए और अगर अलग अलग फसल का आप बोआ जाए किस्मवा के बीज अलग अलग हो तो अपन जो भी बीज है वो बढ़िया तरीका को लेना चाहिए बीज की गुणवत्ता अच्छी हो ले तो अपनी फसल भी अच्छी हो गई
1: अब जब आप जल निकासी की व्यवस्था की बात करें यहाँ तो खेत में पानी ठहरवा की जो व्यवस्था है बिना ठीक करनी चाहिए यानी कि पानी को ठहराव ज्यादा नहीं हो क्योंकि ज्यादा पानी को ठहराव अपना खेत में और अपनी फसल ने नुकसान पुगाव यानी कि जल निकासी की चौकी व्यवस्था होनी चाहिए और जल निकासी की चौकी व्यवस्था के साथ ही जब आप बुआई कर रहे हैं तो नमी भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए देखो संतुलन जो है ना जी आप रोटी बनावा सब्जी बनावा या कोई भी काम करा तो हर चीज को संतुलन हो जाए जी आटा के मायने कितना नमक आप डाल रहे हैं सब्जी के मायने कितना तेल मसाला आप डाल रहे हैं तो एक संतुलन को काम जो हुआ है ये खेती किसानी के मायने भी हर चीज में संतुलन को काम हुआ है तो बुआई करते टाइम आप में जो खेत है बी के मायने पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि बीजा को अंकुरण अच्छे से हो सके
0: बिल्कुल और आप के साथ साथ बुआई की जो उचित विधि भी प्रयोग करना चाहिए अपन कि जहाँ आप रबी की फसल बो रहा चाहते हो कतार बुआई में ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए जिसके बीज समान दूरी पर गिरे और पौधा की संख्या भी उचित रहे बोली बुआई से पहले अपन जो बीज ड्रिल से बुआई का जो उपकरण काम में ले रहे थे अभी की अच्छी तरह अपन जांच भी कर लेनी चाहिए बीज जो कत्ती गहराई पर और क्या कतार पर बोना चाहिए बाद भी अपन उचित दूरी निर्धारित करनी चाहिए जिससे की आपने बुआई की विधि भी अच्छी रहे बोली
1: बिल्कुल आप बहुत चौकी बात बताया छो नरपत भाई कई बार आप किसान का ही हो जाए कि जरूरत से ज्यादा बीज ना आग दे जाए कि भाई ज्यादा बीज ना कर ला तो ज्यादा उत्पादन मिले लो जबकि वो कहीं जाए एक उल्टो हो जाए भाई आप एक थाली कमाई ना मान लो एक तो एक आदमी रोटी खावे एक चार आदमी रोटी खावे तो किन्न पोषण मिले लो जो एक थाली कमाई ने एक आदमी खा रहे तो आई हालत अपना खेत की हो जाए आप कहीं जाए बीज ज्यादा नाग दे जाए तो पौधा ना बढ़वार पोषण मिली गुन पावे तो जितना विशेषज्ञ आपने सिफारिश करा चाहिए कि भाई इतना हेक्टेयर में इतनी बीज की मात्रा होनी चाहिए बी के अनुसार ही आपने आपने बीज नागना चाहिए
0: बिल्कुल सर बताया कि अगर बीज से ज्यादा नाग दिला तो भी जलो तो अगर आप गहरे जुताई कर दिला तो भी खराब
1: ऊपर
0: कर दिया तो भी खराब
1: तो
0: अपन ज्यादा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए
1: अब ध्यान अपन और भी रखना चाहिए देखो
0: बिल्कुल बताओ सर
1: देखो अभी श्राद्ध पक्ष चाल रहे है ना तो एक चौको सा आप पितरा को लोग मुझे सुन लिया
0: बिल्कुल सुनाओ सा

0: पितरा का ही चौका सा लोग भजन के सागे ही देखो, डॉक्टर अमन शर्मा जी भी आ गया है। तो नरपत भाई आपने जिम्मेदारी मैं संभालूं, आप ओड़खाण भी कराओ और यहाँ से जानकारी भी दिलाओ डॉक्टर साहब सू, कृषि का क्षेत्र में कृत्रिम जो बुद्धिमता चवी को आप बढ़तो उपयोग चवी पर की करिए जानकारी दे रहा है, तो आप यहाँ से चौका चौका प्रश्न पूछ जानकारी दिलाओ सा।
1: राम राम किसान भाइयों, आज आपने बीच जानकारी देवा के लिए स्टूडियो में पधारे छे डॉक्टर अमन शर्मा जी। जैसा आप आज जानकारी लेना कि कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता यानी एआई का बढ़ता हुआ प्रभाव के बारे में आज जानकारी ले, तो डॉक्टर साहब ठाकुमा के स्टूडियो में स्वागत है। राम राम जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात यह है कि आज कृषि के क्षेत्र में एआई का वर्चस्व एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार किसानों के लिए एआई कारगर सिद्ध हो सकता है। आज अपन देख रहे हैं कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ता है, विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना किसानों को पड़ना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह रहती है किसान को ये निर्णय नहीं ले पाता है कि किस समय में क्या चीज उगाई जाए। किसान भरोसे में बैठा रहता है कि बारिश होगी तो फसल होगी। सपोज कीजिए उस टाइम पे, आप मानो कल्पना कीजिए कि उस टाइम पे बारिश ना हो पाए तो किसान का जीवन संकट में जाता है, फसलों के सही दाम नहीं मिलते। एआई किस प्रकार भूमिका निभा सकता है? सबसे बड़ी बात यह है किसान एक निर्णय ले सकता है। अगर किसान को पहले ही ये चीजों का जानकारी मिल जाए कि हमारा कीटनाशक पत्तियां हैं, पत्तियों के ऊपर कीटाणु लग जाते हैं, बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी सामने आई है, ड्रोन्स और कैमरेज की मदद से अपन इमेज को कैप्चर करते हैं। उन इमेजेस को लेने के बाद में एआई बता सकता है आपको कि यहाँ पे यह समस्या है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए हम पहले ही एक सफल कदम उठा सकते हैं, उन समस्याओं को रोक सकते हैं। मिट्टी के अंदर क्या समस्याएं हैं, क्या इसमें कितनी नमी है, कितनी तरह की नमी नहीं है, तो सबसे पहले बड़ी भूमिका ये रहेगी कि किसान के लिए निर्णय लेने के लिए एआई का एक अहम कदम यह रहेगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, विभिन्न प्रकार के सेंसर्स भूमि में लगे हुए होते हैं, वो आपको सिग्नल देते हैं कि इस समय क्या सिचुएशंस अंदर की रही है। सेंसर्स जो कि बता पाएंगे आपको कि अंदर की सिचुएशन अभी क्या है, उस अकॉर्डिंग पहले ही हमारे पास में एक जानकारी होती है, जिस जानकारी के माध्यम से हमको पहले से ही आभास हो जाता है कि अभी इस मौसम के हिसाब से हम फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं। वेदर फोरकास्ट के अंदर क्या होता है, हमें जानकारी मिल जाती है मौसम की कि इस मौसम के अकॉर्डिंग अभी इस तरह की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें इस तरह से ढलना ठीक रहेगा, क्या सही है क्या गलत है, उसकी जानकारी हमें पहले ही प्राप्त हो जाती है। और पहले प्राप्त होने से क्या होता है, किसान सजग हो जाता है, और सजग होने से क्या होता है, वो चीजों से खुद को बचा पाता है और जो नुकसान है उससे निकल पाता है।
1: बहुत ही चौकी जानकारी दी डॉक्टर साहब की, कृषि का क्षेत्र में यही आप लोग की प्रकार से योगदान दे रहे थे। तो मैं डॉक्टर साहब अगला प्रश्न आपसे कर पूछाऊं कि आप जो किसान वर्ग से बेकी प्रकार से एआई को लाभ

0: ऐसा करें।
1: बीघावार सबसे बड़ी बात, किसान वर्ग को सबसे बड़ा फायदा ये होगा, उसका समय बचेगा। समय कैसे बचेगा? और कॉस्ट लागत अच्छी मिलेगी। जब फसलें खराबी होने बंद हो जाएंगी, प्लस उनका ये कीमत उनको टाइम से मिलेगी, जाहिर सा नुकसान किसान कई बार नुकसान भुगतता है। ये कह सकते हैं कि पत्तियों में कीड़े लग गए, या तो समस्या आती है कि पत्तियों में कीड़े लग गए या ओले पड़ गए, अतिवृष्टि अनावृष्टि, इस चक्कर में किसान बहुत कुछ भुगतता है। जबकि आज के समय के अंदर टेक्नोलॉजी अपने आप में इतनी पावरफुल है, वो पहले ही बता देगी आपको। AI का सबसे बड़ा योगदान यही रहता है कि आप पैटर्न्स, पिछली सारी जानकारी के हिसाब से किसान को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि इस टाइम पे मेरे को ये चीज निकल रही है मेरे खेतों के अंदर से, इतना पानी की जरूरत है, इतनी सिंचाई की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यही रहती है कि टेक्नोलॉजी आपको पहले समझ देती है, पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न्स के बारे में पता चलता है कि इस तरह के पैटर्न, मतलब कि इसमें कह सकते हैं कि अपन कि कैसे किस तरह की चीजें अपन पहले क्या देखा है, पुराना देखा है, पिछले 5 साल से वर्षा हो रही, जरूरी नहीं कि इस साल वर्षा हो, लेकिन पूरा एनवायरमेंट को समझते हुए, पूरा वातावरण को समझते हुए उसकी जानकारी टेक्नोलॉजी ले लेती है और वो किसान को देती है, जिससे वो पहले से ही सतर्क होकर डिसीजन लेता है। इससे उसका समय बचता है, समय बचता है तो उसका टाइम का जो कंज्यूम होता है बचता है, तो उसको अच्छी लागत मिलती है, मार्केट के अंदर जो चीज डिलीवर होनी चाहिए वो टाइम से डिलीवर हो पाती है।
0: बहुत ही मेहती जानकारी दी कि किसान वर्ग ने किस प्रकार से AI को लाभ ले सके। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बताओ कि जो आपने GDP से भी GDP में AI की कहीं भूमिका रहे हो जी?
1: सबसे बड़ी बात है GDP डिपेंड करती है हमारे कॉस्ट और टाइम के ऊपर कि क्या और वो सब कुछ कैसा आएगा। आप देखिए कि आज जो वर्ल्ड बैंक का सर्वे आया है, इसमें भारत के अंदर 15-20% GDP में योगदान कृषि का रहता है। कई बार थोड़ा सा अप एंड डाउन आ सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी फसलों के ऊपर, आप कितनी फसल हुई। कई बार फसल अच्छी होती है तो GDP का अच्छा रिजल्ट मिलता है, कई बार फसल कम होती है तो GDP का कम इस तरह का जाता है। लेकिन अगर इसके अंदर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को इंटीग्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्रोथ रेट बढ़ेगी, किसानों को अच्छा मुआवजा मिल रहा है, टाइम से फसल कट रही है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है, तो GDP के अंदर छलांग आना और एक अच्छी ऊंचाई छूना स्वाभाविक है।
0: बहुत ही मेहती जानकारी दी डॉक्टर साहब की GDP बढ़ावा के लिए AI की भी बहुत अच्छी भूमिका रहे हो जाए। लेकिन एक साथ ही साथ कि कौन सी चुनौतियां है जिससे आप निपट सका अपना देश का किसान AI के द्वारा?
1: सबसे बड़ी चुनौती किसान को यही आती है कि सारा खेल होता है कि सबसे बड़ी चुनौती तो किसान यही है कि कैसे किसान निपटे। सबसे बड़ी बात किसान पहले से ही टेक्नोलॉजी के लिए जागरूक रहे हैं। अगर आपको टेक्निकल जानकारी नहीं होगी, चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा कि इसको ड्रोन को कैसे यूज करना है, कैमरा कैसे यूज करना है, ड्रोन कैसे यूज करना है, ड्रोन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात ड्रोन की भूमिका ये होती है कि ड्रोन किसानों को खुद को कुछ मॉनिटर नहीं करना पड़ता है कि वो खुद किस रात के अंदर खेतों में जा रहा है, टहल रहा है, बैठ रहा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। किसान खुद अपने कमरे में बैठ के पूरा चेकअप कर सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है किसान सो गया, कोई टेक्निकल वहां पे सेटअप नहीं है, कई बार जानवर घुस जाते हैं, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना परमिशन के अंदर घुस जाते हैं, पता ही चलता, फसलों को नुकसान पहुंचता है। दूसरी चीज ये होती है कि एकदम बारिश आ गई या क्या सिचुएशंस बैठ रही हैं, कुछ किसान को जानकारी नहीं होती। लेकिन अगर हमने वहां पर ड्रोन्स लगा दिए हैं, IoT का सिस्टम प्रॉपर सेटअप तैयार कर दिया है, तो हमें क्या होगा, बेसिकली पता चलेगा कि इस टाइम पे रात को 12 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, आजकल तो सिस्टम इतना एनहांस हो गया है कि आप देख सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि किसान ये कहता है बिजली नहीं आ रही है, अब बिजली नहीं आ रही है तो फिर ड्रोन भी काम नहीं करेगा, ना IoT सिस्टम्स काम करेंगे। अब आज के टाइम के अंदर ऐसे ऐसे सेटअप तैयार हो गए कि आपको बैकअप बैटरीज वाले सेटअप्स मिलते हैं जिसके अंदर 24 आवर्स से लेके 3-4 दिन तक अगर बिजली चली भी गई है तब भी आपका सिस्टम जो है वो डाउन नहीं होगा, वो पूरी तरह से काम करता रहेगा, क्योंकि उसको बैकअप जो है वो बैटरी से मिलेगा। और जब बिजली आ रही है तब आप अपने बैटरी वाले सिस्टम को दोबारा चार्ज कर सकते हैं। इन चुनौतियों से किसान निमट सकता है। एक सिक्योरिटी, एक सुरक्षा की भूमिका के अंदर टेक्नोलॉजी का एक अहम योगदान रह सकता है, जिससे किसान सुरक्षित रह सकता है और अपने नुकसान से निजात पा सकता है।
0: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँ कि कृषि क्षेत्र में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसके लिए आप किसानों ने कहीं संदेश देना चाहोगे?
1: सबसे बड़ा संदेश तो मैं किसानों को यही दूंगा कि किसान जो हैं सबसे पहले एक अडॉप्टिव मेंटेलिटी को अप्रोच करें। अडॉप्टिव मतलब बहुत सारे किसान गाँव ग्रामीण वर्ग से आते हैं, ज्यादातर सारा काम गाँव के अंदर ही होता है इसका, तो आप टेक्नोलॉजी से घबराएं नहीं, यही से घबराएं नहीं, ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं, ये सब नहीं सीख सकते, इसके ट्रेनिंग सेशंस वगैरह होते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप इस चीज को अडॉप्ट करें अडॉप्ट करने से इसके फायदे ही फायदे होंगे, नुकसान नहीं होंगे। आपके पास में आपके आपको फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे क्योंकि आपके पास एक सिक्योरिटी सिस्टम बन गया, एक सुरक्षा का पूरा सेटअप तैयार हो गया है, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के अच्छे

0: आपको अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छा आपको टेंशन नहीं रहेगी किसी तरह की कि भाई मेरे खेत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसी चीजें चल रही हैं, है ना। तो टेक्निकली सबसे पहले अडॉप्टिवली टेक्निकली, दूसरी चीज आप उसको खुद तो सीखे ही, साथ ही साथ आपके वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो अपने स्टाफ लगा रखा है, उनको भी इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दें। इससे क्या होगा, हर एक वर्कर जो ट्रेन होगा वहां पे, जो आपने स्टाफ लगाया है, हर एक पूरी तरह से टेक्निकली साउंड टीम आपकी डेवलप हो, जिससे क्या होगा कि आपके नुकसानों के चांसेस ना के बराबर रह जाएंगे, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा संदेश मैं आपको ये देना चाहूंगा कि आप इससे घबराएं नहीं, इससे भागे नहीं, इसको सीखें। आप कई बार ये भी होता है आपको किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया, फिर भी अगर आप चाहें तो अपना खेत अपना मॉनिटर कर सकते हैं। कैसे, आपके मोबाइल के अंदर आप क्लाउड पे अपने कैमरे से देख सकते हैं कि मेरे खेत में इस समय क्या हो रहा है, क्या प्रॉपर तरह से उसमें खेती हो रही है, क्या प्रॉपर तरह से उसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही है। उन समस्याओं को, समस्याओं से निजात पाने का सबसे बड़ा तरीका ये नहीं होता कि बेसिकली कि उसमें कीड़ा लग गया, आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें कीड़ा लग गया। जाहिर सी बात है कि आपके पास में कैमराज है, वहां पे कैमरे से इमेजेस निकाली गई, इमेजेस को स्कैन करके बीमारी का पता चला गया, बीमारी का पता लगा कि आपने तुरंत समाधान कर दिया, तो आप एक भयानक नुकसान से निजात पा सकते हैं, जिसकी भूमिका अहम रहेगी। कैमरेज की भूमिका बहुत ही अहम रहती है और ड्रोन्स की भूमिका बहुत ही अहम रहती है, दोनों की भूमिका बहुत अहम रहती है। तो सबसे बड़ा इसके अंदर मैं यही कहना चाहूंगा कि अब इसमें कैसे आप सीखेंगे, इसके लिए आप कुछ ऐसे ट्रेंड प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि प्रोफेशनल्स काफी एक्सपेंसिव हैं तो यूट्यूब के ऊपर जाके, इवन अब तो भाषा का कोई बैरियर नहीं रह गया है, सभी भाषाओं के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं कि आप अपने आपने ड्रोन्स लगाए, आपने आईओटी का सिस्टम सेटअप कर लिया, आपने कैमरे लगाए, कैसे यूज करना है, उसके ट्रेनिंग सेशंस भी आपके यूट्यूब ट्यूटोरियल्स पर मौजूद हैं। प्लस आप चाहें तो इसके लिए अगर आप प्रोफेशनल्स को हायर भी करते हैं तो जाहिर सी बात है सारा एक किसान, इवन किसान वर्ग चाहे तो अपना खुद का एआई एसोसिएशन, एआई फार्मर एसोसिएशन बना के, ये मेरा एक सुझाव है, एआई फार्मर एसोसिएशन बना के अपना एक पूरा ग्रुप तैयार करें, और पर्टिकल वन टू वन अगर आप सेशन लेते हैं तो आपको कॉस्टली पड़ सकता है। इसके लिए आप क्या करें कि पूरा एक ग्रुप तैयार करें अपना, किसानों के 100 किसानों का, 1000 किसानों का, 500 किसानों का, और प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस आप प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही कम कॉस्ट का रहेगा। आपकी इसमें जो सीखने के लिए प्रोफेशनल आएगा वो बहुत ही कम रेट के अंदर आपको मिलेगा, और आपका कोई नुकसान की संभावना ना के बराबर रहेगी, और आपका भविष्य इसमें सिक्योर रहेगा, और आपका ही नहीं आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप एक उनके लिए एक निर्णायक भूमिका एआई की रहेगी। तो ये सब समझने के लिए सबसे पहले अपन प्रोफेशनल हायर करें, या अगर प्रोफेशनल का भी समझ नहीं आया तो अपन यूट्यूब पे हायर करें। इवन अब तो एआई इन फार्मर्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, ये आप चाहें तो ऑनलाइन देख सकते हैं। आजकल इंटरनेट गांव में ही पहुंच गया है, गांव शहरों सब जगह पहुंच गया है, इवन मोबाइल के अंदर भी आप बैठे बैठे खुद इस चीज की लर्निंग ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कि बुजुर्ग लोग होते हैं, चैलेंजिंग होता है, उनको नई चीजें समझ में आती हैं कि ये क्या आ गया, ये हम क्यों करें, इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। देश को समझने के लिए सबसे बड़ा बात यह कि हमारे देश के अंदर आज किसान एक बहुत बड़ी चुनौतियां फेस कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यही होती है, उसको वो हमेशा यही कहता है कि हमें नुकसान हो गया, तो उस नुकसान से कैसे निजात पाएं। नुकसान का समाधान यही है कि हम उस नुकसान से बचने के लिए हम उसको नुकसान होने ही ना दें, पहले से हम ऐसा समाधान रखेंगे नुकसान ही ना हो। तो वो कैसे होगा, वो इसी प्रकार से होगा, इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में आती है। इमेज प्रोसेसिंग क्या करती है, आपके पूरे क्षेत्र के अंदर जो जहाँ पे खेत है आपका, वहां पे कोई छोटा सा कीड़ा लग गया तो वो क्या करेगा, या कोई बीमारी लग गई, आपको कैसे पता चलेगा, इतना बड़ा खेत है, एकड़ के अंदर, करोड़ों एकड़ के अंदर आपका खेत है, आपको कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ पे कीड़ा लग गया। उसके लिए जरूरी यही है, वहां पे प्रॉपर ड्रोन चलते हैं, इमेजेस कैप्चर करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग के माध्यम से उस बीमारी का पता लगाते हैं, और उस बीमारी के लिए आप फिर प्रॉपर कौन सा कीटनाशक यूज करना है वो आपको एआई ही सजेस्ट करेगा, एआई आपको बताएगा कि इस स्थान पे ये कीटनाशक आप लगा दो, तो आप कितने बड़े नुकसान से बच सकते हैं, ये सोचने की सबसे ज्यादा जरूरत किसान को रहेगी।
1: बहुत ही मेहती चौकी जानकारी दी कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में, कि एआई को जो बढ़ते हुए प्रभाव है वो आपने किसानों के लिए किस प्रकार से लाभदायक दे, बहुत ही चौकी जानकारी दी। डॉक्टर साहब थे मगर स्टूडियो में पधारा था, आपको घनो धन्यवाद।
2: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
3: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
2: वो कैसे?
3: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
2: कॉल 1800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
4: भाई आज को जो आधुनिक युग है तो खेती किसानी क्यों ही आधुनिकता से पाचे रहे, इन्हें भी नई नई तकनीक।

0: की नई नई आधुनिकता खेती किसानी का मायना आ गई है। तो एआई की ये किसाना का ताई एक चौकी भूमिका निभा रहे हो, ई विषय माथे आप जानकारी दिया डॉक्टर अमन शर्मा जी, और जानकारी दिलाया आप नरपत भाई बहुत चौका चौका प्रश्न पूछ रहे। तो डॉक्टर साहब ने और आपने दुनिया धन्यवाद स्वरूप सुनावाया गीत।
1: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
2: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
1: वो कैसे?
2: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
1: कॉल 1800 1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।

0: एक बार आओ जी जवाई जी पावना भाई, जब जमाई आओ है ना सासरा कमाए ना, तो पूरा सासरा का लोग बाकी मान मनवार में लाग जाया करे है। तो ये चौका सा लोकगीत के साथ ही आज खेती बाड़ी में इतनो ही। मधु नायक
1: और नरपत सिंह ने
0: दियो आज्ञा, चाला और करा राम राम सा।
2: खेती बाड़ी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं अनजाना अनजानी फिल्म से, विशाल ददलानी और शिल्पा राव की आवाजों में। बोल होंगे नीलेश मिश्रा के और संगीत विशाल शेखर का।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सुनेंगे दिल्ली 6 फिल्म से मोहित चौहान की आवाज में, बोल होंगे प्रसून जोशी के और संगीत ए आर रहमान का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम जारी रहेगा। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के संदेश के बाद।

0: Akashwani. On the eve of the 94th anniversary of Indian Air Force, we now bring you a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishist Seva Medal, Ati Vishist Seva Medal.
1: भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश।
2: नमस्कार, भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सारे वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूं। वायुसेना दिवस हमारी उस गौरवमयी यात्रा का उत्सव है जो अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की नींव पर रची गई है। सन 1932 में मात्र 4 वापिती विमानों से उड़ान भरने वाली हमारी वायुसेना आज एक अत्यंत सक्षम, नेटवर्क सेंट्रिक और बहुआयामी फोर्स बन चुकी है। आज की दुनिया अस्थिर, अनिश्चित और जटिल दौर से गुजर रही है। हितों और परिस्थितियों के लगातार बदलने के इस माहौल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए संघर्ष उभर रहे हैं। इन संघर्षों में हमने देखा है कि वायु शक्ति राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन है। देश की वायु शक्ति का प्राथमिक माध्यम होने के नाते भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर रीअफर्म द पिवोटल पावर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशंस डेमोंस्ट्रेटिंग आवर कैपेबिलिटी and capacity to defend our sovereignty. Through major milestones this year, including exercise Vayu Shakti, various bilateral exercises, Dronathon, and the ongoing historic multilateral air exercise Tarang Shakti, we are actively testing our combat readiness and rapidly absorbing niche technologies into our operational plans. Apni marak shamta ke alawa, Bharatiya Vayu Sena ne sankat ke samay mein हमेशा आगे बढ़कर देश और मानवता की सेवा की है। चाहे देश के विभिन्न प्रदेशों में आई भयंकर बाढ़ के दौरान नागरिकों की सहायता हो या जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाना हो, हमारे वायु योद्धाओं ने हमेशा कौशल और साहस का परिचय दिया है। हमारी यह प्रतिबद्धता हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है। नेपाल और युगांडा से लेकर वेनेजुएला, फिलीपींस, मेडागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा और जमैका तक हमारी वायुसेना ने एचएडीआर मिशनों के माध्यम से सेवा के इसी संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाया है, जो सेवा परमो धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अंकुर ट्रेनर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अस्त्र आकाश तथा ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणालियां इसी संकल्प का प्रमाण है। आत्मनिर्भरता की इस नींव पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाना भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी फाइंडिंग इट्स वे इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर फंक्शनिंग। आवर विजन इज टू बिल्ड एन एआई ऑगमेंटेड फोर्स

0: where technology supports us, but humans remain in command. Our roles and tasks naturally take us beyond the confines of Earth's atmosphere, as space is a natural extension of the air domain. Our deepening partnership with ISRO, including our contribution to Gaganyaan mission, reflects this commitment. These capabilities form an integral part of our vision for 2047. Technology is only an enabler. The foundation of decisive victory has always been in the unity of purpose. Modern wars are not won by the strength of a single service, but through the combined strength of the entire nation. For Indian Air Force, jointness is the only way forward. Our endeavor is to ensure that the reach, speed, and precision of air power are fully harnessed so that its effects are felt across every dimension of the battle space. इस अवसर पर मैं अपने आदरणीय एयर वेटरन्स को नमन करता हूं। आपकी दूरदृष्टि, समर्पण और मार्गदर्शी नेतृत्व ने ही इस सशक्त भारतीय वायुसेना की नींव रखी है, जो आज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। साथ ही मैं अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य के मार्ग पर अपनी प्राणों की आहुति देकर तिरंगे का मान रखा। आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज that through every challenge, the unwavering support and encouragement of our fellow citizens have been a source of strength for the Indian Air Force. Desh ki raksha karna hamara kartavya hai, aur aap sabhi ka aashirwad hamari sabse badi taakat hai. Ant mein, hum samast vayu yodha, Bhartiya Vayu Sena, achuk, abhed, evam sateek ki avdharna ka smaran karte hue, yeh sankalp lete hain ki rashtra ki raksha, uski samprabhuta, और अखंडता के लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे तथा अपने आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम पर अडिग रहेंगे। जय हिंद।
1: ऑन द ईव ऑफ द 94th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स यू वर लिसनिंग टू अ मैसेज बाय द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: अभी आप भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं थ्री इडियट्स फिल्म से। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, बोल है स्वानंद किरकिरे के और संगीत शांतनु मोइत्रा का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गाना आप सुनेंगे आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना मोहापात्र की आवाजों में, बोल है कुमार की और संगीत विशाल और शेखर का।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं कल होना हो फिल्म से सोनू निगम उदित नारायण साधना सरगम सुजाता और शंकर महादेवन की आवाजों में बोल होंगे जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

श्रोताओं, इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। रात्रि के 8:30 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड के साथ आगामी क्रिकेट दौरे के लिए भारत और भारत ए टीम का ऐलान। भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में वापसी। प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और आर्किटेक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा थरुण मन्नेपल्ली दूसरे दौर में पहुंचे।

0: तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू किया जाए क्रिकेट के मैदान की खबरों के साथ। भारत ने कल वेस्टइंडीज को पहले टी20 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज के 172 रन के लक्ष्य को भारत ने कप्तान श्रेयस अय्यर की शानदार शतकीय पारी की बदौलत 15वें ओवर में ही हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर और एक गेंद में 171 रन बनाए थे। मेहमान टीम के लिए शेरफन रदरफोर्ड ने सर्वाधिक 56 और कप्तान शाई हुक ने 52 रन की पारी खेली थी। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत इस मैच में जीत हासिल कर ली, जिसमें सबसे अहम योगदान भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का रहा। और इस मैच पर और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी विशेष। शुरुआत में लगा था कि लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा है या फिर फाइटिंग टोटल कहा जा सकता है इसको, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी कप्तान साहब ने दिखाई बहुत छोटा नजर आया ये लक्ष्य।
1: बिल्कुल शक्ति, भारतीय टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के विकेट भारतीय टीम ने जल्दी गवा दिए, लेकिन उसके बाद ईशान किशन ने 27 गेंदों पर 37 रन बनाकर पारी को संभाला, लेकिन श्रेयस अय्यर ने 43 गेंदों पर डोमिनेटिंग 102 रन बनाए जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे। 237 का उनका स्ट्राइक रेट रहा और किसी भी मौके पर उन्होंने ये नहीं लगने दिया कि भारतीय टीम इस मुकाबले में पिछड़ रही है, हमेशा इंडिया को फ्रंट फुट पर रखते हुए मुकाबले में भारत को जीत दिलाई।
0: जी बिल्कुल, और श्रृंखला का अगला मुकाबला अब शुक्रवार को खेला जाना है, जहां भारतीय टीम की नजर होगी कि इस मैच को भी जीता जाए रांची में और अपनी बढ़त को दोगुना करते हुए श्रृंखला में अपनी पकड़ और मजबूत की जाए। और अब बात एक और टी20 श्रृंखला की तैयारियों की, जहां न्यूजीलैंड की आगामी दौरे के लिए भारत और भारत ए क्रिकेट टीम की घोषणा कल कर दी गई। इस दौरान भारतीय टीम मेजबान न्यूजीलैंड के साथ 5 टी20 मैच खेलेगी, जबकि भारत ए टीम न्यूजीलैंड ए के साथ 3 मल्टी डे मैच खेलेगी। ये मल्टी डे मैच 4 दिन के होते हैं, एक दिवसीय और टेस्ट श्रृंखला के लिए टीम का चयन बाद में किया जाएगा। तो आइए पहले जानते हैं कि किन किन खिलाड़ियों को इस दौरे में टीम में स्थान मिला है।
2: भारतीय टीम की कमान

0: श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है, जबकि तिलक वर्मा टीम के उपकप्तान होंगे। टीम के चयन का सबसे खास पहलू 36 वर्षीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की 4 साल बाद भारतीय टीम में वापसी है। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए पिछले 2 शानदार आईपीएल सीजन खेले हैं। वरुण चक्रवर्ती की भी चोट के बाद टीम में वापसी हुई है। टीम में श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और तिलक वर्मा को मौका मिला है, जबकि अक्षर पटेल, शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर की भूमिका में हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्षदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव के कंधों पर होगी। दोनों टीमों के बीच श्रृंखला का पहला मैच 22 अक्टूबर को और दूसरा मैच 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। तीसरा मुकाबला 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में, चौथा 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में और अंतिम मैच 1 नवम्बर को हैमिल्टन में खेला जाएगा। चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड ए के साथ 3 मल्टी डे मैच के लिए 15 सदस्यीय भारतीय ए टीम की कमान ध्रुव जुरेल को सौंपी है, जबकि ऋषभ पंत की उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी। उनके अलावा टीम में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पंडिकल, रविचंद्रन, वॉशिंगटन सुंदर, औकीब नवी, आकाशदीप, अंशुल कंबोज, मानव सुधार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौर और मुकेश कुमार टीम में शामिल हैं। दोनों टीमों के बीच पहला 4 दिन का मल्टी डे मैच 24 से 27 अक्टूबर तक लिंकन में खेला जाएगा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो पिच सेट हो चुकी है एक और दौरे के लिए, जहां भारतीय टीम न्यूजीलैंड की धरती पर उनके साथ एक लंबी श्रृंखला खेलेगी। इसमें T20, टेस्ट और एक दिवसीय मैच शामिल होंगे, लेकिन इस पूरे श्रृंखला का जो आउटकम रहा, इस पूरी टीम सिलेक्शन का जो आउटकम रहा, वो है भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी। विशेष लगातार ऐसी मांग थी कि गेंदबाजी के मोर्चे पर कुछ ओवरहॉलिंग की जाए टीम के साथ। क्या भुवी की स्विंग, गेंदबाज की टीम में वापसी उसी का संकेत है?
2: बिल्कुल शक्ति, उसी का संकेत है, क्योंकि वनडे टीम हो या T20 टीम हो, गेंदबाजी में भारतीय टीम लगातार संघर्ष करती नजर आ रही थी। हालांकि तब जब जसप्रीत बुमराह टीम में है तब थोड़ी सी दृढ़ता देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद कोई भी गेंदबाज अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहा था। भुवनेश्वर कुमार लगातार 2 सीजन से आरसीबी के लिए शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। 16 मुकाबलों में 28 विकेट 2025 में लिए उन्होंने और 14 मुकाबलों में 17 विकेट 2026 में उन्होंने आईपीएल में लिए, तो शानदार उन्होंने गेंदबाजी करी है। और शुभमन गिल कप्तान जो है भारतीय टीम के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि गेंदबाजी के मोर्चे पर हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। तो भुवनेश्वर कुमार को T20 टीम में चुना गया है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि वनडे टीम के प्लान्स में वो कितने देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप नजदीक है और भारतीय टीम अपनी गेंदबाजी को और मजबूत करते हुए देखना चाहेगी।
1: जी बिल्कुल चाहेगी, और 36 वर्षीय खिलाड़ी हैं, शानदार उनके पास कला है गेंद को स्विंग कराने की, और भुवनेश्वर कुमार से उम्मीदें होंगी कि वो टीम को एक अनुभव के साथ एक शानदार संतुलन दे, जिसकी इस टीम को जरूरत है। और खासकर भारत जो नए खिलाड़ियों को गेंदबाजी क्रम में मौका देने की कोशिश कर रहा है, वहां पर 2022 नवंबर में आखिरी बार देखे गए थे न्यूजीलैंड में T20 खेलते हुए, वापस वहीं से मौका होगा 2026 में अपने अभियान को शुरुआत, एक नई शुरुआत देने का। और अब कार्यक्रम में बात की जाए एशियाई पैरा खेलों की, जिनकी तैयारियां अब तेज हो गई हैं। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान की आईची नगोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते हैं। वहीं पैरा टेनिस टेबल टेनिस खिलाड़ी भविना ने 2018 और 2023 एशियाई पैरा खेलों में 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। भारतीय पैरालंपिक समिति कल खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से की उपस्थिति में एक विशेष समारोह में भारतीय दल को औपचारिक रूप से विदाई देगी।
2: एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब भारतीय खिलाड़ी एशियाई खेलों के मंच पर अपना करिश्मा दिखाने के लिए तैयार हैं। इन्हीं में से एक बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम आज स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुकांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स कैन में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने 100 पदकों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है।
3: थैंक यू बहुत मोटिवेटिंग था एक्चुअली. कभी सोचा नहीं था मैंने कि 100 मेडल्स जीतूंगा या ऐसा कुछ प्लान नहीं था. इनिशियली तो बस खेलता जा रहा था और हालांकि काफी टाइम से मैं मतलब काउंट भी नहीं करता था कि कितना है क्या है. बट जबकि मैं अभी एशियन गेम्स के लिए जा रहा हूँ, ये तीसरा एशियन गेम्स है मेरा, तो जब मैं ऐसे ही स्टैट्स देख रहा था

0: चला कि मैं मतलब 19 में हूँ और कुछ ही मेडल्स के बाद मेरा 100 मेडल हो जाएगा, तो काफी मोटिवेटिंग था। 100 मेडल्स का माइलस्टोन कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा सपना था, ऑलमोस्ट 10 साल लगे इसके लिए, बट वही मैं खुश हूँ उसके बाद।
1: जी सुकांत, बेहद खुशी का पल है। हालांकि हम पहला सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप SL4 और SU5 पैरा बैडमिंटन कैटेगरी में खेलते हैं, हम चाहेंगे कि आप श्रोताओं को जरूर बताएं कि बैडमिंटन में इन पूरी कैटेगरीज को किस तरह से तय किया जाता है।
0: कैटेगरी के बारे में बात किया जाए, SL4 स्टैंडिंग लोअर और जिनमें पार्शियली डिसेबिलिटी होता है, दैट एटलीस्ट कम इन स्टैंडिंग लोअर 4। सो पारा बैडमिंटन में कुल मिला के 6 कैटेगरीज है, उसमें 2

0: बारह बैडमिंटन में कुल मिला के छह कैटेगरीज है, उसमें दो व्हील चेयर की है, दो लोअर लिम्ब की है, एक अपर लिम्ब का है जिनका, और एक शॉर्ट स्ट्रेचर वालों का है। सो ऐसे छह कैटेगरीज होता है। SL3 SU5 में जो आपका मैक्सिमम नंबर अलाउड होता है वो 8 होता है, मतलब आप दो SL4 के एथलीट खेल सकते हो या फिर एक 3 का और एक 5 का एथलीट मिला के खेल सकते हो।
1: जी बिल्कुल, तो एक अपने में ही काफी अलग कैटेगरी जिसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। इसी के साथ ही सुकांत, हम ये भी जानना चाहेंगे कि भारत ने पैरा खेलों में अपने प्रदर्शन में बीते कुछ समय में उल्लेखनीय प्रगति की है, इसके लिए आप देश में बन रहे नए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना खास मानते हैं?
0: पारा एथलीट के लिए काफी इम्प्रूवमेंट है पिछले कुछ सालों में, मुझे लगता है कि काफी डेवलपमेंट है और आने वाले दिनों में और जितने भी स्टेडियम बन रहे हैं वो डिसेबल फ्रेंडली बन रहे हैं, और वो एक नजरिया रखा जाता है उनका कि पारा एथलीट भी कैसे यहाँ तक आके ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा चीज है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है सारे स्टेट्स में, वैसे वैसे वो अवेयरनेस भी बढ़ रही है कि यहाँ पे पारा एथलीट भी ट्रेन कर सकते हैं, तो उनके हिसाब से भी अरेंजमेंट की जाए, तो काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बेटर हो जाए।
1: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सुकांत, और जैसा कि हमने 2024 में देखा जहां पैरिस ओलंपिक्स के बाद जो पैरा ओलंपिक्स हुए वहां पे खिलाड़ियों का प्रदर्शन और मेडल टैली और अधिक गौरवान्वित कर रही थी भारत को, तो उम्मीद यही है कि इस बार एशियाई खेलों के बाद जब हमारे पैरा खिलाड़ी मैदान पे उतरेंगे तो उनसे और बेहतर और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होने वाली है।
2: बिल्कुल सुकांत, और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 पैरा ओलंपिक्स के अनुभव आप हमारे साथ साझा करें जिन्होंने आपको आगे टूर्नामेंट्स में आगे बढ़ने की काफी मदद की।
0: हालांकि मैं जब हमारा पारा बैडमिंटन का डेब्यू हुआ था 2020 में टोक्यो में, तब मैं बहुत छोटे से मार्जिन से क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत मेहनत करके 2024 तारीख के लिए क्वालिफाई किया था, और मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं हाईएस्ट लेवल के कंपटीशन में वहां पे जाकर कम्पीट करूँ। पैरालंपिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पर दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी आते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आते हैं, तो वहाँ पे कम्पीट करना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं कहूंगा कि वहाँ पे जो सीख मिला मुझे या वहाँ से जो चीजों का जो बोलते हैं कि पैरालंपिक्स जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजों में रियलाइज होता है कि आप और कहाँ कहाँ पे अपने आपको डेवलप कर सकते हो, तो वो सबके लिए मैं बहुत खुश था और इंडिया को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करने मेरे लिए प्राउड मोमेंट था।
2: बिल्कुल सुकांत, और हम ये भी चाहेंगे कि आप भारत को और भी गौरव के मौके देते रहें। इसी के साथ हमारा आखिरी सवाल यह है कि 2026 एशियाई खेलों का मंच जो है वो तैयार हो चुका है, आप किस टारगेट को अपने सामने रखकर मैदान पर उतरने वाले हैं?
0: नेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स में मेरा अभी तक एक भी गोल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके मैं अपना पहला एशियन गेम्स का गोल मेडल जीतूं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सुकांत, और आपको शुभकामनाएं एशियन पैरा गेम्स के लिए।
1: जी बिल्कुल, और इसके साथ ही इस बीच एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान अमन शहरावत ने भी आकाशवाणी से विशेष बातचीत की। इस दौरान कुश्ती के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पहलवान ने अपनी जीत पर बेहद खुशी व्यक्त की और अपने कोच तथा सहायक स्टाफ का धन्यवाद किया।
3: बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ गोल्ड लेके आए हैं तो, क्योंकि पिछली बार ब्रॉन्ज मेडल रहा था, तो अब की बार हमने पूरी मेहनत की और गवर्नमेंट ने भी काफी सपोर्ट किया, हमें विदेश से कोच अप्रूव करवाया और हमें विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा, और इसके लिए अच्छा ही रिजल्ट आया हमारा एशियन गेम्स में। फीलिंग ये रही कि जो इतने सालों की मेहनत है वो सफल हुई, और जो मेरी कोचेज जो मेरे स्टाफ उनकी भी मेहनत सफल हुई।
1: तो ये थे अमन शहरावत जिन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में भारत के लिए कुश्ती में एक शानदार स्वर्ण पदक जीता है और ओलंपिक में भी कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी हैं और कुश्ती के जगत में एक उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और बात बैडमिंटन की, जहां आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए चीन के पांचवी वैधता प्राप्त हे जी टिंग और रेन जियांग यू को 10-21, 21-18 और 22-20 से हराया। पुरुष सिंगल्स में थरुण मन्नेपल्ली ने डेनमार्क के जोहनसन मैक्सन को 21-16, 21-14 से हराया। हालांकि एचएस प्रणॉय को डेनमार्क के एंडर्स एंटोसेन से 10-21 और 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले कल महिला सिंगल्स में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने कनाडा की वेन यू झांग को हराया था। तन्वी शर्मा ने भी ताइवान की चियू पिंचियान को हराया।

था और अब से कुछ देर बाद जो है भारतीय मेंस सिंगल्स खिलाड़ी कई और मुकाबले खेलेंगे और रौनक चौहान को भी आज मेंस सिंगल्स में हालांकि हार का सामना करना पड़ा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुवाई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है। लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व

0: व्यक्तित्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई। इसमें 3 भारतीय नागरिक थे, उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर

0: ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
1: दिस अलायंस इज सो इम्पोर्टेंट। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव एंड होम्स बाय मेकिंग इट चीपर, मोर रिलायबल एंड इजियर टू कनेक्ट टू ग्रिड। We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
0: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि आईएसए प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
2: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में आईएसए का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
4: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
5: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
4: एंड द बैंक रेट टू 5.75%।
3: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और ईएफटीए के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुवाई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है।

0: रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुवाई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 9 बजने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: करी।
1: कोई प्यार की देखे जादूगरी, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में कोहिनूर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अनारकली फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी की बोल, सी रामचंद्र की धुन।

0: दीवानापन है।
1: ये मेरा दीवानापन है, यहूदी फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। अभी आप सुन रहे थे, शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
2: एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओरे हे।
2: संगीत के साधक।
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
2: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
6: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
5: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 सिर्फ विविध भारती पर।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
7: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है।

0: हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु है डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
0: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे नूरजहां फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बतायनी के बोल थे, रोशन का संगीत था। इस गाने के पहले आपने सुना था मुगले आजम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज थी, शकील बतायनी के बोल थे और नौशाद की तर्ज थी। अब आइए सुनते हैं 20

बजकर और साथियों सखियों की आवाजों में शब्दकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे सलील चौधरी। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

जबकि संगीत तकरीबन चोर में बदलता जा रहा है। गजलों का वो सुनहरा दौर, गजलों की वो रोशन महफिलें बार बार याद आती हैं। हमारे जहन में अक्सर ये

दरअसल ये जमाना तेज रफ्तार हो गया, लोगों के भीतर वो सब्र नहीं रहा जो गजल सुनने के लिए लाजमी है। आइए आज के इन लम्हों को यादगार बना दें अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर की याद से।

अख्तरी भाई फैजाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में हुआ था। बचपन से संगीत की तरफ रुझान था, परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन चाचा ने साथ दिया। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सरंगी के उस्ताद ईमान खां और अता मोहम्मद खां से संगीत की शुरुआती तालीम ली। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। बचपन की एक बहुत ही यादगार घटना है, उन दिनों अख्तरी भाई सही सुर नहीं लगा पाती थीं। उनके गुरु ने इसके बारे में कई बार सिखाया और जब वो सीख नहीं पाई तो डांट दिया। उसके बाद बेगम अख्तर रोने लगी और कहा, हमसे नहीं बनता नाना जी, मैं गाना नहीं सीख पाऊंगी। तब उनके उस्ताद ने कहा, बिटिया इतने में हार मान ली? नहीं बिट्टू, ऐसे हिम्मत नहीं हारते मेरी बहादुर बिटिया, चलो एक बार फिर से सुर लगाने में जुट जाओ। उनकी ये बात सुनकर बेगम अख्तर ने रियाज शुरू किया और सही सुर लगाए।

तीस के दशक में जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो बेगम अख्तर के सामने कोलकाता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने अपनी फिल्मों में अभिनय की पेशकश की। इस तरह सन 1933 में बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद मशहूर

बादशाह, नल दमयंती जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद मशहूर निर्देशक महबूब खान ने उन्हें सन 1942 में आई अपनी फिल्म रोटी की नायिका बनाया। इस फिल्म में चंद्रमोहन और शेख मुख्तार जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था और फिल्म के तकरीबन 6 गीत बेगम अख्तर की आवाज में रिकॉर्ड किए।

1945 में जब बेगम अख्तर की शोहरत अपने शबाब पर थी, तब उन्होंने इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया और अख्तरी बाई फैजाबादी बेगम अख्तर बन गईं। वो गायकी छोड़कर पर्दा नशी हो गईं। उन दिनों में वो बीमार रहने लगीं। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी की एक वजह ये है कि वो अपने पहले प्यार यानी गायकी से दूर हैं और उनके शौहर ने उन्हें प्रेरित किया। सन 1949 में एक बार फिर वो गायकी की दुनिया में लौटी और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाना गाने लगी।

रेडियो में गाना शुरू हुआ तो बेगम अख्तर संगीत सम्मेलनों में जाने लगी। इस बीच फिल्मों में भी वापसी हुई। महान संगीतकार मदन मोहन के कहने पर बेगम अख्तर ने 1953 में प्रदर्शित फिल्म दाना पानी का एक गाना गाया।

सन 1954 में उन्होंने फिल्म एहसान का एक गाना गाया। सन 1958 में सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में भी

बीगम अख्तर मदन मोहन को तब से जानती थीं, जब वो लखनऊ रेडियो स्टेशन पर थे। बीगम अख्तर दिल्ली आई हुई थीं और उन्होंने रेडियो पर मदन मोहन का एक गाना सुना। फिर आधी रात को बीगम अख्तर ने मदन मोहन को फोन किया और कहा कि वही गाना सुनाओ, कदर जानी ना। मदन मोहन ने फोन पर ही गजलों की रानी बीगम अख्तर को ये गाना सुनाया और करीब 22 मिनट तक मदन मोहन फोन पर ट्रंक कॉल के जमाने में बार बार ये गाना सुनवाते रहे और बीगम अख्तर सुनती रही।

0: बेगम अख्तर की सबसे बड़ी खासियत है उनका क्लासिकी गजलों को गाना और क्लासिकी अंदाज में गाना। गजलों की शुद्ध दुनिया को उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा रखा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, नए साजों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। बेगम अख्तर गजलों की दुनिया की एक क्लासिकी आवाज के तौर पर हमेशा बहुत इज्जत के साथ याद की जाती है।
1: बदलते हुए जमाने ने जहां हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहां मूसीकी ने भी नई कदरों की कद्र की है। मैं नयेपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहां तक आज के फनकार और मूसीकार नयेपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़े। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गजल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गजल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गजल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।

0: भारत सरकार ने बेगम अख्तर को सन 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 1972 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला और सन 1975 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: गजल में एक ऐसी कैफियत है और अच्छे शोरा की गजलों में तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुन के तबीयत खुश हो जाती है। तो बताइए ये सिर्फ पढ़ के जो लुत्फ आता है और गाने के बाद इसमें क्या लुत्फ पैदा होगा कि अगर वो संदाज से गाई जाए जिस तरह गजल गाया करते थे तो मेरा ख्याल है कि इंसान बगैर रोए तो नहीं उठना चाहिए उसको।

ये था बेगम अख्तर की याद में हमारा विशेष कार्यक्रम। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 10 बजे लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का आगाज करते हैं हल्का याग्निकार उदित नारायण के गाय फिल्म हेलो ब्रदर के संगीत के साथ। शब्द लेखन समीर का है, संगीत हिमेश शमिया का।

महलका याग्नि का और उदित नारायण का गया फिल्म हेलो ब्रदर का ही गीत सुना। आइए सुनते हैं समीर की रचना को नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में फिल्म हमेरा ही प्यार के से। इस गीत को अजय कुमार सानू और अलका याग्निक ने

आइए अब सुनते हैं कुमार सानू का गाया फिल्म शिकारी का ये गीत। शब्द लेखन समीर का है, संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

आपने फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में फिल्म नायक से। इस गीत का आवाज़ ही उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने।

आपने फिल्म नायक का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं समीर की रचना को नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया से। इस गीत का आवाज ही अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

आइए सुनते हैं अगली पेशकश में कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति का गाया फिल्म खूबसूरत का ही गीत। शब्द रचना संजय छेल की है, संगीत जतिन ललित का।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको

अभी आपने हल्का याग्निक और उदित नारायण का गाया फिल्म तेरे नाम का ही गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश में सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन का गाया फिल्म परदेश का ये गीत। शब्द लेखन समीर का है, संगीत नदीम श्रवण का।

सोनू निगम है मासर देसाई और शंकर महादेवन के गाय फिल्म परदेश के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यही खत्म होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 11 बजने को है, कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पुरानी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी तो टॉप 3 में

0: लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है, लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। यह आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले 1-2 दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय रात के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यही समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। शुभ रात्रि। जय हिंद।